0: करें, आओ सभी मिलकर योग करें। जी हाँ, जिसमें आपको सभी प्राणायामों की समुचित जानकारी व योग अभ्यास के साथ साथ करते हुए सभी आसनों को भी कराया जाता है और साथ में अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से बताया जाता है। तो सुनना ना भूले रोजाना सुबह 6 से 7 अपनी आरजे समता के साथ। जी हाँ, योगशाला।
1: सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योगपाशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियां बहुत प्रचंड रूप अपना ले चुकी हैं। बारिश भी है लेकिन गर्मियों ने अपना पूरा प्रारूप दिखाई दिया है। तो आइए गर्मियों में कुछ ऐसे प्रिकॉशंस जो कि हम हमेशा से आपके लिए लेते आए हैं और आपको बताते आए हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कि गर्मियों में हम अपने आप को कैसे हाइड्रेट रखें, हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट कैसे रखें, हम अपने मूड को किस तरीके से अच्छा रखें। तो सबसे पहले तो जितना हम सर्दियों में खा लेते हैं, पी लेते हैं, वही उसका जो असर है ना, वो गर्मियों में निकलता है। मैं बताऊं कैसे। सर्दियों में हम जितना गर्म चीजों का सेवन करते हैं उसी का असर उतनी ही स्वेटिंग हमें गर्मियों में होती है। लेकिन गर्मियों में हमने जितना पानी पी लिया होता है, सर्दियों में अगर हम पानी नहीं भी पीते हैं तो काम चल जाता है। आपने एक उदाहरण के रूप में आपको समझाने जा रही हूँ। जैसे आपने ऊंट के बारे में सुना होगा, ऊंट को कहा जाता है कि वो 1 महीना लगातार पानी पीने के बाद में वो 3 महीने पानी नहीं पीता है। यानी उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो 3 महीने तक उस पानी को स्टोर करके अपने अंदर रह सकता है। इसीलिए उसे रेगिस्तान का राजा कहा जाता है। ठीक ऐसे ही हम मनुष्यों में भी ये चीज पाई गई है। सर्दियों में अधिकतर लोगों को प्यास कम लगती है सर्दी के कारण से या फिर ज्यादा ऑयली खाने से। लेकिन गर्मियों में जस्ट इसका अपोजिट होता है। पानी की प्यास बहुत लगती है, पसीना हमारे बॉडी से निकलता है। इसका मतलब होता है कि हमें पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो जो हमने खाया होता है गर्मियों में गर्म चीजें, वो पसीने के रूप में निकलती हैं। लेकिन जो हमने पानी पिया होता है वही पानी स्टोर हो करके हमें सर्दियों में हाइड्रेट रहने के लिए काम में आता है। इसीलिए गर्मियां हैं तो पानी का महत्व आज हम आपके लिए बताने आए हैं। गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर में पसीने के रूप में बहुत सारा पानी और खनिज तत्व जैसे मिनरल बाहर निकल आते हैं। ऐसे समय में पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं होता है बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन जाता है। योग और सही मात्रा में पानी का सेवन मिलकर शरीर को अंदर से संतुलित रखते हैं। जैसे शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए ये सबसे ज्यादा मदद करता है। जिन लोगों को हमेशा से थकान, कमजोरी एंड डिहाइड्रेशन होता रहता है, उसके लिए पानी पीना अति आवश्यक हो जाता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जरा सा कुछ हैवी खा लिया, जरा सा कुछ ऑयली खा लिया तो पेट खराब हो जाता है। ये अधिकतर उन लोगों को होता है जो गर्मियों में पानी कम और खाना ज्यादा खाते हैं। पाचन तंत्र को हमेशा से बेहतर बनाने के लिए भी पानी का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। जिन लोगों को लगता है हमारी स्किन हमेशा से जवां रहे, हम 45, 46, 47 की एज में भी 25 के लगे, तो उन महिलाओं को भी पानी की मात्रा को अपने जीवन में बढ़ा देना चाहिए जिससे हमारी स्किन में निखार और ताजगी हमेशा बनाए रखता है। मांसपेशियों और जोड़ों के सही कार्य में ये सहायक होता है। अब आते हैं योग के दौरान शरीर में ऊर्जा बनाने रखने के लिए भी पानी का महत्व। योग को करते करते यदि हमें प्यास लग जा रही है, योगा को करते करते अगर हमें बीच में पानी की प्यास लग जा रही है, तो थोड़ा सा विश्राम करके हम पानी ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण की बात यह है कि योग के साथ साथ पानी को भी हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। योग करने से लगभग 20 से 30 मिनट पहले थोड़ा सा पानी पी सकते हैं एंड योग के तुरंत बीच में पानी बिल्कुल ना पिए, थोड़ा सा बचे। योग समाप्त करने के बाद धीरे धीरे पानी पिए। बहुत ठंडा पानी तुरंत पीने के बजाय सामान्य तापमान का पानी बेहतर रहता है। गर्मियों में हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक छोटे से योग आसन है, जिसको करने से साथ ही साथ हमें पानी को पीने से बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार। पूरे शरीर का व्यायाम एक सूर्य नमस्कार के माध्यम से हो जाता है, शरीर में ऊर्जा और लचीलापन बढ़ाता है। दूसरा आता है ताड़ासन। शरीर का संतुलन सुधारता है और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। फिर उसके बाद आता है भुजंगासन, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में सहायक होता है। और उसके बाद आता है वज्रासन, भोजन करने के बाद किया जाने वाला सबसे आसान यह आसन होता है, जो पाचन में मदद करता है। उसके बाद आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हमने आपको कई बार बता के रखा है कि मन को शांत करता है, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। शीतली प्राणायाम, जो बिल्कुल भी, ये मैं आपको बता दूं कि इतना ज्यादा आवश्यक होता है गर्मियों में, जिसको करने से गर्मी में शरीर को ठंडक और मानसिक शांति देने वाला यह प्राणायाम माना जाता है। सुबह उठकर सामान्यता से पानी पिएं, फिर हल्का योग और प्राणायाम करें, ये एक स्वस्थ दिनचर्या होती है। दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी लेते रहें और अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज ना करें, प्यास, थकान, कमजोरी। यदि आपको याद न रहे तो थोड़ा सा अपने लिए सचेत हो जाएं, यानी कि टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी शरीर की जरूरत है और योग शरीर व मन का संतुलन, दोनों का साथ गर्मियों में हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रसन्न बनाए रखता है। ऐसे ही बहुत सारी जानकारियों के लिए हम फिर से मिलेंगे एक नए योग सीरीज में। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो गर्मी का समय है, तापमान है, ये भीषण गर्मी आ चुकी है और इसमें जो भी लोग नित नियम योगा करते हैं उनके लिए थोड़े से प्रिकॉशन करना जरूरी है, क्योंकि जब हम योगा करते हैं तो हमारी बॉडी ऑलरेडी फिट से हीट होने लगती है, जिसके कारण से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए गर्मी में किए जाने वाले योग भी कुछ अलग हैं और उनसे कुछ सावधानियां भी, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले है सुबह जल्दी उठ करके ही योग कर लेना चाहिए, जैसे सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच योग करना सबसे अच्छा समय माना गया है। इस समय मौसम ठंडा होता है और हमारा शरीर भी फ्रेश रहता है। शरीर को हाइड्रेट रखें, योग से पहले और बाद में पर्याप्त पानी पिएं। नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ भी फायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रखें योग करने के तुरंत बाद नहीं, थोड़ा सा समय का अंतराल 20 मिनट 25 मिनट के बाद में आप नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ ले सकते हैं। दिन में सुबह रात में हल्का ही भोजन करें, योग से पहले भारी या तला भुना खाना न खाएं, फल सलाद और हल्का भोजन ही लें। कूलिंग योगा करें, जैसा कि बहुत सारी सीरीज में हमने आपको बताया है, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, बालासन, शवासन, ताड़ासन, ये सारे वो प्राणायाम और आसन हैं जो गर्मी में हमारी पूरे शरीर को ठंडक पहुंचा करके फायदा करते हैं। साथ ही साथ कॉटन के हल्के कपड़े और शरीर को ठंडा रखते हैं और पसीना जल्दी सूखता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में जब हम योग करते हैं तो ढीले और सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। खुली और ठंडी जगह ही चुने योग करने के लिए, हवादार कमरे या फिर पेड़ पौधों वाली शांत जगह पर ही बैठ करके योग करें। ज्यादा कठिन योगासन से बचें, तेज धूप या बहुत ज्यादा मेहनत वाले आसन गर्मी में थकान, चक्कर ला सकते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, ये थोड़े से हैवी आसन होते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और पूर्ण रूप से इसे कर रहे हैं और इसको करने के बाद में कोई भारीपन या चक्कर नहीं आ रहा है, तो ही आप नियमित रूप से इसको अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं, वरना आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। योग के बाद तुरंत तेज धूप में न जाएं, कुछ देर आराम करें ताकि शरीर का तापमान सामान्य हो जाए। गर्मी में कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो और फायदेमंद होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, जो मन को शांत करने के साथ साथ शरीर को भी ठंडा रखने में मदद करती हैं। गर्मी में योग करें शांत मन ठंडे वातावरण में, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग से पहले चेहरा हाथ पैर को धो लेना चाहिए, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है और आराम जल्दी मिलता है और साथ ही साथ आलस भी कम होता है। ज्यादा देर खाली पेट ना रहें। पूरी तरह भूखे रहकर योग करने में कमजोरी महसूस हो सकती है। जरूरत हो तो आप सुबह एक केला या कुछ भीगे बादाम खा सकते हैं। नींद पूरी लें। कम नींद होने पर भी गर्मी में जल्दी थकान और चिड़चिड़ापन होता है।

में, छत पर या आगे कहीं पे भी आप अपने घर के आसपास थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी हल्की वॉक शरीर को रिलैक्स करती है और फ्रेशनेस भी देती है। गर्मी में ये चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा, तरबूज, पुदीना, दही और नारियल पानी। तरबूज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं तो तुरंत ही तरबूज को काट करके ना खाएं। उसे कुछ देर के लिए ठंडे पानी में या फिर किसी पानी, नॉर्मल पानी में भी आप रख सकते हैं और उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। ज्यादा चाय, कॉफी, जंक फूड, धूप में तुरंत एक्सरसाइज, बहुत टाइट कपड़े, इन सब चीजों से गर्मी में आप बच सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप जो आपका समर योगा रूटीन होगा वो होने वाला है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 10 मिनट हल्के आसन, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन और अंत में शवासन। योग केवल शरीर को नहीं मन को भी ठंडक देता है, इसीलिए आज की इस दिनचर्या को हम पूरी गर्मी भर अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है, योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सके, और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एक अहम टॉपिक है, या हम ये कह सकते हैं कि आज हर घर में एक दूसरा व्यक्ति इस प्रॉब्लम को जूझ रहा है, इस प्रॉब्लम के साथ में अपने आप को जी रहा है। कई ऐसी बातें हैं जिसे हम अपने किसी खास के साथ ही उसे शेयर कर पाते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, यहाँ तक कि ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है। धीरे धीरे अंदर ही अंदर हम घुटते रहते हैं, हमारे जीवन के आगे भी ये लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। उसी को कहते हैं हमारी मानसिक स्थिति को संभालना, सोचना और झेलना। हर एक व्यक्ति को लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे जैसे होगा, हम जैसा सोचते हैं वैसा होगा, लेकिन कई ऐसी बातें होती हैं जब हमारे हाथ में नहीं होती हैं और मजबूरन हमें सोचना पड़ता है। ज्यादा सोच, टेंशन और इन्हीं सब का कारण बन जाता है मानसिक स्थिति खराब। अब हम यूं कह सकते हैं कि मानसिक स्थिति खराब का होना शायद लोगों का दूसरा सोचना हो जाता है कि ये एक बच्चा या बच्ची या एक लड़का या लड़की पागल होने की स्थिति पर है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मानसिक स्थिति खराब होने का सीधा असर पागलपन से नहीं होता है, वो ऐसा एक धीमा जहर है जो आपको धीरे धीरे खत्म कर रहा होता है। आज जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं दोस्तों, ये मानसिक स्थिति को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं बिना किसी दवाई के और बिना किसी भी एक लंबे इलाज से। अब आप सोचेंगे कि एक सोच को सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बिना दवाइयों के या फिर किसी प्रिकॉशन के कैसे ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब कोई परिस्थिति खुद पर बीतती है तभी हमें उस चीज को ठीक करने का अनुभव ज्यादा होता है, या हम यूं कह लें सीधे शब्दों में कि कहीं ना कहीं उस परिस्थितियों को हमने भी महसूस किया है, हमने भी झेला था। तो आज कहीं जाकर के इन सारे पॉइंट्स को मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात ये है कि मानसिक स्थिति को बेहतर करने के लिए हम बहुत सारी चीजों को अवॉइड करते हैं जो हमें रोजमर्रा दिखती और मिलती हैं। छोटी सी कहावत है, या ये हमने कहीं सुना पढ़ा होगा, या आप लोगों ने भी सुना होगा कि हमें कल की चिंता थी लेकिन आज ही मर गए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जब कल की चिंता है, हमें पता ही नहीं है कि कल होने क्या वाला है, उसकी चिंता अगर हम आज से ही करेंगे तो कल देखा जाएगा, लेकिन आज हमारा जो नुकसान होगा उससे हमारा शरीर, हमारी मनोवृत्ति और हमारा सब कुछ खराब होने लगेगा। इसीलिए कल को कल पर ही छोड़ दें। हमें सबसे पहले अपने वर्तमान को ही सुरक्षित करना है, और वर्तमान को सुरक्षित करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाना है। कैसे बेहतर बनाना है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आज आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि अपनी फीलिंग्स को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, अपनी भावनाओं को स्वीकार करना। जो महसूस हो रहा है उसे दबाने के बजाय समझने की कोशिश करें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना ये आपके लिए सबसे अच्छा साबित होता है। इससे आपका मन भी हल्का होता है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाते हैं। तो कोई भी अगर आपकी जिंदगी में ऐसा इंसान है जिसे आप अपने मन की, अपने दिल की बात बताना चाहते हैं और लगता है कि वो आपकी बातों को कहीं भी इधर से उधर नहीं करेगा, आपकी फीलिंग्स को समझेगा या समझेगी, तो आप अपनी भावनाओं को उनके साथ साझा करें। दूसरा पॉइंट, जो कि सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए था, ध्यान और श्वास अभ्यास। रोज 5 से 10 मिनट बैठकर गहरी लंबी सांस लेना, प्रार्थना और ध्यान करना, मन को स्थिर करना सबसे अच्छा ये प्राणायाम माना जाता है, जिससे हमारी मानसिक स्थिति के साथ साथ हमारी शारीरिक स्थिति भी सुधरती है।
थोड़ा समय प्रकृति और शरीर को दें। हल्की वॉक करना, योग, खुली हवा में समय बिताना और अपने मूड को चिल करना। कहते हैं ना कि आजकल सभी लोग बाहर घूमने क्यों जाते हैं? अरे मूड को चिल करने जा रहे हैं। अपने काम से 2 से 3 दिन की छुट्टी लेकर के अपने आप को रिलैक्स मोड में जाना। यानी कि ऐसा नहीं है हम प्रेशर में हैं, हमारी मानसिक स्थिति जितनी भी उलझी हुई है लेकिन हम काम करे जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है धीरे धीरे हमारी मानसिक स्थिति को खराब करने में। फिर आता है अच्छी चीजें पढ़ें और सकारात्मक संगति करें। बिल्कुल दोस्तों, पॉजिटिव सोच वाले लोगों से आपकी दोस्ती होना ये आपकी मानसिक स्थिति को सबसे और जल्दी बेहतर करता है और आपकी बहुत सारी चीज़ों को जो कि खराब हो चुकी हैं उन्हें ये हील करने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। अच्छे विचार, आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणादायक बातें आपको और आपके मन को मजबूत बना देती हैं। 5th पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि है नींद और भोजन का ध्यान रखना। कम नींद और अनियमित खानपान का असर हमारे मन स्थिति पर तो पड़ता ही पड़ता है, साथ ही साथ हमारी मानसिक स्थिति भी खराब करता है। एक दिन में 8 घंटे की नींद लेना और पर्याप्त गहरी नींद लेना सबसे अच्छा माना गया है। खानपान की बात करें तो आज की न्यू जनरेशन सिर्फ और सिर्फ बाहर के खाने की ओर ज्यादा भाग रही है, लेकिन अगर हम हल्का और जो जल्दी पचने वाला खाना अगर खाते हैं तो हमारे पेट को भी राहत मिलती है और हमारा मन भी और मूड भी अच्छा होता है। मन की बातों को लिखना, अपनी कोई भी चिंता, भावनाएं और दिन की सबसे अच्छी बातों को एक डायरी में लिखना मन को शांत करने जैसा होता है। साथ ही साथ ये आपको उस ओर लेके जाता है जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो, कुछ ऐसे चिड़चिड़ेपन हो, आपकी जो भी फीलिंग्स हो आप एक डायरी में उसे उतार देते हैं तो मन हल्का हो जाता है। फिर आता है पॉइंट कृतज्ञता का अभ्यास करें। रोज ऐसी 3 चीजों को याद करें जिसके लिए आप आभारी हैं। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य, उसके बाद ईश्वर। सबसे पहले हम ईश्वर को भी धन्यवाद कर सकते हैं और उसके बाद हम अपने स्वास्थ्य के लिए हम अपने ईश्वर को भी आभार व्यक्त कर सकते हैं और उसके बाद हम अपने माता पिता के लिए भी ये आभार व्यक्त कर सकते हैं कि जिन्होंने हमें ये सुंदर जीवन दिया और हमें ये सुंदर जीवन देखने का अनुभव प्राप्त कराया। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं और अपनी मानसिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम जो बताने जा रहे हैं वो है आपकी मानसिक स्थिति, तनाव और मन को स्थिर रखने के लिए छोटे मोटे ऐसे योग प्राणायाम जिसकी मदद से हम अपने आप को पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले उसमें आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। 5 से 10 मिनट करें, मन को शांत करके और श्वासों को संतुलित करने में मदद करता है। दूसरा है भ्रामरी प्राणायाम। 5 बार से शुरू करने के बाद में इसको हम और भी बढ़ा सकते हैं, मन की बेचैनी, तनाव में राहत महसूस कर सकते हैं। उसके बाद कर सकते हैं बालासन। शरीर और मन को आराम देने वाला ये आसन होता है। फिर हम कर सकते हैं एक छोटा सा रूटीन जिसमें आता है 5 मिनट की गहरी श्वास, 10 मिनट अनुलोम विलोम, 5 मिनट भ्रामरी, 10 मिनट ध्यान और अंत में शवासन। ये सारे प्राणायाम आपकी मन की स्थिति को तो ठीक करते ही करते हैं, साथ ही साथ आपको ये फील कराते हैं कि यस, हम ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस दिन आप अपने मन से हार जाएंगे यानी कि आप सब कुछ हार जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है मन के जीते जीत और मन के हारे हार। इसीलिए मन से कभी भी अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हर बार की तरह योगशाला में भी आज मैं जो आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ वो है समय सारणी, मतलब योग की समय सारणी। अब आप सोच रहे होंगे कि योग की समय सारणी क्या होती है। समय सारणी का मतलब होता है कि किस समय कितना और कौन से प्राणायाम को करना है और उसका लाभ भी एक साथ हम आज आपको बताएंगे। प्राणायाम के साथ साथ आसन और सूक्ष्म आयाम,
सूक्ष्म व्यायाम हम एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले बैठने की विधि, सभी प्राणायाम सिंहासन, सुखासन और पद्मासन में ही करना चाहिए। यदि इन आसन में बैठने में परेशानी हो तो अपनी सुविधा अनुसार आसन में बैठ सकते हैं। तो सबसे पहला आसन जो होता है वो है भस्त्रिका प्राणायाम, 5 मिनट और बच्चों के लिए 2 मिनट। सुविधा अनुसार आसन में बैठकर मुंह बंद रखकर नासिका से लंबी गहरी श्वास फेफड़ों में भरें तथा उसी गति से नासिका से श्वास को छोड़ें। फेफड़ों में जब हम श्वास भरेंगे तो उसी गति से हम श्वास को छोड़ेंगे। आइए दोस्तों, अब हम आपको बता दें भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ। दमा, अस्थमा व फेफड़ों से संबंधित सभी रोग दूर होते हैं। साथ ही साथ में आज हम आपको सूक्ष्म व्यायाम भी एक बार ये कराते रहेंगे। उसका कारण पता है आपको, एक प्राणायाम के बाद में एक सूक्ष्म व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए, हमारी मानसिक स्थिति के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। सूक्ष्म व्यायाम, श्वास भरते हुए गर्दन को 5 बार ऊपर नीचे, 5 बार दाएं बाएं, 5 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। यानी कुल मिलाकर के ये जो सूक्ष्म व्यायाम है ये हमें सर्वाइकल में बहुत ज्यादा आराम देता है। जिन लोगों को गर्दन में अकड़न रहती है, गर्दन के आसपास एरिया में दर्द रहता है, आप एक जगह काम करते हैं काफी घंटे बैठकर, तो ये देखा गया है कि गर्दन में और पीठ में यानी रीढ़ की हड्डी में अकड़न हो जाती है। जिन लोगों को ये चीजें होती हैं, ये प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सूक्ष्म व्यायाम ये वाला कर सकते हैं जो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपनी गर्दन को घुमाना है। दूसरा समय सारणी में आता है कपालभाति, यानी कपालभाति प्राणायाम। समय लगातार 5 मिनट 1 सेकंड में 1 बार। प्रथम चक्र जो है वो हम आगे करते हैं। सुविधा अनुसार आसन में बैठकर पेट को ढीला रखकर पेट को पीठ की तरफ झटका देना व छोड़ना है। नासिका से श्वास स्वतः बाहर निकलेगी और अंदर जाएगी। मुंह बंद रहेगा। मध्यम शक्ति व मध्यम गति से इस प्राणायाम को करना है। साथ ही साथ में जो इसका एक सूक्ष्म व्यायाम है वो है अपने हाथों पैरों को एक जगह पर रखने से हाथों पैरों में कंपन सी होने लगती है। तो आइए सूक्ष्म व्यायाम में पैरों और हाथों को चलाने का व्यायाम। पैरों को सामने खोलकर व हाथों को पीछे टिकाकर पैरों की उंगलियां चलाना, पंजे चलाना और आगे पीछे दबाना। पैरों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना व दोनों तलवे मिलाकर बटरफ्लाई की स्थिति में आना और बटरफ्लाई करना। यानी कि जब आप इस आसन को, जब इस प्राणायाम को आप करेंगे तो तितली नुमा एक आकार बन जाता है। कपालभाति प्राणायाम प्रथम चक्र की भांति 5 मिनट ही करना चाहिए। आइए अब चलते हैं कपालभाति के दूसरे चक्र पर, यानी सूक्ष्म व्यायाम का दूसरा चक्र। हाथों को सामने कंधे की सीध में खोलकर मुट्ठी खोलना एवं बंद करना। कभी अंगूठा अंदर करना है तो कभी बाहर। उंगलियां आधी मोड़ना और छोड़ना। पंजों को कलाई से ऊपर नीचे करना। मुट्ठी बंद करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। कोहनी को निरंतर मोड़ते रहना है। दोनों हाथ कंधे के समांतर।

सुप्रभात साथियों, स्वागत है आपका पहली किरण में। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है प्रेम, आध्यात्म और सूफिज्म। प्रेम जो सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। आध्यात्म जो हमारे भीतर से प्रकाशित रहता है या हमारी भीतर की शक्ति को प्रकाशित करता है, और सूफिज्म जो प्रेम और ईश्वर को एक ही सूत्र में पिरो देता है। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं एक सुंदर से गीत के माध्यम से।

श्रोताओं, सच्चा प्रेम वही है जिसमें मैं मिट जाए और केवल तू रह जाए। अध्यात्म यही सिखाता है कि जब हम अपने अहंकार को छोड़कर प्रेम में डूबते हैं तो वहीं से हमें परमात्मा का अनुभव होता है। तो आइए परमात्मा की ओर चलते हैं और उनका ध्यान करते हैं।

दोस्तों आज की कहानी है हजरत राबिया बसरी की। कहते हैं एक दिन लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। वो एक हाथ में मशाल और दूसरे में पानी की बाल्टी लिए दौड़ रही थी। किसी ने पूछा, ये क्या कर रही हो? राबिया बसरी बोली, मैं इस मशाल से जन्नत को जलाना चाहती हूँ और इस पानी से जहन्नुम की आग बुझाना चाहती हूँ, ताकि लोग अल्लाह की इबादत सिर्फ डर या लालच से नहीं बल्कि सच्चे प्रेम से करें। ये है सूफी मार्ग, जहाँ प्रेम ही इबादत है।

श्रोताओं, अध्यात्म हमें ये सिखाता है कि ईश्वर बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब मन प्रेम से भरता है तो द्वेष, नफरत और अलगाव की जगह ही नहीं बचती। सूफी संत कहते हैं, जब तू अपने भीतर के प्रेम को पहचान लेता है, तब तुझे किसी और खोज की जरूरत नहीं रहती। प्रेम ही है जो इंसान से इंसान जोड़ता है और इंसान से भगवान तक पहुंचाता है। तो आइए फिर चलते हैं एक बार भगवान की खोज की ओर, मतलब अपने मन के भीतर के प्रकाश की ओर।

हजरत निजामुद्दीन औलिया। इनके बारे में मशहूर है कि उनसे मिलने वाला हर इंसान यही कहता था, जब औलिया हमें देखते हैं तो लगता है जैसे ईश्वर की नज़र से देख रहे हूँ। उनके पास आने वाला कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता, क्योंकि वो कुछ और नहीं, प्रेम बांटते थे। उनका मानना था अगर दिल में प्रेम है तो वही सबसे बड़ा दरबार है।

दोस्तों, अगर आप दिन की शुरुआत प्रेम और कृतज्ञता से करते हैं तो आपका मानसिक स्वास्थ्य और ऊर्जा दोनों सकारात्मक रहते हैं। सुबह उठकर 3 लोगों को दिल से दुआ देना या शुभकामना देना, ये एक छोटा सा सूफी अभ्यास है जो आपको भीतर से हल्का और शांत बना देगा और साथ ही साथ आप बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। एक बार करके देखें, जीवन को सकारात्मक ऊर्जा की ओर अग्रसर करें।

श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, भक्त्या मामभि जानाति यावान्याश्चमि तत्वतः, केवल प्रेम और भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। और गीता का सार भी यही है, प्रेम ही आध्यात्म का सबसे सरल मार्ग है। तो आइए प्रेम की राह पर आगे चलें, अपने भीतर के प्रेम को निखारें, ईश्वर से जुड़ाव करें और हर इंसान में ईश्वर का वो अंश देखें जो हम सब में बसा हुआ है।

गौतम बुद्ध ने कहा, मैत्री भाव ही सबसे बड़ी साधन है। जब तुम सभी प्राणियों को अपना मानते हो तो वहीं से निर्वाण का मार्ग खुलता है। और बुद्ध का आध्यात्म कहता है, करुणा और अहिंसा के पथ पर चलो। श्रोताओं, अब मैं जैन धर्म पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगी। महावीर स्वामी ने कहा, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा का आधार प्रेम है। जब हम किसी को चोट पहुंचाते हैं तो वो सबसे बड़ा पाप होता है, और जब हम किसी को चोट नहीं पहुंचाते तो हम सबसे बड़ा आध्यात्म जीते हैं। तो आइए आध्यात्म की ओर अग्रसर होते हैं और ध्यान करते हैं अपने गुरुओं की वाणी का।

गुरु नानक देव जी ने कहा, सब में जोत जोत है सोई, हर एक में वही ईश्वर है, यानी प्रेम और सेवा ही सच्चा आध्यात्म है। इस्लाम और सूफी परंपरा की बात करें तो हजरत मोहम्मद साहब ने कहा, अल्लाह रहमान और रहीम है। सूफी संतों ने कहा, इबादत का सबसे ऊंचा रूप है इंसान से प्रेम। राबिया बसरी, बुल्ले शाह और निजामुद्दीन औलिया, इन सभी का संदेश एक ही है, खुदा तक पहुंचने का रास्ता दिल से होकर जाता है, और वो दिल किसी आम दिल से नहीं, हर इंसान के दिल से। मतलब जब हम नेकी करते हैं तो खुदा अपने से हमें जोड़ के रखता है।

ईसाई धर्म की बात करें तो यीशु मसीह ने कहा, गॉड इज लव, ईश्वर प्रेम है। उन्होंने प्रेम, क्षमा और सेवा को आध्यात्म का सबसे बड़ा मार्ग बताया।

0: दोस्तों, अब चलने से पहले मैं एक आपको स्वास्थ्य सुझाव देना चाहूंगी। हर सुबह 5 मिनट शांति से बैठकर अपने शत्रु तक के लिए दुआ कीजिए। ये अभ्यास हर धर्म की शिक्षा है। दूसरों के लिए प्रेम और करुणा, ये न सिर्फ दिल को हल्का करता है, मानसिक स्थिति को भी बेहतर करता है, बल्कि आप में हर तरह का संतुलन स्थापित करता है। एक बार करके देखें, जीवन को सरल बनाएं और ईश्वर से जुड़ाव महसूस करें। दोस्तों, धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनकी आत्मा एक ही है, प्रेम और आध्यात्म। सूफी संतों ने कहा, जब दिल में मोहब्बत हो तो वही खुदा है। गुरु नानक ने कहा, हर एक में वही ज्योति है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भक्ति से ही मुझे पाया जा सकता है। बुद्ध ने कहा, करुणा ही मुक्ति का मार्ग है। आइए आज हम सब ये संकल्प लें कि हम धर्म की दीवारें नहीं, प्रेम के पुल बनाएंगे, क्योंकि प्रेम ही है जो इंसान से इंसान को और इंसान से ईश्वर को जोड़ता है। मुलाकात होगी अगली सुबह पहली किरण के साथ। तब तक याद रखिए, जहाँ प्रेम है वहीं ईश्वर है। राधे राधे, खुदा हाफिज, जय जिनेन्द्र।
1: धार धार धारा कृत कृत भिन्न भिन्न भिन्न धिगत गंगाधर नीलकंठ विश्वनाथ त्रिकट धिकट डिम डिम डिम डमरु वचन हर हर महादेव शिव शंकर त्रिकट धिकट दो शिव शंकर त्रिकट धिकट दो शिव शंकर त्रिकट

धार धार धाधा कृतट विकृत दिन दिन दिगत दि गंगाधर नीलकंठ विश्वनाथ त्रिकट धिकट डिम डिम डिम डमरु वचन त्रिकट हर हर महादेव शिव शंकर त्रिकट धा त्रिकट डोम शिव शंकर त्रिकट धा त्रिकट डोम शिव शंकर त्रिकट

धान धान धाधा कृत कृत धिन धिन धिन धिगत धि गंगाधर नीलकंठ विश्वनाथ त्रिकट धिकट ढिम ढिम ढिम डमरु वचन त्रिकट त्रिकट हर हर महादेव शिव शंकर त्रिकट धा त्रिकट दो शिव शंकर त्रिकट धा त्रिकट दो शिव शंकर त्रिकट

धार धार धाना ग्रगत निग्रगत दिदे दिन दिन दिन दिगत दिदे गंगा दर नील कंट विश्वनाथ त्रिकट धिकट डिम डिम डिम डमरु वचन त्रिकट तक तक हर हर महादेव शिव शंकर त्रिकट तक तक डोम शिव शंकर त्रिकट तक तक डोम शिव शंकर त्रिकट

धार धार धाधा कृत कृत धिन धिन धिन धिगत दि गंगाधर नीलकंठ विश्वनाथ त्रिकट धिकट ढिम ढिम ढिम डमरु वचन त्रिकट हर हर महादेव शिव शंकर त्रिकट धिकट दो शिव शंकर त्रिकट धिकट दो शिव शंकर त्रिकट

धार धार धाधा ग्रगत विग्रत दिन दिन दिन दिगत दि गंगाधर नीलकंठ विश्वनाथ त्रिकट धिकट डिम डिम डिम डमरु वचन त्रिकट हर हर महादेव शिव शंकर त्रिकट धिकट डोम शिव शंकर त्रिकट धिकट डोम शिव शंकर।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। आप गुना सुनेगा अपना FM।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रांग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: दीवाने से हो गई गलती, जाने दो यार। बट जाने कैसे थे, अब तो आने देने का टाइम हो गया है, क्योंकि टाइम है आपके गुड मॉर्निंग गुंडा का। सो वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग गुंडा, ओनली ऑन रेडियो 89.6 FM। ये है आपके अपने गुंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, सिर्फ और सिर्फ आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। सो भाई, इतनी खूबसूरत सी सुबह इस वजह से है क्योंकि कहीं ना कहीं इस वक्त कुदरत और हमारी दोनों की मिली हुई साजिश है इन दिनों को और भी ज़्यादा प्यारा करने की। जैसी शुरुआत होती है सुबह से, इतनी प्यारी सी होती है कि भाई देखते ही दिल कहता है वाह क्या बात है। सो जब इतनी अच्छी शुरुआत होगी, सो जाहिर है दिन भी वैसा ही जाने वाला होगा। सो एक बार आपका वापस से वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गुंडा शो में, और चलते हैं जानने के लिए कि आज का थॉट ऑफ द डे कौन सा है जो थर्सडे को आपकी और भी ज़्यादा स्पेशल बनाने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो स्पेशल डेज होते हैं ना, ये ख़ास होते हैं। वैसे आपको एक बात बताएं, एक सीक्रेट, सीक्रेट ये है कि भाई हर दिन ख़ास होता है और हर दिन आपका अपना होता है। बस जिस पल आप उसको अपना बना लेना चाहते हैं, उस पल से वो आपको अपना सा लगने लगता है। इसलिए कोई भी वक्त हो, कोई भी सिचुएशन हो, या शायद कोई शख्स हो, आप चाहें तो अपना बना सकते हैं और वो आपको अपना लगने भी लग जाएगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसे लाइफ की कई बीती हुई बातें ज़रूर बता देती हैं, यानी पुख्ता कर देती हैं कि हाँ ऐसा ही कुछ है। सो ऐसा बहुत कुछ है जो आपके लिए है और आज के थर्सडे मॉर्निंग शो में ही आपको मिलने वाला है, यानी काफ़ी कुछ होने वाला है जो आज का स्पेशल डे आपका बनाने वाला है। फिलहाल चलते हैं ये जानने के लिए कि भाई आपके दिन की शुरुआत करने वाला आपका थॉट क्या है, और आज का ये थॉट आपके लिए क्या पैगाम लेकर आया है, क्या लेकर आया जो आप तक पहुंचाना चाहता है बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से आपके अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो में।
1: Now you're listening, Good Morning Gonda with your favorite RJ Khan.

वाह क्या बात है। और इस ट्यून के बाद में एक कहते हैं ना कि माहौल सा मिल जाता है, और जहां माहौल मिलता है वहीं कहते हैं कि अपने यारा बैठे हुए हैं। सो चलिए, मैं तो आ गया हूं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। अब बताते हैं कि आज की ऐसी कौन सी शुरुआत करने वाला है आज का थॉट जो आपको पसंद आने वाला है, आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थॉट्स बार बार जब याद आते हैं दिन में तो ऐसा लगता है कि वाह क्या बात है भाई, ये थॉट जो है ये सच में हमारे अंदर चेंजेस लाते हैं। सुबह होते ही शुरुआत जब ऐसी चीज़ों से होती है तो इसका इम्पैक्ट भी उसी तरह से होता है, इसका असर होता है, एंड डेफिनेटली होता है। और ये तो शायद आपने फील भी ज़रूर किया होगा, किया है ना? यस, मैंने भी किया है। जब शुरुआत हमारी ऐसी हुई तो फिर मैंने भी किया कि हाँ यार सच में ये बहुत अलग है। सो क्या कह रहा है आज का थॉट ऑफ द डे? आज का थॉट ऑफ द डे आइए बताते हैं क्या कह रहा है। सो आज का थॉट ऑफ द डे कहता है कि कुछ दहलीजें पार करना बहुत मुश्किल होगा, असंभव लगेगा, लेकिन अगर आपने हिम्मत करके पार कर लिया तो आपको एहसास होगा आपने उन दहलीजों को पार करके न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी एक पीढ़ी के लिए दायरे को तोड़ दिया है। बड़ी अलग बात कही आज के थॉट ऑफ द डे ने। आज का थॉट कहता है कि कुछ दहलीजें पार करना मुश्किल होगा, इवन असंभव लगेगा, लेकिन अगर हिम्मत किया जाए और उसको पार कर लिया जाए तो फिर यह एहसास मिलता है कि आपने उन दहलीजों को पार करके न सिर्फ अपने लिए बल्कि एक पीढ़ी के लिए कहीं ना कहीं दायरे को आपने उसको तोड़ दिया है। और ऐसा होता भी है ना, जैसे कहते हैं ना कि भाई अभी तक तो नहीं हुआ था, हमारे घर में फलाने ने कर दिया, उसके बाद से खैर अब हम लोग कर लेते हैं। सो ऐसे बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो पहले नहीं माने जाते थे, और कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अपने अकॉर्डिंगली ही देखते हैं, बदलते वक्त के हिसाब से देखते हैं, आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखते हैं, और आप कहाँ फिट हो रहे हैं इवन आप ये भी देखते हैं, तभी तो आप चीज़ों को बेहतर कर पाने के लिए बढ़ते हैं। यही कह रहा है आज का थॉट ऑफ द डे कि अगर आज को आप बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं ये जानना होगा कि भाई आज बहुत सारे ऐसे काम हैं, आज ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो शायद अभी तक नहीं हुई थी आपके घर में और आपकी लाइफ में भी, मुश्किल भी है, इवन नामुमकिन सा भी लगता है, लेकिन आप जब वो कर लेते हैं तो एक पूरी पीढ़ी, एक पूरी जनरेशन के लिए आप उन दायरों को तोड़ देते हैं जिसको अभी तक फिलहाल कोई और तोड़ नहीं पाया था। ये कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। सो ऐसे अगर आपने कुछ भी किया है तो इस थॉट को सुनने के बाद आपको जाहिर है ख्याल आ रहा होगा कि हाँ ऐसा आपके साथ कब हुआ है, किन चीज़ों को लेकर हुआ है, ऐसा आप जाहिर है सोच रहे होंगे। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर आपने ऐसा किया है तो ये आपके लिए बहुत बेटर है। फिलहाल आज का थॉट ऑफ द डे मुझे लगता है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। सो ऑफ कोर्स आज का थॉट एंजॉय करने के बाद अब चलते हैं म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, यानी ऐसे सॉन्ग की तरफ जो आपको भाने वाला है, आपको पसंद आने वाला है और आपकी सुबह को और भी ज्यादा गुलजार बनाने वाला है। ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थ 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: क्या बात है। और आइए इसी के बाद कई सारे मैसेजेस भी आ गए हैं। क्या क्या मैसेजेस आए हैं, किसने क्या लिखा है, ये सब कुछ बताते हैं आपको आपके मॉर्निंग वाले शो में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग गोंडा।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अरमान।

हाँ जी, तो मुकेश का आया है सबसे पहले मैसेज। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मुकेश, गुड मॉर्निंग, दिल से स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। इरफान शाह का है वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, एंड महक का है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। सविता दुबे जी हैं, सुप्रभात, सुप्रभात आपको भी। प्रीति जी बहराइच से हैं, सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग टू यू। एंड धर्मेंद्र मोहन जी हैं फ्रॉम आवास विकास, लिखते हैं अदनान सर जी गुड मॉर्निंग, सभी सुनने वालों को सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग, आपको भी गुड मॉर्निंग। आशु जी लखनऊ से हैं, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू। और बताया है कि आज उनकी छोटी बहन श्रुति कीर्ति जी की छोटी बेटी आन्या का बर्थडे है, सो ऑफकोर्स हम आन्या को उनके बर्थडे की बहुत सारी मुबारकबाद देते हैं। आन्या, सुबह सुबह ही आपको रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM और उसकी पूरी टीम, पूरे परिवार की तरफ से आपको हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे। सो इस फैमिली में हमारे लिसनर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अब ज़रा सोचिए, छोटी सी आन्या को इतनी सारी दुआएं मिलेंगी तो जाहिर है उसका फ्यूचर कितना प्यारा होने वाला है। और यही तो खूबसूरती है यहाँ पर बर्थडे मनाने की। सो थैंक यू सो मच, ये बताया आपने कि आपकी भांजी का बर्थडे है। और इसके बाद चलते हैं अब अगले मैसेज की तरफ। प्रीति जी ने भी विश कर दिया है बहराइच से आन्या यानी वर्तिका, बेटा हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड आशु जी ने लिखा है, ज़िंदगी में सफलता उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों से डरते नहीं बल्कि उनका सामना करते हैं। हर नया दिन एक नया मौका अपने सपनों को पूरा करने का, मेहनत करते रहो, धैर्य रखो और ख़ुद पर विश्वास कभी मत खो। वेरी नाइस थॉट, थैंक यू सो मच। क्या आपको थॉट पसंद आया? प्रीति जी ने भी बोला है बहराइच से थॉट के बारे में कि प्रेरणादायक थॉट, ऑसम थॉट, अंधविश्वासों वाली ढकियानूसी दहलीजों को पार करना एक जंग लड़ने के बराबर होता है जिसको पार करने के लिए अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे ये जंग जीत लिया उसने अपनी मंजिल समझो हासिल कर ली। क्या बात है, बेशक सही कहा। अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जिनको हम इस मॉडर्न टाइम में मानते तो नहीं है कि हम अंधविश्वास कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम वहाँ है जहाँ पे हम किसी और को देख करके भी ये लगता रहे इसको करने दो। मतलब हम, मुझे लगता है कि जब लाइफ में ये मौका मिले कि हम कहीं और देख पा रहे हों तो जस्ट एक बार देखना चाहिए, इसलिए नहीं कि वो सही या गलत है, इसलिए कि आप जो उसी चीज़ को करते हैं या आपका जो बिलीफ है उन चीज़ों को लेकर वो कितना अप्रोप्रिएट है। और जो बदलना जानता है डेफिनेटली वही जीना जानता है, क्योंकि वो तो बदल ही रहा है, पानी की तरह बह ही रहा है, जो रुक गया है मसला तो उसके लिए है, है ना। बहुत बढ़िया। एंड धर्मेंद्र मोहन जी ने भी आवास विकास से छोटी सी आन्या के लिए ढेरों बधाइयां दी है और लिखते हैं कि हमारी तरफ से भी बर्थडे की शुभकामनाएं। क्या बात है, थैंक यू सो मच धर्मेंद्र जी, एंड बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हर उन सभी लिसनर्स का जिन्होंने भाई दुआएं दी है आन्या को। साथ ही वेलकम करते हैं आपका, फ्रिक्वेंसी से आपने ट्यून किया हुआ है, रेडियो गार्डन से आप जुड़े हैं और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन पर भी आप मौजूद हैं। आप सभी का वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सो भाई चलिए, अब आन्या का बर्थडे है, सो जाहिर है छोटी सी नन्ही सी आन्या के लिए एक खूबसूरत सा सॉन्ग तो बनता है बॉस। सो आइए इनके बर्थडे को विश करते हुए इनको एक छोटू सा सॉन्ग डेडिकेट करते हैं। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू आन्या।

हैप्पी बर्थडे बच्चे वर्तिका, आपको आपके बर्थडे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज जब आप केक खाइएगा तो बिल्कुल आसपास के सभी लोगों को खिलाते हुए थोड़ा सा लगा लीजिएगा। ये सीक्रेट वाली टिप्स थी आपके लिए। थैंक यू सो मच बताने के लिए, आशु जी, प्रीति जी, विश करने के लिए, धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुबह ही हमने ऑफकोर्स कहीं ना कहीं सेलिब्रेट कर लिया है आज वर्तिका यानी आनिया का बर्थडे। सो अब वक्त है चलने का अपने अगले सॉन्ग की तरफ। और मॉर्निंग का टाइम है फिलहाल स्टूडियो में 9:21 हो चुके हैं और आरजे अदनान मॉर्निंग चौक आपके साथ लाइव हैं आपके गुड मॉर्निंग गोंडा में। सो बातों में तो आपको बताया कि भाई बहुत कुछ लाते हैं हम, आज भी है और काफी कुछ है जो आपसे चलता रहेगा शो के दौरान।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अन इंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।

0: हाँ जी, तो फिर वक्त है आपको ये बताने का कि आज जॉब अपडेट्स में हम क्या लेकर आए हैं जो आप तक पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। और आज अगर तारीख की बात करें तो 2 जुलाई हो गई है, यानी जुलाई का दूसरा दिन आज शुरू हो चुका है। सो आइए ले चलते हैं आपको जॉब अपडेट्स की तरफ।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई अब जो हम बताने वाले हैं वो दरअसल यूपी आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। सो जो महिलाएं आंगनवाड़ी से जुड़ कर के काम करना चाहती हैं उनके लिए ये अपडेट है। उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी में नई भर्ती की घोषणा की गई है, जिसमें मेरठ, बागपत, कन्नौज, बिजनौर समेत 6 ज़िलों में आंगनवाड़ी वर्कर के खाली पदों को भरने के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जो ज़िलावार भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट upaanganwadibharti.in पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूपी आंगनवाड़ी की इस भर्ती में फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो भी अलग अलग तय की गई है। कैंडिडेट्स को एक फिक्स्ड टाइम फ्रेम में इसी के मुताबिक फॉर्म अप्लाई करना होगा, यानी एक निश्चित अवधि में ही। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए किसी तरह का आवेदन शुल्क नहीं है और कैंडिडेट्स इसको बिल्कुल निःशुल्क एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो अगर हम ज़िला वाइज बताएं, और मैं जिन जिन जगहों का नाम बता रहा हूं, अगर वहां से कोई भी सुन रहा है या किसी के रिलेटिव रहते हैं या कोई इन्फॉर्म करना चाहता है तो आपको हम बता दें, मेरठ में कुल वैकेंसी 180 है, जिसकी लास्ट डेट है आवेदन करने की 17 जुलाई 2026। बागपत की बात करें तो यहाँ पर 261 वैकेंसीज हैं और यहाँ की जो लास्ट डेट है वो 16 जुलाई है। कन्नौज की बात करें तो 125 वैकेंसीज हैं, यहाँ भी 16 जुलाई है लास्ट डेट। बिजनौर की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा 260 वैकेंसीज हैं और इसकी लास्ट डेट 15 जुलाई है। कानपुर नगर 259, 15 जुलाई लास्ट डेट है, जबकि ललितपुर में 75 वैकेंसीज हैं यूपी आंगनवाड़ी वर्कर की और यहाँ 9 जुलाई 2026 लास्ट डेट है। यानी 9 जुलाई सबसे पहले, उसके बाद 15, फिर 16, फिर 17। इस तरह से ज़िलावार जो है ये यूपी आंगनवाड़ी वर्कर भर्ती परीक्षा है, ये वैकेंसीज है 2026 की निकली हुई है और इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि ये निःशुल्क अप्लाई यहाँ पे करिएगा, कहीं कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप नोट कर लिए, upaanganwadibharti.in, जी हाँ एक ही में रहेगा, upaanganwadibharti, यानी upaanganwadibharti एक में रहेगा .in, upaanganwadibharti.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर जा करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमने ज़िलावार बता दिया है। अब बात आती है कि योग्यता कितनी होनी चाहिए, यानी क्या क्राइटेरिया है इसकी योग्यता का, तो ये हम आपको आ करके बताने वाले हैं और साथ ही बताने वाले हैं कि किस तरह से इसमें अप्लाई किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आइए लेते हैं एक बहुत ही शॉर्ट सा म्यूजिकल ब्रेक, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: खोया खोया तो था, लेकिन अब हम पाने वाले हैं, यानी कि आपको ले जाने वाले हैं कि किस तरह से यूपी आंगनबाड़ी वर्कर जो भर्ती 2026 आई है उसके बारे में, कि भाई क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि किन लोगों के लिए है, कौन लोग एलिजिबल हैं, इसमें पात्र हैं, कर सकते हैं, और उस किस तरह से ऑनलाइन इसमें अप्लाई करना है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं आपकी मॉर्निंग वाले शो में, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग गोंडा।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे खान।

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट्स ने कम से कम 12वीं या इसके बराबर की कोई पढ़ाई की हो, इसके समकक्ष योग्यता हासिल ज़रूरी है, या तो 12वीं की हो या तो इसके बराबर, कुछ ऐसा जो 12वीं की योग्यता के बराबर हो। सो जो भी चुने हुए उम्मीदवार हैं उनकी मेरिट लिस्ट के हिसाब से ज़्यादा योग्यता के आधार पर बनाई जाएगी मेरिट लिस्ट। दूसरा है एज को लेकर के, 1 जनवरी 2026 को आवेदिका यानी जो आवेदन करने वाली महिला हैं उनकी उम्र कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सो उम्र का जो नंबर है और गणना है यानी उसकी गिनती जो है वो 10th में मार्कशीट के आधार पर की जाएगी, जो 10th की मार्कशीट लगाएंगी उसके आधार पर की जाएगी। निवास की बात करें अगर तो उम्मीदवार को ज़िले या ग्राम सभा यानी वार्ड या शहरी का स्थायी निवासी होना ज़रूरी है। बाकी ग्राम सभा वार्ड के रहने वाले दूसरे निवासी आवेदन का स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी वही लोग जो लोकल के होंगे उस ग्राम सभा के होंगे या अगर शहर है तो उस वार्ड के होंगे तभी माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। इसके अलावा अगर जेंडर पर हम बात करें तो जो भी ये वैकेंसीज हैं ये सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही इसके लिए पात्र हैं, पुरुष नहीं हैं, क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर जो हैं ये महिलाएं ही होती हैं। अब बात आती है कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो इसको हम बता दें कि भाई जिन ज़िलों में हैं उसमें एक बार हम वापस से नाम बता दें, मेरठ, बागपत, कन्नौज, बिजनौर, कानपुर नगर और ललितपुर, और कुल वैकेंसीज है 1160। ऑफिशियल वेबसाइट है upaanganwadibharti.in। लास्ट डेट जो है वो मैंने बताया था 9 से लेकर 17 जुलाई तक अलग अलग ज़िले के हिसाब से है। और कौन अप्लाई कर सकता है, 12वीं पास महिलाएं, उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 से 35 साल। अप्लाई करना कैसे, सबसे पहले यूपी आंगनवाड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करना है जो कि हमने बताया है upaanganwadibharti.in पर। इसके बाद अगर पहले इस वेबसाइट पर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको क्लिक करना है, जिसमें आपका नाम, आपके फादर का नाम, ज़िला, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड क्रिएट करके कैप्चा कोड फिल करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के ज़रिए वेबसाइट पर फिर से लॉगिन करना है, और आगे फॉर्म पूरा करने के लिए आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th + 12th या फिर अगर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है, उम्र, पता, मूल निवास, आय, जाति संबंधी जितनी जानकारियां हैं इसको बहुत ध्यान से भरना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट में अपना फोटोग्राफ या फिर आपको हस्ताक्षर स्कैन करके सही साइज़ में अपलोड करना है, ये भी मांगा जाता है। पूरा फॉर्म आपको ध्यान से चेक करने के बाद फाइनल सबमिट करना और प्रिंट आउट उसका निकाल लेना है। सो आई होप कि यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2026 जो आई है वो आप तक मैंने पहुँचा दी और बता दी कि भाई किस तरह से अगर आप इन ज़िलों में से ताल्लुक़ रखते हैं और आपके तरफ ये वैकेंसी है और आप महिला हैं और आप योग्यताओं को इसमें पूरा करते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए है। सो चलिए फ़िलहाल इसके बाद अब बढ़ते हैं अपने अगले म्यूज़िकल ट्रैक की तरफ, वापस से आएंगे सुनाने के बाद और कई सारे सरप्राइजेस हैं आपके लिए। साथ ही साथ मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग टाइम इस वक्त स्टूडियो में 9:44 हो रहा है। लाइव शो में आपके मॉर्निंग जॉकर अदनान मौजूद हैं, आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 11 स्थली 89.6 FM, जो कि यही तो है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। सो सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

अब हर शाम महसूस होती है और भी खास, जब होती है गोंडा की हस्तियों से आपकी मुलाकात। हर शाम हम आपसे करवाते हैं उन हस्तियों की मुलाकात जो होते हैं अपने क्षेत्र के खास। सुनना ना भूले प्रोग्राम गोधुली हर शाम 5 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।

सो भाई एक सवाल था, ये सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा था, और सवाल ये था कि क्या लगता है आपको कि ज्यादा कौन जीता है, महिलाएं या पुरुष? अब आप सोचेंगे ये सवाल अचानक से क्यों आया कि भाई आरजे नान पूछ रहे हैं कौन ज्यादा जीता है, महिलाएं या पुरुष, ये क्या है? सो भैया हम बता दें कि फिलहाल ये एक सर्वे में सामने आया, एक रिपोर्ट आई, स्टडी आई है, जिसके बाद में ये बात हम आपसे पूछ रहे हैं, और इसीलिए हमने आपसे ये सवाल किया है। वैसे एक बात हम बता दें, चलिए आपको एक हिंट दे देते हैं कि भाई महिला और पुरुष में फिलहाल हम बता दें कि महिलाएं ज़्यादा जीती हैं। अब क्यों ज़्यादा जीती हैं इसका अंदाज़ा अगर आप लगा पा रहे हैं तो ज़रा सोचिए और दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, क्योंकि इसके बाद जब हम लौट कर आएंगे तो आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्यों ऐसा है कि महिलाएं ज़्यादा जीती हैं। आपको ऐसा क्या लगता है, शॉपिंग करने से ज़्यादा जीती हैं, या फिर भैया और कोई वजह हो सकती है, या शायद उनके अंदर जीने की चाह बहुत होती है इसलिए ज़्यादा जीती हैं? आखिर वजह क्या है, स्टडी क्या कहती है कि आखिर महिलाएँ पुरुषों से ज़्यादा तुलना में क्यों ज़्यादा जीती हैं, ये आपको हम बताने वाले। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा शॉर्ट सा म्यूजिकल ब्रेक, वापस से आते हैं, बताते हैं क्यों ज्यादा जीती हैं।

0: सवाल वही था और जवाब आपके जहन में गूंज रहा था, और आप भी सोच रहे थे आखिर ऐसा क्यों होता है कि भाई महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा जीती हैं। तो आइए बता दें क्या है स्टडी और इसके पीछे क्या बताया गया है रीजन, आखिर ऐसा होता क्यों है।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जवाब दिया है हमारे अजय जी ने, और बोला है कि महिलाएं टेंशन फ्री रहती हैं मर्दों की अपेक्षा। अच्छा, इसलिए आपने कहा कि ज़्यादा जीती हैं। ओके, ऑलराइट, ये एक अच्छा रीज़न आपने बताया है। वैसे इसके पीछे साइंस क्या कहता है, विज्ञान क्या कहता है, आखिर क्यों ऐसा होता है, ये हम आपको बताने वाले हैं। साइंस की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि अगर आप एक महिला हैं तो ये मुमकिन है कि आप अपने भाई या पुरुष दोस्तों की तुलना में लंबा जिएं, क्योंकि अगर वैश्विक औसत के हिसाब से ये करीब 5 साल से ज़्यादा हो सकता है। अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए, सारे देशों को मिला करके जिसमें भारत भी रहेगा, तो इसकी तुलना में अगर देखा जाए तो करीब 5 साल से ज़्यादा हो सकता है ये गैप कि ज़्यादा जिएं। एंड महिलाओं को लंबा जीने के सटीक जो कारण हैं, जो वजहें हैं, वो अभी बहुत क्लियर नहीं है, ये साइंस खुद कहता है। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों के कुछ अपने तर्क हैं, कुछ अपने लॉजिक्स हैं, जो वैज्ञानिक बोलते हैं कि आखिर पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं क्यों ज़्यादा जीती हैं। तो इसमें प्रमुख जो तर्क है वैज्ञानिक का, जो मेन लॉजिक बताते हैं, वो ये है कि महिला और पुरुषों की जो जैविक संरचना है उसमें अंतर है, मगर उनके रहन सहन, खान पान से लेकर के जीवन साथी के चुनाव तक कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनकी उम्र के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे यूके के ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन एजिंग के जो निदेशक हैं प्रोफेसर सारा हॉपर, वो कहती हैं कि दुनिया भर में पुरुष ज़्यादा ऐसी आदतों के आदी होते हैं जो जीवन घटाती है। उनका खान पान आम तौर पर कम हेल्दी होता है, साथ ही वो बातचीत, साथ ही ये तबीयत ख़राब होने पर डॉक्टर के पास कम जाते हैं। एंड ये लिटरली सच है, ये शायद मेरे साथ भी ऐसा है कि मैं डॉक्टर्स के पास जाना प्रेफर कम करता हूँ, हालांकि मेरे अपने रीज़न होते हैं, खैर उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। सो ये जो साइंटिस्ट कहते हैं वो बताते हैं कि पुरुष के साथ ये होता है कि भाई इनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो कम हेल्दी खाना खाने की होती है, और कहीं ना कहीं पुरुषों को जो देखा जाता है वो अपनी तबीयत ख़राब होने पर डॉक्टर के पास कम जाते हैं, तुलना अगर हम करते हैं महिलाओं से। तो इसके बाद प्रोफेसर हॉर्पर कहती हैं कि भले ही जागरूकता बढ़ने पर पुरुष ज़्यादा जी सकते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल बदलने के बावजूद ये अंतर पूरी तरह ख़त्म नहीं होता, क्योंकि महिलाएं और पुरुषों के बीच हमेशा जैविक अंतर रहेगा, और इन अंतरों में से एक है हार्मोन। जाहिर है पुरुषों में जो हार्मोन है वो महिलाओं में नहीं है, महिलाओं में जो है वो पुरुषों में नहीं, कहीं ना कहीं जैविक संरचना जो है ये फैक्टर है, ये एक फ़र्क है, ये एक अंतर है। स्पेन के अगर हम बात करें, वेलेंसिया विश्वविद्यालय में एक फिजियोलॉजिस्ट प्रोफेसर कंसुएलो बोर्रास महिलाओं के बॉडी में होने वाले एक लैंगिक हार्मोन एस्ट्रोजन के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं कि एस्ट्रोजन महिलाओं की रक्षा के लिए काम करता है, यानी उनको सेफ करता है। वो ये भी बताती हैं कि इसके ज़रिए महिलाओं के शरीर का जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो काबू में रहता है, साथ ही जो इम्यूनिटी सिस्टम है यानी प्रतिरक्षा प्रणाली है इसको संतुलित करने का, साथ ही साथ मस्तिष्क और हड्डियों की रक्षा करने में ये मददगार होता है। इसके अलावा अगर हम बात पुरुषों की करें तो इनके बॉडी में मुख्य जो है हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, जिससे ज़्यादा जोखिम लेने वाले व्यवहार से जोड़ा गया है। बोर्रास आशंका भी जताती हैं कि इसके शरीर के अंदर कुछ हानिकारक प्रभाव भी हो सकते हैं, हालांकि अभी इसके कारण स्पष्ट नहीं हुए, क्लियरली नहीं हुआ है। सो प्रोफेसर हार्पर का निष्कर्ष कहता है कि पुरुषों का जो जैविक ढांचा है उन्हें मौत के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बनाता है, और महिलाओं का जैविक ढांचा उन्हें विकलांगता के प्रति बनाता है। हालांकि हम अकेली प्रजाति नहीं हैं जहां मादा ज़्यादा जीती है, लेकिन पक्षियों में उसका उलट है, जिसमें नर जो हैं वो ज़्यादा जीते हैं और मादाएं कम जीती हैं। हालांकि कई ऐसी प्रजातियां हैं जिसमें मादाएं ज़्यादा जीती हैं एंड नर कम जीते हैं, जैसा कि साइंस कहता है उसने फैक्टर्स के पीछे। सो फिलहाल ये एक बताया गया है कि एक जैविक अंतर जो है, जो एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन निकल कर आया है पूरी बातचीत में, वो ये आया कि भाई कहीं ना कहीं जैविक संरचना अलग होती है, एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फर्क होता है लाइफस्टाइल में। ऐसा नहीं है कि पुरुष ही करते हैं, ये सिर्फ एक कॉमन बात लेकर बताया गया है। इसका मतलब ये नहीं है
क्योंकि आपके पास फौरन इसका रीजन होगा। आप बताएंगे लॉजिक कि भाई अगर हम घुंडा का पीपल चौराहा देखेंगे तो वहां तो चाट के ठेले पे महिलाएं मिलती है, चाउमीन खाते हुए महिलाएं ज्यादा मिलती है, इवन रेस्टोरेंट में भी शायद आप देख सकते हैं कि टीनएजर्स में जो फीमेल है वो थोड़ा सा पिज्ज़ा वगैरह की ज़्यादा शौकीन होती है। लेकिन भैया हम भी कम नहीं हैं, हम भले ही रेस्टोरेंट्स नहीं जाते हैं लेकिन जहां मौका मिलता है वहां चाय की टपरी पर नमकीन बिस्किट लेकर खड़े हो जाते हैं एंड कई बार कुछ भी इस तरह से कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि इतना हेल्दी डाइट को लेकर के इतने अवेयर नहीं होते। क्योंकि अगर आप घर पे देखते हैं तो चाहे आपकी वाइफ हो, मदर हो, और आपकी सिस्टर हो या आपकी डॉटर हो, आप जिस भी एज ग्रुप में हैं, और आप ये देखेंगे कि वो ज़्यादा बताती हैं कि ये इससे प्रोटीन मिलेगा, इससे फैट ज़्यादा बढ़ेगा, इससे चीज़ें आपकी बैलेंस्ड रहेंगी, तो कहीं ना कहीं ये बात तो सच है कि महिलाएँ सच में ज़्यादा अवेयर होती हैं, ये हम अपने घर में भी देख सकते हैं। एंड हाँ, ये भी बात बिल्कुल सच है कि अगर हम अपनी लाइफस्टाइल पर काम करते हैं सो डेफिनेटली इस फर्क को ख़त्म नहीं कर सकते, बट काफ़ी हद तक असर ज़रूर इससे पड़ता है। यानी चाहे मेल हो या फीमेल हो, लाइफस्टाइल अगर सही करते हैं, यानी सही खाते हैं, हेल्दी खाते हैं, प्लस एक्सरसाइज या थोड़ा सा मूवमेंट एक्टिविटीज़ होती रहती है, तो इससे ज़रूर लाइफ पड़ती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें बनी इस तरह से होती है कि वो तो अपना काम करती ही करती हैं। सो जैसा कि बताया कि भाई जैविक संरचना अलग है, बहुत सारे अंतर होते हैं महिलाओं और पुरुषों के शरीर में, जिसको लेकर के ये बात सामने आती है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज़्यादा जीती हैं। फिलहाल आपके अपने क्या रीज़न हो सकते हैं आप भी बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई और कारण, या आपको लगता है कि भाई ऐसा आपको भी लगता है कि कुछ रीजंस ये हो सकते हैं, तो आप भी फटाफट से कमेंट कर सकते हैं और अपनी बात को दर्ज करा सकते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो में

भाई महिलाओं को डेडिकेट करते हैं ये गाना, क्योंकि महिलाएं ज्यादा जीती हैं। सो सुन रही सभी महिलाओं को ये गाना हम सब पुरुषों की तरफ से डेडिकेटेड है।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: अरे सुना?
1: क्या?
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
4: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
5: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे 1 हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।

0: क्या बात है भाई, धर्मेंद्र जी का इतना इम्पोर्टेंट, इतना अच्छा, इतना प्यारा रिप्लाई आया है, जिसको मैं लगता है कि भाई आप तक पढ़ करके पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। बहुत खूब लिखा है, आखिर पुरुषों की अपेक्षा में महिलाएं क्यों ज़्यादा जीती हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई धर्मेंद्र जी लिखते हैं कि सर्जी महिलाएं इसलिए ज़्यादा जीती हैं क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। बच्चों की जिम्मेदारी, पति की जिम्मेदारी, रिश्तेदारों की जिम्मेदारी, माँ बाप की जिम्मेदारी, इसीलिए अपने आप को संभाल कर चलती हैं और ज़्यादा दिन जीने की कोशिश करती हैं। बहुत प्यारी बात कही। चूँकि हमने बताया था अभी साइंटिस्ट भी सिर्फ लॉजिक्स बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये माना है कि कई सारे फैक्टर्स हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है, हम अपने आसपास देखते हैं कि कई ऐसे पेयर्स हैं जिनमें फीमेल्स पहले नहीं रहीं, तो रीज़न कई है, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा ही होता है, बट हाँ यूजुअली देखा जाए और अगर हम साइंटिफिक तौर पर जा कर के समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसा ही फिगर सामने आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। एंड दूसरी बात यह कि कई सारे रीजंस होते हैं, बात सच है, जितना आप कूल एंड जितना काम होते हैं उतना ज़्यादा आप लाइफ को बेहतर जी पाते हैं। जितना ही आपको लाइफ मीनिंगफुल नहीं लगती है, बेकार सी लगती है, बहुत सारे अजीब से थॉट आते हैं, वहाँ पर आप बहुत जल्दी गिव अप की बात सोचने लग जाते हैं। प्रीति जी लिखती हैं कि मैं अपने को बता रही हूँ कि मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ, हृष्ट पुष्ट रहना चाहती हूँ, पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए स्वस्थ खान पान के साथ, क्योंकि मेरे फादर अभी भी यही फॉलो करते हैं और वो स्वस्थ हैं। क्या बात है। सो एक्सरसाइज आपके वालिद साहब यानी फादर कर रहे हैं और अभी तक वो स्वस्थ हैं और यही आप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत प्रैक्टिकली बात आपने कही है कि अपने घर में ही आप एक एग्जांपल देख रहे हैं और ये हम चाहते हैं कि भाई वो यूं ही हमेशा स्वस्थ रहें और आप सभी पर उनका साया हमेशा बना रहे। और ये बात बिल्कुल सच है कि भाई बॉडी मूवमेंट यानी एक्सरसाइज से बहुत फ़र्क पड़ता है। सो ये बात बिल्कुल सही आपने कहा। थैंक यू सो मच बताने के लिए प्रीति जी, अपना रियल लाइफ का एक्सपीरियंस। सो भाई इसी के साथ में हम आपको अब बताने वाले हैं आपकी गट हेल्थ, यानी पांच तरह के ऐसे पानी जो आपकी गट हेल्थ को नेचुरली हील करने में मदद कर सकते हैं। सो ये गट हेल्थ क्या है, पहले तो इस बात को जान लीजिए। गट हेल्थ का मतलब होता है हमारे पूरे पाचन तंत्र के बेहतर स्वास्थ्य से मतलब है, यानी हर वो चीज़ जो हमारे पाचन में कहीं ना कहीं भागीदारी अपनी सुनिश्चित करते हैं, वो सारे अंग उनके बेहतर होने से है जो भी डाइजेशन को करते हैं। सो कौन कौन से पानी हैं जो गट हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं, वो भी नेचुरली। जाहिर है कि आप भी जानना चाहेंगे, हम भी जानना चाहेंगे, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और वैसे भी कहते हैं ना कि आधे से ज़्यादा ट्रीटमेंट तो जो है वो पानी ही कर देता है, लेकिन इस पानी में बस थोड़े थोड़े से बदलाव करने हैं और ये आपके गट हेल्थ को बहुत अच्छा करने वाला है। और जब जाहिर है कि भाई डाइजेशन सही होता है, उसके अंग सही होते हैं, तो आपका स्वास्थ्य वैसे भी मस्त होता है भाई।

0: अच्छा बच्चों, एक बात बताओ।
1: जी सर।
0: अगर कोई स्कूल में बम रख जाए तो क्या करोगे?
1: तो क्या करना है, एक दो घंटे देखेंगे, अगर कोई ले जाता है तो ठीक है, वरना फिर अच्छे से लाके स्टाफ रूम में रख देंगे, और क्या।
2: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: तो हम बताने जा रहे थे आपको गट हेल्थ के बारे में। भाई कुछ ऐसे पानी भी हैं पांच तरह के जिनको अगर आप लेते हैं तो ये आपकी गट हेल्थ, मतलब बताया था हमने आपकी गट हेल्थ क्या होता है, यानी वो सारे अंग के सही होने से मतलब है जो हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। और आपको बताया कि कहते हैं भाई डाइजेशन अगर सही है तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत सारी बीमारियों से वैसे भी दूर हैं, आप वैसे भी बचे हुए हैं। ये हम नहीं बल्कि ये आप सभी लोग जानते हैं और ये बात तो बिल्कुल सच है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन से ऐसे पानी हैं जिनको लेने से हमारी गट हेल्थ में बहुत सुधार होता है।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

सो भाई वो पानी जो है, सबसे पहला है सौंफ का पानी। इवन आपने अपने घर के बुजुर्गों को कई बार इसको पीते भी देखा होगा, कई बार आपने किसी से सुना होगा, कई बार तो अपने रील्स में ही स्क्रॉल करते हुए ऐसा देखा होगा। बट ये बात सच है कि सौंफ का पानी जो है वो गैस और ब्लोटिंग में राहत देता है, चाहे ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो या फिर गैस की प्रॉब्लम हो, सौंफ का पानी अगर पीते हैं तो ये फायदेमंद होता है। इसके अलावा एसिडिटी और पेट में जो जलन है उसको भी कम करने का काम करता है ये सौंफ का पानी। इसके अलावा डाइजेशन को बेहतर बनाता है, जो हमारा पाचन होता है उसको बेहतर बनाने का काम करता है। तो करना क्या होता है कि एक चम्मच सौंफ जो है रात भर आप भिगो कर रख दें और सुबह इसका पानी पी लें और इसका फ़ायदा आपको मिल जाता है। दूसरा है अजवाइन का पानी, इसको तो मैंने खूब पिया और बहुत फ़ायदा मिला है। सो अपच हो या कब्ज हो उसमें काफ़ी मददगार होता है। इसके अलावा पेट दर्द हो रहा हो या पेट में भारीपन हो और उसको कम करना चाहते हैं तो भी ये पानी इसमें हेल्पफुल होता है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन तेज़ करता है, जो कि हमारे पाचन के लिए दोनों ही बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें क्या करना होता है कि गुनगुने पानी में उबाल करके इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अजवाइन का पानी। और इससे क्या होगा कि हमने बताया जैसे अपच है या कब्ज़ है, पेट में दर्द है या भारीपन है, इवन मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाता है और डाइजेशन बेहतर करता है, इसलिए कहीं ना कहीं अजवाइन का पानी बहुत फ़ायदेमंद है। मेथी का पानी तो खुद हमारे पिताजी यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि गट इन्फ्लेमेशन जो है उसको कम करने में सहायक होता है, ये कब्ज़ में राहत देता है, डाइजेशन इम्प्रूव करता है। तो कहीं ना कहीं अगर घुटनों में दर्द भी है उसके लिए भी, यूरिक एसिड के लिए भी कई बार लोग कहते हैं। सो ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं, रीजंस होते हैं जिनके लिए एक छोटी सी चीज़ बहुत हेल्पफुल होती है। सो मेथी का पानी भी गट हेल्थ इन्फ्लेमेशन को कम करता है और ये बहुत अच्छा है। सो रात भर भिगो कर आप सुबह खाली पेट इसको पी सकते हैं, मेथी का पानी। इसके अलावा तांबे के बर्तन का पानी, नॉर्मल पानी, अब बात करते हैं नॉर्मल पानी, ये क्या करता है, डाइजेशन को सपोर्ट करता है, गट बैक्टीरिया को बैलेंस करने में मदद करता है और बॉडी को नेचुरली डिटॉक्स कर देता है। अगर आप तांबे के बर्तन में पानी पीते हैं, इसमें करना ये होता है कि रात भर तांबे के बर्तन में रख करके आप सुबह उस पानी को पीते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और हमने ये जो भी तरीके बताए हैं वो आपके लिए बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो या तो तांबे के बर्तन का इस्तेमाल कर लीजिए, मेथी का पानी का इस्तेमाल आप गट इन्फ्लेमेशन को कम करने में या फिर कब्ज़ के लिए कर सकते हैं, डाइजेशन को अच्छा करने के लिए कर सकते हैं। अजवाइन का पानी क्या करता है कि अगर अपच है या कब्ज़ है या पेट में दर्द है या भारीपन है, इवन मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है, डाइजेशन को भी तेज़ करता है। सौंफ का पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर गैस की प्रॉब्लम है या ब्लोटिंग अगर आपको है तो उसमें भी राहत देता है। एसिडिटी है या पेट में जलन है उसको भी कम करता है और डाइजेशन को भी बेहतर करता है। सो सौंफ का पानी बहुत सिंपल सा हमने बताया, सौंफ का पानी हो गया आपके लिए, अजवाइन का पानी, मेथी का पानी, तांबे के बर्तन का पानी, इस तरह से अगर आप यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ों को तो अलग अलग चीज़ों में हेल्पफुल होता है। लेकिन एक बात का ख्याल आपको हमेशा रखना होता है कि भाई अगर किसी को कोई बीमारी है तो इस हिसाब से पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ही होगा, क्योंकि हो सकता हो कि इसमें से आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा लेने पर या आपके लिए सही ना हो। सो अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तब तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको कंसल्ट करना चाहिए ताकि आपके लिए कोई भी चीज़ की ज़्यादती भी ना हो, क्योंकि जब कमी होती है तो भी प्रॉब्लम है और ज़्यादती होती है तो भी प्रॉब्लम है। इसलिए ये बात आप जानिए, जैसे किसी को अगर हार्ट का कोई इशू है या किडनी है या स्टोन की प्रॉब्लम है तो इस तरह की प्रॉब्लम होने से पहले, मतलब आप इसको लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें ताकि आपके लिए ये बेनिफिशियल ही हो, आपके लिए नुकसानदायक ना बने। सो फिलहाल हमने गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के ये जो कुछ तरीके बताए हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, गट हेल्थ को बेहतर बनाते हैं और इनका इस्तेमाल करके हमारी जो डाइजेशन से जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम बेहतर कर सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं हम सॉल्व कर सकते हैं। सो ये तरीके आई होप कि आप तक पहुंच गए हैं और आप इसको अब अपनाने भी वाले हैं और कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम में आप राहत भी इसको अपना करके पाने वाले हैं।
सो अगर आप ऐसा करने वाले हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, पहले ही आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और चलिए फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने अगले म्यूजिकल ट्रैक की तरफ, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। गुड मॉर्निंग गुंडा शो चल रहा है, मॉर्निंग चौक आरजे अदनान लाइव है आपकी मॉर्निंग शो, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग गोंडा।

सुबह आज एक नहीं बल्कि दो दो बर्थडे। पहले तो हमने वर्तिका के बर्थडे यानी आन्या के बर्थडे को सेलिब्रेट किया और अब हम करने वाले हैं, हमें बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स भेजने वाली यामिनी चौहान जी का भी बर्थडे है। सो यामिनी चौहान जी, आपको आपके बर्थडे की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप बहुत उम्दा लिखते हैं और हम सभी लोगों का आपका लिखा हुआ बहुत पसंद आता है। काफ़ी इंटेंस्ड फीलिंग्स होती हैं, काफ़ी अलहदा शब्द होते हैं और गज़ब की बात होती है। थैंक यू सो मच टू यू। सो आपको भी डेडिकेटेड ये एक सॉन्ग हम सभी लोग आपको डेडिकेट करते हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM की तरफ से। हैप्पी बर्थडे टू यू।

0: हो 50,000। यामिनी जी, आपको आपके बर्थडे की, आपके जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन इसका जो श्रेय जाता है बताने का, वो गुंजन जौहरी जी ने बताया। सो स्पेशल थैंक्स टू गुंजन जौहरी जी फ्रॉम सहारनपुर उत्तर प्रदेश। फिलहाल आप लोगों की तरफ से कंटेंट्स भी आ गए हैं, तो चलिए आज कई लोगों ने अलग अलग जगह से कंटेंट्स दिए हैं आपके अपने मॉर्निंग वाले शो में। यानी आप जो कुछ लिखते हैं या आपके बहुत करीबी कोई लिखता है, आप हम तक पहुँचाते हैं इंस्टाग्राम के मैसेंजर और फेसबुक मैसेंजर के जरिए।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सो यस, अब चलते हैं आपके भेजे गए कंटेंट्स की तरफ और बताते हैं किसने क्या कुछ भेजा है। सो हम बता दें कि भाई हमारी प्रीति जी ने बहराइच से भेजा है दहलीज। लिखती हैं, दहलीज तो बस लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा है, पर स्त्री के लिए वो उम्र भर की यादों का दरवाज़ा होता है, जिसे लांगते ही उसकी खिलखिलाहट, उसके बचपन की गलियां और माँ के आंचल में छुपी सारी मासूमियां पीछे छूट जाती हैं। पुरुषों के लिए दहलीज लांघना एक उम्मीद हो सकता है नए रस्तों का, नए सपनों का, पर सभी महिलाओं के लिए मुमकिन नहीं होता। कहने को लड़कियों के होते हैं दो घर, लेकिन वास्तविकता में होता नहीं एक भी घर, क्योंकि प्रायः बेटों का ही नाम लिखा होता है कागजों पर और वो आसानी से कह देते हैं कि ये घर मेरे नाम है लिखा। तो बताओ कौन सा दहलीज है बेटियों और बहुओं का? लोग कहते हैं दहलीज पार करते ही स्त्री बदल जाती है, पर सच ये है कि दहलीज नहीं बदलती, बस स्त्री की सारी दुनिया ही बदल जाती है। और बहुत कम स्त्रियां ही बंधी इस दहलीज को पार कर पाती हैं, स्वयं मुझ जैसी सोचती ही रह जाती हैं कि क्या कहेंगे समाज के लोग, क्योंकि होती नहीं एक जैसी हर एक नारी सूझबूझ और विचारों में। क्या बात है, बहुत फैक्चुअल, बहुत सटीक बात आपने कही है। मतलब जिस तरह से आपने लिखा है, जो बयां करने की कोशिश की है, वो लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा। आपको, आपके लिखे हुए को हम सलाम करते हैं प्रीति जी फ्रॉम बहराइच। अगला कंटेंट श्रुति कीर्ति जी का है, जो कि आशु मिश्र जी ने पहुंचाया है हम तक इंस्टाग्राम पे, और आपने लिखा है कि भारत माता के मस्तक पर खूनी खंजर से वार किया, इतिहास अभी तक चीख रहा, क्यों नहीं आज तक न्याय हुआ। सो कोई भी महिला के साथ हुई घटना कहीं ना कहीं स्त्री की बात नहीं होती है। जिस भारत को, जिस देश को हम माँ कहते हैं, जहाँ देवियों की पूजा होती है, जहाँ महिलाओं की, खातूनों की इज्जत की बात कही जाती है, वहाँ आखिर फिर ऐसा क्यों होता है? ये सवाल तो उठता ही है वाजिब भाई, ये सवाल। एंड इसके बाद चलते हैं, गुंजन जौहरी जी ने विश किया है अपने ही अंदाज में यामिनी जी को। क्या लिखा है ये बताते हैं। जन्मदिन केवल केक पर रखी मोमबत्तियों का नाम नहीं, ये उन अनगिनत सपनों का उत्सव है जो अपनी आंखों में अपना घर बनाए हुए है। आज की सुबह आपके लिए सिर्फ एक नया दिन नहीं लाई, बल्कि समय ने तुम्हारे हाथों में एक और अनलिखा वर्ष सौंप दिया। इसे मुस्कानों से लिखना, इसे साहस से सजाना, और जहां भी जाना अपने होने का एक सुंदर सी वजह छोड़ जाना। तुम्हारी पहचान शोर से नहीं, तुम्हारे स्वभाव की शांति से बने। तुम्हारी जीत तालियों से नहीं, उन दुआओं से मापी जाए जो लोग आपके लिए करते रहें। जब कभी पीछे मुड़कर देखो तो अफसोस नहीं, बस एहसास हो मैंने अपनी जिंदगी सचमुच जी है। ईश्वर आपके हर कल को आज से अधिक उजला, हर सपने को आज से अधिक सच्चा, और हर मुस्कान को आज से अधिक गहरा बना दें। जन्मदिन की हृदय से अनंत शुभकामनाएं यामिनी जी। वाह क्या बात है, इतनी प्यारी दुआएं, और कितनी परफेक्ट बात कही है कि लास्ट में ये ना लगे कि हमने ज़िंदगी जी ही नहीं है। ये तो बहुत बड़ी दुआ है, ये शायद हम समझने में बहुत देर कर देते हैं, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि जब कभी मुड़कर देखें तो हमको अफसोस नहीं, बल्कि ये लगे कि हमने जिया है, और जहाँ तक जी सके हैं, जहाँ तक कर सके हैं, हर वो चीज़ खुद के लिए किया है, उसमें किसी का नुकसान नहीं। हाँ, खुद के जीने की वजह ज़रूर तलाशा है। थैंक यू सो मच टू यू गुंजन जौहरी जी। और अब खुद लास्ट में हमारी बर्थडे गर्ल यानी यामिनी चौहान जी का खुद का अपना कंटेंट है। क्या लिखा है कि तुम्हें पाने की ख्वाहिश से ज़्यादा तुम्हें महसूस करने का सुकून अजीज है। तुम मेरी ज़िंदगी में किस्मत बनकर नहीं, रूह की तस्कीन बनकर आए हो। तुम्हारी मौजूदगी ने मेरे भीतर के शोर को खामोशी की जबां दे दी। अब इश्क का मतलब तुम्हें पाना नहीं, हर धड़कन में तुम्हें जीना है। तुम मिलो या ना मिलो, मेरी दुआओं का सबसे खूबसूरत हिस्सा हमेशा तुम्हारा ही नाम रहेगा। क्या बात है, बहुत प्यारा, बहुत ही डीप, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि इतना प्यारा आप भी लिखते हैं, और न सिर्फ लिखा बल्कि हम तक पहुंचाया। सभी सुनने वालों को, सभी लिखने वालों को बहुत शुक्रिया, और
अगर हम चैट बॉक्स की बात करें तो कई लोगों ने ऑफकोर्स यामिनी चौहान जी को बर्थडे विशेस भी भेज दी है, और धर्मेंद्र जी कहते हैं एफएम में चल रहे चुटकुले बहुत अच्छे लगते हैं, थैंक यू सो मच। आशु जी कहती हैं आज भी अपने माता पिता की संस्कार पर चल रही हैं। अजय गिरी आपका स्वागत करते हैं, आपको जानकारी बहुत फ़ायदेमंद लगी गट हेल्थ के बारे में। सबलू सावंत फ्रॉम सांता क्रूज मुंबई से गुड मॉर्निंग टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे लोगों ने यामिनी चौहान जी को उनके बर्थडे की मुबारकबाद दी है, सविता दुबे जी ने भी दी है और प्रीति जी ने भी दी है और साथ ही साथ आशु जी ने भी दी है, अजय गिरी जी ने भी दी है, धर्मेंद्र जी ने भी दी है। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। और यही तो हमारी फैमिली है और यही हमारी ताकत है और यही हम सभी को बहुत पसंद है। सो थैंक्स टू एवरीवन। और आज का शो कैसा रहा ये बता सकते हैं। फिलहाल आपसे लेते हैं इजाज़त मॉर्निंग वाले शो से, लेकिन आपको बने रहना अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो के सुनने के बाद अपने गोंडा एफएम 89.6 एफएम पर, क्योंकि यही तो है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में GMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
6: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। गांव की गूंज की अपार सफलता के बाद हम सभी मिलकर के एक नया एपिसोड फिर से ला रहे हैं। इस बार का एपिसोड हमारा मनकापुर से संबंधित है। उसमें बहुत सारे मधुर मधुर गीतों की जो माला पिरोई गई है, वो श्रीमती किरण पांडे जी की मधुर आवाज में है और उनका साथ दे रही है जिमी, श्वेता, हरिओम। तो आइए हम सभी मिलकर सुनते हैं गांव की गूंज का ये नया एपिसोड। अरे भाई, सब तैयार हो? जल्दी करो, बहुत देर हो गई है। अरे मनकापुर चलना है।
7: पर किरण दी कहाँ हैं? उनका तो कुछ पता ही नहीं है और जिमी भी अभी तक नहीं आई है, क्या करें?
6: अरे किरण दी को फोन लगाओ, पूछो कहाँ है, चलना है कि नहीं। कही थी 10 बजे तक निकल लेना और 11 बज रहे हैं, अभी तक उनका पता ही नहीं।
7: अरे बाबा, लगा रही हूँ फोन।
8: हाँ श्वेता, बस आ रही हूँ। मैं ना रात ही में अपने मायके चली आई, बस आ रही हूँ, तुम लोग तैयार मिलो।
9: किरण दीदी अपने नैहरे गई हैं, देखो कितनी देर में आवती।

0: चलो दीदी, बहुत देर होती है, हमका लौटे के समझाता।
1: किरण दी, आपको पता है कि गांव निकलना है, फिर भी इतनी देर लगा दी, कहाँ रह गई थी आप?
2: अरे देर हो गई, पर चलो जल्दी करो, गाड़ी बाहर खड़ी है, रामनिवास को एक कप चाय पिला दो, बहुत ठंडी है।
3: देखो कुछ भी हो जाए पर हम लोग अपने गांव जाने का प्रोग्राम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। कितना मजा आता है जब गांव में बगीचे में चारपाई डालकर हम लोग आराम से धूप सेकते हैं।
1: हाँ सच में श्वेता दी, ना कोई प्रदूषण ना कोई शोरगुल, कितना सुकून मिलता है ना गांव में। किरण दी आइए, हम लोग गाड़ी में बैठ गए।
2: अरे आज मैं साड़ी पहनकर चल रही हूँ, मेरी सास जू आ रही है, पर ये पेटीकोट में गांठ लग गई जो खुली नहीं रही। जिम्मी जरा तुम ही देखो।
1: देखती हूँ दी, एक मिनट।

0: अरे भाई मेरी सांस बहुत तेज है, जरा बच के रहना, और बड़ी फैशन में रहती हैं।
1: हम लोग चाची को खूब सजा देंगे।
2: अरे नहीं संता दी, वो खुद ही इतनी सजी संवरी रहेंगी। मैं एक बार उनसे मिली हूँ, बहुत तेज हैं वो।
3: राम निवास भैया, जरा यही गाड़ी रोकिए, अमरूद बहुत अच्छे दिख रहे हैं, ले लूं चाची के लिए।
4: अच्छा दीदी, रोकता हूँ।
1: आ गए हम लोग। किरण दी, आपके सासू जी कहाँ हैं?
0: वो रही धूप में बैठी हैं चारपाई पर, जो सबसे ज्यादा सजी धजी है, लाल साड़ी में, वही हमारी सासू जी हैं।

0: अच्छा, दिखने में ही बड़ी तेज लग रही है।
1: चलो चलो आओ, सब लोग चाची जी को राम राम कहते हैं भाई। चाची जी राम राम।
2: चाची राम राम।
3: राम राम बहनी, के हो तुहरे लोग?
4: चाची, हम सभी आपके पतोहिया के साथे में काम करी थे।
3: अच्छा अच्छा, आओ बहनी, बैठा बैठा सभी। हे दुल्हन, लाओ सबका चाय पानी कुछ पियाओ। का करती हो दादा? हाँ अम्मा जी, ला रही हूँ। बहुत चिल्लाती हैं अम्मा जी। सुनिए, अम्मा के लिए एक नौकरानी लगवा दीजिए।

0: गांव में आज भी कितना अच्छा लगता है। मैं तो कहीं भी रहूंगी पर अपने गांव बराबर आती रहूंगी।
1: अरे किरण दीदी है ना हम लोग को गांव-गांव घुमाने के लिए।
2: हाँ हाँ क्यों नहीं, चाहे जहाँ रहो पर अपने गांव अपनी मिट्टी से हमेशा जुड़ी रहो।
3: जब अपने गांव और मिट्टी से जुड़ी रहोगी तो अपने माता पिता सास ससुर या पूरे परिवार से जुड़ी रहोगी और यही होना चाहिए।
1: बिल्कुल, अब देखो किरण दीदी के पड़ोस वाली अम्मा कहा बना कर लाई हैं हम लोग के लिए, वो भी एकदम गर्मा गर्म।
0: गांव में यही तो अच्छा लगता है, कितना प्रेम है एक दूसरे से। अरे वो देखो चाची अलाव जला रही हैं। अरे ठंडी भी तो बहुत पड़ रही है।
3: चलो चलो तापते हैं और यही बैठकर चाची जी के साथ खाना भी खाते हैं।
1: वाह सरसों का साग और जनरी की रोटी, अरे भाई मक्के की रोटी, मजा आ गया खाने में।

0: अरे तुम लोगों ने खाना खाया? ये खाना हमारी बड़की अम्मा ने बनाया है।
1: पर किरण दी, आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? क्या हुआ, भैया से कुछ कहा सुनी कर ली क्या?
0: अरे समता, ये जरा जल्दी ही नाराज हो जाते हैं।
2: अरे कोई बात नहीं, जहाँ प्यार होता है वहीं तकरार होता है।
3: कोई बात नहीं, आप जाकर भैया जी को मना लीजिए, रूठना मनाना तो लगा ही रहता है।
0: अरे भाई, ये इनकी आदत है रोज रोज नाराज होने की, तनिक सी बात पर बस गुस्सा हो जाते हैं।
4: अरे तो हार कौन चाह।

0: अरे किरण दी, जाने दीजिए, भैया की बात को इतना दिल से ना लगाइए। चलिए चलिए खाना खा लीजिए।
1: खाने में कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, खूब लड़िए और जमकर खाना खाइए। क्यों समता दीदी?
2: भाई गांव में अभी भी बड़ों का सम्मान, प्यार और दुलार है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का पूरा ख्याल रखा जाता है। अब देखो हम लोग आए तो किरण दी की बड़की अम्मा खाना बना कर ले आई ना, कितना अच्छा लगता है। ये प्यार देखकर कोई बाहर से आया तो पूरा परिवार आकर स्वागत में खड़ा हो जाता है।
3: हाँ ये बात तो है, गांव में अपनापन है, इसीलिए कहती हूँ कहीं भी रहो पर अपना गांव, अपना घर, अपनी मिट्टी से जुड़कर रहना चाहिए।
0: और हाँ, अपने लोगों से आप तभी जुड़कर रह पाओगे जब आप उनके बीच आते जाते रहोगे। और देखो कुछ भी हो जाए, चाहे जैसे भी हो, पर किरण दी हम लोगों को गांव की सैर करवा ही देती हैं।
3: बहनी सभी जाती हो का? अरे तनी यहाँ सब लिहा जाओ, ई लौकी होए, ई कद्दू होए, आओ ई बड़के झोलवा में ना साग होए, हमारे खेतवा खोए दादा। और सुनो, सरसों के साग है और बथुआ के साग है और मुरई है बहनी, सभी आपस में थोड़े थोड़े बांट ली हो।
1: अच्छा चाची ले लियो। बन
0: राम निवास भैया कहाँ है? चलिए
2: किरण दी कहाँ है, चलिए। राम निवास भैया ये बोरी और ये झूला गाड़ी में रख लीजिए।
0: सब लोग गाड़ी में बैठिए, मैं देखती हूँ किरण दी कहाँ है। किरण दी कहाँ है आप? अरे चलिए वरना रात हो जाएगी। अरे ये क्या, फिर नाराजगी? अभी भी आप भैया से नाराज हैं?
3: चलो चलो चलते हैं, ये झगड़ा हमारा और इनका हमेशा रहेगा। और इनको जब किसी भी बात की सनक सवार हो जाती है तब ये किसी की नहीं सुनते।

0: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 27

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

गुड आफ्टरनून एवरीवन। भाई वक्त हो चुका है 12:06 आ चुकी हूँ। मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपको अपना प्रोग्राम ज्ञानसी लाइव। और आज है दिन थर्सडे, यानी कि भाई आज दिन है हमारे बॉलीवुड का। जी बॉलीवुड वाले दिन, यानी कि थर्सडे को हम बात करते हैं बॉलीवुड न्यूज़ की और गॉसिप की, जिसमें हम अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ और नई मूवीज़ के बारे में भी जानते हैं। भाई देखिए, आज तो खबरें मेरे पास बहुत सारी हैं, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? मुझे लग रहा है कि जितनी खबरें ना मेरे पास, टाइम थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। तो भाई जल्दी से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले भाई आप सब कैसे हैं? अपना हाल चाल ज़रूर आके चैट बॉक्स में बताइएगा। और ये भी बताइए कि भाई कि इतनी रिक्वेस्ट के बाद जो मौसम इतना सुहाना हुआ है, तो इसमें अभी तक पकौड़े खाए कि नहीं, और अच्छी गर्मा गर्म चाय के साथ उसका लुफ्त दुगना किया कि नहीं। चलते हैं हमारी खबर की तरफ। और खबर सुनते सुनते आप चाहें तो चाय पकौड़े बना के इंजॉय भी कर सकते हैं। चलते हैं फर्स्ट खबर की तरफ, जो कि है जंगल से। जी हाँ, देखिए जंगल में हम नहीं बात करने वाले, हम बात कर रहे हैं वेलकम टू द जंगल मूवी की। भाई इस मूवी ने 100 करोड़ मार लिए हैं। अक्षय कुमार, संजय दत्त, सुनील सेठी वाली कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल ने इंडिया में 100 करोड़ कमा लिए हैं और पूरी दुनिया में 120 करोड़ से भी ज़्यादा पार हो गई है। ये फिल्म अब सीधे हिट फिल्म्स की लिस्ट में आ गई है। और अक्षय कुमार ने 100 करोड़ के बाद सीनियर कलाकार फरीदा जलाल और किरण कुमार को दिल से शुक्रिया बोला है और कहा है कि इस मूवी को सुपर डुपर हिट बनाने में इनका सबसे बड़ा रोल है और इन्होंने जी जान से इसके पीछे मेहनत की हुई है। अब देखना यह है कि भाई आगे जुलाई में आने वाली कई सारी मूवीज हैं जिसको ये देखना होगा कि ये 150 या 200 करोड़ तक पहुंचती हैं या फिर जुलाई की सबसे सुपर हिट मूवी वेलकम टू द जंगल ही होगी। तो भाई अगर आपने देखा है तो जल्दी से आइए, इस मूवी का फीडबैक हमें दीजिए, हमें पता चले कि क्या रिव्यूज हैं और हमें देखना चाहिए या फिर नहीं। इस बहुत ही धमाकेदार खबर के साथ लेते एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार सॉन्ग, क्योंकि भाई इतनी खुश खुश खबरी है कि भाई इतना बड़ी जीत हुई है अक्षय कुमार की। भाई हमारे अक्षय कुमार ना बहुत ही अच्छे, बहुत ही नेक दिल इंसान है और उनकी मूवी हिट गई है तो जीत का जश्न मनाना तो बनता है। सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा म्यूज़िक और इन्जॉय करते हैं।

वेलकम बैक एवरीवन आफ्टर ब्लॉकबस्टर सॉन्ग। भाई ये गाना बड़ा ही ज़्यादा अच्छा था और मुझे मेरे बॉडी में पूरी ऐसी एनर्जी सी आ गई। मुझे मन कहा कि लाओ यार थोड़ी सी और न्यूज़ दे देते हैं आप, थोड़ा सा जश्न को दुगना कर देते हैं, क्योंकि भाई नेक्स्ट खबर है ही इतनी ज़्यादा धमाकेदार। देखिए भाई, अंशुला कपूर की शादी की बात तो हमने लास्ट वीक भी की थी। अंशुला कपूर की शादी है 6 जुलाई को, ये डेट सबके सामने आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात है, दुल्हन के पापा यानी कि बोनी कपूर ने खुद इसे बताया है। बोनी कपूर ने पक्का कर दिया है कि उनकी बेटी अंशुला कपूर 6 जुलाई को अपने बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर के साथ शादी करेंगी। मुंबई में एक छोटी और अपनों वाली शादी होने वाली है। यानी कि भाई दोस्तों देखिए, यहाँ से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हम जो हैं बहुत ज़्यादा खर्च करने की सोचते एकदम ग्रैंड वेडिंग करेंगे, आपका मन है आप करिए, लेकिन एक्सेस खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी ही खर्चा होता है, जितना इन्जॉयमेंट होती है, उतनी ही ज़्यादा शादी में वेस्टेज भी होती है। तो भाई उतना करें जितना आपका मन है। पूरा कपूर परिवार फिर से खबर में आ गया है और लोग, क्योंकि इस बीच देखिए काफ़ी सारे रिचुअल्स चल रहे हैं कपूर फैमिली में, और सभी कहीं ना कहीं इन लोगों की ड्रेसिंग ड्रेस में और लुक्स में, इन लोगों के रिचुअल्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगा रहे हैं। और सोशल मीडिया पे फ़िलहाल इनकी जो खबर है ना, जो इनकी हर एक एक मिनट की खबर, वो कहीं ना कहीं लोग पा ही जा रहे हैं और उसको लेकर के फिर वायरल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये खबर कितनी हिट जाने वाली है, और नेक्स्ट वीक यही खबर हिट रहेगी या फिर कोई दूसरी खबर? उसके बाद अगर हम बात करें तो भाई काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें हमारी आलिया भट्ट की, जी हाँ, आलिया भट्ट ने अल्फा से पहले 1.75 करोड़ यानी लगभग 2 करोड़ कमा लिए हैं सिर्फ बुकिंग से ही दोस्तों। अब सोचिए आलिया भट्ट का क्रेज़ कितना ज़्यादा होगा हिंदुस्तान में। देखिए आलिया भट्ट और शर्वरी वाली फिल्म अल्फा अभी आई भी नहीं है और बुकिंग शुरू हो गई। भाई अब देखिए इसमें लोग कह रहे हैं कि आलिया भट्ट ने थोड़ा सा प्रॉफिट उठाया, क्योंकि अभी ये शर्वरी की रिसेंट मूवी जो है मैं वापस आऊँगा से शर्वरी इतनी ज़्यादा फेमस हो गई हैं और इतनी ज़्यादा क्रेज़ है, और कहीं ना कहीं शर्वरी फ़िलहाल इंडिया की नेशनल क्रश भी बन चुकी है। तो मेरे से उसका फायदा उठा के इसकी भी मार्केटिंग की गई है और इतनी ज्यादा रकम इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अभी बुकिंग से ही कमा ली है। ये दिखता है कि यश राज फिल्म्स ने स्पाई दुनिया वाली फिल्म में लोगों का कितना इंतजार कर रही है। पिछली स्पाई फिल्म्स की तरह ये भी बहुत बड़ी हो सकती है दोस्तों। अगर आपको धुरंधर मूवी या फिर कुछ ऐसी जिसमें खुफिया जासूसों वाली मूवी पसंद है ना, तो ये मूवी आप ही के लिए बनी है। इसको इंजॉय करते हैं और इस शादी की खबर प्लस इस बुकिंग की इतनी बड़ी कमाई की खबर से थोड़ा सा एंजॉय करते हैं और सुनते हैं कि बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। स्पेशली दिस सॉन्ग इज फॉर अंशुला कपूर, क्योंकि उनकी शादी। एंजॉय करते हैं दोस्तों, स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक दोस्तों, आ चुकी हूँ वापस। मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम ज्ञानस्थी लाइव। और आज है थर्सडे जिसमें हम एंजॉय करते हैं बॉलीवुड की कुछ खबर। अभी तक हमने एंजॉय किया शादी की, धमाके की और सेलिब्रेशन की, लेकिन भाई कहीं रिश्ते जुड़ रहे हैं, कहीं रिश्ते टूट रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि बॉलीवुड में हो क्या रहा है। यहाँ हम अंशुला कपूर की शादी करवा रहे हैं और भाई पिछले कई हफ्तों से ये र्यूमर फैली हुई थी कि कृति सेनन ने अपने बॉयफ्रेंड कबीर के साथ ब्रेकअप कर लिया, यानी कि दोनों के दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं। अब ये बात कितनी सच थी, कितनी झूठ, ये तो कभी कृति सेनन ने अपनी पोस्ट पे नहीं कहा, ना ही कबीर ने कहा। लेकिन भाई अभी रीसेंट कृति सेनन की जो पोस्ट आई है उसमें कहीं ना कहीं इस पूरी र्यूमर के लिए एक जवाब छुपा था। भाई कृति सेनन ने अपनी फोटो में कबीर भाईया के करीब पकड़े, जो है उनके पास खड़े होके फोटो खिंचवाई है, जिससे ये लगा कि हाँ भाई जो र्यूमर थी वो झूठी थी और जो रिश्ता टूट गया था, हमें ऐसा लग रहा था वो रिश्ता कभी शायद टूटा था ही नहीं। हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन इस पोस्ट ने सीधा ये जाहिर कर दिया है कि ये दोनों अलग अभी नहीं हुए हैं, दोनों अभी भी साथ हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है। उसके बाद चलते हैं हम भाई रिश्तों की और। बात जब हो ही रही है और इस वीक बॉलीवुड में रिश्ते काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, यानी कि रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है। देखिए सुनीता आहूजा को तो आप जानते ही हैं, अरे भाई वही हमारी गोविंदा की वाइफ, उनकी मिसेस। जी हाँ, उन्होंने एक शो में एक बहुत ही ज़्यादा

कॉन्ट्रोवर्शियल बयान दिया जिससे वो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पे। भाई गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने एक शो पर खुल के बात की है, जब उनसे गोविंदा के बाहर के रिश्तों के बारे में पूछा गया कि उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं या उन्होंने घर से बाहर भी और रिश्ते बना रखे हैं, तो उन्होंने सीधा बोला कि तुम किसी को रोक नहीं सकते हो कुछ भी करने से। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला कि बॉलीवुड में नाजायज संबंध बहुत ज्यादा कॉमन है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत ज्यादा कॉमन है, जिसमें बगल में खड़ी फरहा अख्तर ने बगल में ही उनके खड़े थे रितेश देशमुख, जिनसे पूछा कि शायद तुम भी ऐसा करते हो, तो रितेश देशमुख ने अपनी लॉयल्टी दिखाते हुए सीधा मना कर दिया कि हाँ ये अलग कॉमन होगा, लेकिन मेरे लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज अ वेरी रॉन्ग थिंग, यानी बहुत ज्यादा गंदी चीज है ये मेरे लिए, मैं ऐसा नहीं करता, जिसमें एक तरफ एक रिश्ते की लॉयल्टी दिख रही है और साथ ही साथ एक तरफ सुनीता आहूजा के बारे में भी पता चल रहा है कि कितना ये चीजें एक्स्ट्रा मैरिटल चीजें कितनी ज्यादा आम है बॉलीवुड में। हालांकि कुछ लोग इसे मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग लॉयल है कुछ लोग नहीं लॉयल है, लेकिन सुनीता आहूजा फिलहाल तो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं अपने इस बयान से। आपका क्या मानना है इसके बारे में, जरूर से आके चैट बॉक्स में बताइए, हमें भी पता चले कि भाई गोविंदा के बारे में और सुनीता आहूजा के बारे में आप क्या सोचते हैं। उसके बाद तीसरी खबर दोस्तों वो है आमिर खान से। जी हाँ, आमिर खान के भाई फैसल ने माफी मांग ली। जी हाँ, शादी से वो भी पहले। आमिर खान के भाई फैसल ने माना कि उन्होंने पहले भाई के बारे में गलत बातें की थी। शादी से पहले उन्होंने खुद से आकर आमिर खान से माफ़ी मांग ली है, इससे घर में माहौल थोड़ा सा नर्म हो गया है। हालांकि हम आपको बता दें कि फ़िलहाल कुछ दिनों पहले ही आमिर खान और आमिर खान के मतलब जो उनके भाई थे जिनका नाम फैसल है, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी चल रही थी, यानी एक दूसरे से ये लोग झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे, जो कि कहीं ना कहीं मीडिया को भी पता चल रहा था कि इन दोनों में कुछ अनबन चल रही है। लेकिन वो अनबन कंफर्म हो गई जब फैजल ने आके सामने से माफी मांग ली है। अब घर में माहौल थोड़ा सा अच्छा हो गया है और परिवार फिर से एक साथ दिख रहा है। तो भैया ये परिवार के ये रिश्ते और ये शादी ब्याह वाले मामले जब चल रहे हैं तो क्यों ना हम रिश्तों को लेकर के एक गाना सुन लें, इंजॉय कर लें। लेते एक छोटा सा ब्रेक, इंजॉय करते हैं बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, उसके बाद मिलते हैं आपसे बातें करने, क्योंकि इसके बाद जो खबरें हैं वो और भी ज्यादा ट्रेंडिंग है। अब आप सोचोगे इससे भी ज्यादा ट्रेंडिंग? जी हाँ, देखिए बॉलीवुड है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक दोस्तों, आ चुके हूँ वापस। मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम ज्ञान अस्थी लाइव, और आप आज एंजॉय कर रहे हैं बॉलीवुड की कुछ खबरें। भाई बॉलीवुड में चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, लेकिन एक पुरानी अदाकारा, पुरानी नहीं कहेंगे भाई, ऐसा कहेंगे कि हाँ एक ऐसी अदाकारा जिनसे सभी ने कुछ ना कुछ सीखा है, उनका एक बयान सामने आया है जिससे कहीं ना कहीं बॉलीवुड का एक कड़वा सच सबके सामने आया है। भाई अब बात करने वाले हम लोग सच की, तो दिल थाम के बैठ जाइए कि एक बहुत ही पुरानी एक्ट्रेस जिनका नाम है जीनत अमान। जी हाँ, जीनत अमान, जिन्होंने हरे रामा हरे कृष्णा जो कि 1971, यादों की बारात 1973 और डॉन 1978 जैसी आइकॉनिक मूवीज की हैं। अब आपको याद आ गया होगा कि हम कौन सी जीनत अमान की बात कर रहे हैं भाई, जिन्हें मिस एशिया पैसिफिक का भी अवार्ड मिला है। भाई इनका एक बहुत ही बड़ा बयान जो है सबके सामने आया है। मैं आपको बताती हूँ कि भाई उन्होंने कहा है कि उन्हें एक बहुत ही भद्दा और एक सेक्स सिंबल दिया गया था, जिसके बाद से उन्हें उसी बेस पे मूवीज मिलने लगी। यानी कि जीनत अमान ने बिना डरे बिना हिचकिचाए उन्होंने सबके सामने ये बताया कि जब उन्हें बहुत पहले सेक्स सिंबल दिया गया था, उनको ये टैग दे दिया गया था, उसके बाद उन्हें सारी फिल्में वही ऑफर हुई जिसमें उन्हें शो ऑफ करना होता है अपनी बॉडी को, अपने जो है अपने पूरे बॉडी फीचर्स को सामने, और कहीं ना कहीं पूरी स्टोरी इसी पे बेस्ड होती थी। पुराने जमाने के बॉलीवुड का ये सच सुन के लोगों के तो भाई होश ही उड़ गए कि पहले की भी बातें ऐसी होती हैं, क्योंकि काफ़ी लोग का ये मानना है कि आज का बॉलीवुड चेंज हो गया है, पहले के बॉलीवुड से पहले ऐसा नहीं था, अब ज़्यादा ऐसा हो गया है। लेकिन जीनत अमान ने बताया कि बॉलीवुड वही है जो 10 साल 50 साल पहले था, वही बॉलीवुड आज भी चल रहा है। उसके बाद भाई इस बहुत ही बड़ी न्यूज़ के बाद आलिया भट्ट आई और सारे मूड को बिल्कुल लाइट कर दिया। अब आलिया भट्ट ने इस वाले मसले में कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अपने किसी पुराने मामले में उन्होंने बहुत ही समझदारी से अपना खुद का पक्ष लिया। भाई देखिए, अपना पक्ष कैसे लेना है ना, ये आपको आलिया भट्ट से सीखना चाहिए। भाई आलिया भट्ट ने अपने पुराने मीम वाले जोक पे खुद ही उसको ठीक किया, और फैंस को खुशी हुई कि भाई कोई इतना बेहतरीन तरीके से अपनी ट्रोल को कैसे संभाल सकता है। बहुत साल पहले आलिया भट्ट ने एक इंटरव्यू वाले मीम को, जिसमें उनसे किसी ने पूछा था एक प्रेसिडेंट का नाम जो वो नहीं बता पाई थी, और उस वक्त वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गई थी और मीडिया पर चिल्ला दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई। उसके बाद उन पर मीम बनी और काफी लोग उनको आज भी इसी मीम से चिढ़ाते भी हैं, लेकिन उन्होंने अब एक शो में खुद के ही जोक को फिर से ठीक किया और ये बताया कि कैसे वो खुद की बनी हुई मीम या खुद पे बनी हुई मीम जो जोक बनता है उसको कैसे वो एंजॉय करती हैं, और अपने हिसाब से उन्होंने ठीक कर इस मामले को रफा दफा कर दिया। और ये बात तो भाई मैं भी आपको कहना चाहती हूँ, मैंने भी ये कहीं पढ़ा है, कहीं सीखा है कि जो लोग खुद की चीज़ों से इतना ज़्यादा घबराते नहीं हैं, खुद की मीम या कभी ट्रोल होते हैं, कोई उनको रोस्ट करता है, तो अगर वो भी उस रोस्ट पे हंस देते हैं ना, तो सामने वाला जो आपका मजाक बना रहा होता है वो उसके बाद कभी मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि भाई जो मैं इसको करना चाहता था, जो मेरा इंटेंशन था, यानी कि उसे परेशान करना, उसे भड़काना, वो तो ये भड़क ही नहीं रहा, बल्कि ये खुद के जोक पे खुद ही इंजॉय कर रहा है, तो नेक्स्ट टाइम से वो आपको ट्रोल या फिर रोस्ट नहीं करेगा। भाई आलिया भट्ट ने ये चीज़ें लाकर कहीं ना कहीं पूरे सोशल मीडिया को, पूरे बॉलीवुड को थोड़ा सा नर्म कर दिया है। जी हाँ, लेकिन कुछ खबरें ऐसी हैं जो अभी भी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। कौन सी खबर है, और कुछ खबरें ऐसी भी हैं जो दिल को छू जाने वाली हैं, इन सभी को सुनने के लिए आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि भाई लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आते हैं और आपसे बात करते हैं और भी सारी हार्ट टचिंग खबरों की तरफ। जी हाँ,

वेलकम बैक लिसनर आ चुकी हूँ वापस। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम ज्ञानस्थी लाइव, जिसमें हम आज एंजॉय कर रहे हैं बॉलीवुड की कुछ खबरें। इस बहुत ही बेहतरीन गाने जो कि रॉकस्टार मूवीज से था और टाइटल था तुम हो, स्क्रीनिंग हुई है हमारे आपके सभी के चहेते रणबीर कपूर की। भाई ये गाना इतना ज़्यादा फेमस है क्योंकि अब देखिए फेमस होना बनता है एक तो रॉकस्टार मूवी से, जो कि है एक जादूगर की मूवी, यानी कि हमारे इम्तियाज़ अली की मूवी, और ये गाना जो कि हमारे दिल को बिल्कुल छू जाता है। लेकिन दोस्तों दिल छूने वाली एक खबर जो कि बहुत ज्यादा दुखद है वो भी मैं आपको बता दूं, जो कि हमारे बॉलीवुड से है। विजया मेहता अब इस दुनिया में नहीं रहे, 91 साल में दुनिया छोड़कर चले गए। एक बहुत ही बड़ी हस्ती ये थे, मशहूर थिएटर और फिल्म डायरेक्टर विजया मेहता 91 साल की उम्र में चली गई हैं। उन्होंने स्टेज और सिनेमा दोनों में अलग अलग तरीके से काम किया है, अपना नाम बनाया है और पूरी दुनिया में एक पहचान बनाई है। पूरी फिल्मी दुनिया ने उन्हें दिल से याद किया और उनकी काम की भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। एक ऐसी हस्ती जिनका जाना एक बहुत ही बड़ी कमी है हमारे बॉलीवुड के लिए। हमारे बॉलीवुड में कई सारे ऐसे कलाकार हैं जो सेल्फ मेड हैं, जो बहुत धरती से जुड़े हुए हैं और जिनका काम आज भी बहुत ज़्यादा सराहा जाता है। उन्हीं में से एक विजया मेहता जो कि आप हमारे बीच नहीं रहीं। इस खबर के साथ ही साथ हम उन्हें तहे दिल से बहुत ज़्यादा श्रद्धांजलि देना चाहेंगे और ये भी कहते हैं कि हाँ इनका जाना बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ा लॉस भी है। उसके बाद चलते हैं एक बहुत ही अच्छी खबर के पास, क्योंकि भाई किसी का जाना तो एक दिल को खाली कर जाता है, लेकिन जाने से पहले उस इंसान की ब्लेसिंग्स हमारे साथ हमेशा रहती हैं। तो इसी ब्लेसिंग्स के साथ हम चलते हैं अच्छी खबर के तरफ, जो कि है बॉस्को मेरिटिस के घर से। ये हॉस्पिटल से ठीक होकर आ चुके हैं। जाने माने डांस डायरेक्टर बॉस्को हॉस्पिटल से निकल कर आ गए हैं। उन्होंने खुद ये पोस्ट डाली है कि वो अब ठीक हैं। हालांकि जब से बॉस्को हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, ये सुनकर पूरी फिल्मी दुनिया के लोग और फैंस में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घबराहट थी कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। और आजकल दोस्तों किसका क्या ही भरोसा है, लोगों के दिल में बहुत ज़्यादा धक धक धक धक हो रहा था कि क्या है क्या नहीं है। और इन्होंने जैसे ही हॉस्पिटल से निकले, इनकी खुद ने इन्होंने अपनी जिम्मेदारी अपने कंधे पे ली और खुद ही आके सोशल मीडिया पे लोगों को बताया कि अब वो बिल्कुल ठीक है, जिससे बॉलीवुड ने और फैंस ने राहत की सांस ली। सब उनकी जल्दी ठीक होने की और एक बहुत ही बेहतर तरीके से सामने आने की दुआ भी कर रहे हैं। उसके बाद चलते हैं एक बहुत ही प्यारी सी खबर की तरफ, जो कि है राजकुमार हिरानी के बेटे की तरफ से। देखिए राजकुमार हिरानी के बेटे वीर ने थ्री इडियट्स से पापा को मनाया एक्टिंग के लिए। जी हाँ, राजकुमार हिरानी पहले नहीं चाहते थे कि उनका बेटा वीर कलाकार बने, लेकिन वीर ने अपनी ही थ्री इडियट फिल्म का हिस्सा सुना के उनको मना लिया। ये छोटी सी प्यारी सी खबर फिल्म में परिवार वाले लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। लोग भी पसंद कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने एक पुरानी मूवी की जो है रेफरेंस दे करके अपने ही पिता को अपने काम के लिए बना लिया। और मुझे लगता है कि घर में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स तो हम सभी के होते हैं। कभी हमारे माँ बाप हमारे फ्यूचर के लिए नहीं मानते, करियर के लिए नहीं मानते, लेकिन जब आप उन्हें शांति से बैठ के उन्हें समझाते हैं, क्योंकि देखिए माँ बाप को कभी ना कभी चाहे कितने भी बड़े हों चाहे कितने भी एजुकेटेड हों, उन्हें कहीं ना कहीं हमारी फिक्र रहती है, डर रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और हमारे करियर के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लग जाते हैं। तो उन्हें बस सुकून से बिठाइए, समझाइए, और मैं तो कहूँगी कि भाई उनके लिए प्यारी सी दो कप चाय ही बना लाइए और कुछ नाश्ता लेके, क्योंकि मुझे लगता है मेरे लिए तो ये काम बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद है कि जब भी मैं अपने घर वालों को चाय बना के देती हूँ और तब कोई चीज़ बताती हूँ कि नहीं भाई ऐसा ऐसा करना है, तो वो थोड़ा जल्दी मान जाते हैं। और भारतीयों के लिए तो चाय तो बिल्कुल भाई आप तो उन्हें किडनैप कर सकते हैं चाय के मामले में। तो भाई इन्होंने भी अपने पापा को मनाया और इसकी खबर खुद उन्होंने सोशल मीडिया पर दी। इसी के साथ लोग उनकी जो है बहुत ज़्यादा तरफदार

भी करने की उन्होंने कितनी समझदारी से अपने फ्यूचर के लिए एक कदम उठाया। इसी खबर के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी हाँ, ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं और आपसे बात करते हैं और भी सारी बॉलीवुड यानी कि सिनेमा जगत की खबर की तरफ। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक दोस्तों, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी दोस्त और होस्ट आयुषी लेके एक बहुत ही बेहतर सा प्रोग्राम ज्ञानस्त्री लाइव। और आप अभी इन्जॉय कर रहे थे कुन फाया कुन, एक ऐसा गाना जो कहीं ना कहीं हमारी सोल को बहुत ज़्यादा टच कर जाता है। अब भाई ये गाना बनाया ही एक ऐसे सुपरस्टार ने है जिनका नाम है AR रहमान, तो गाना तो हिट होगा ही। खबर कुछ इन्हीं के बारे में है, चलिए सुन लेते हैं कि AR रहमान की एक बात पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए। जी हाँ, तब सिंगर रबी गिल ने कहा कि रहमान जो भी बोलते हैं उसका सीधा उनके शब्दों से समझना चाहिए, उसका मतलब उनके शब्दों से समझना चाहिए, बेकार की बातें नहीं बनानी चाहिए। गाने वालों की दुनिया में इस बात पर काफ़ी सोचने का काम भी हुआ है। यानी कि भाई इन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जो कहीं ना कहीं लोगों से थोड़ी सी चूक हो गई समझने के लिए, जिसके बाद इनको काफ़ी ज़्यादा बोला गया। लेकिन रबी गिल कहते हैं ना, एक दोस्त हमेशा एक दोस्त का साथ देता है। रबी गिल जो कि खुद एक बहुत ही बेहतर कलाकार हैं, उन्होंने इनकी साइड ली और बोला कि भाई आपको उनके लफ्ज़ पे नहीं जाना चाहिए, जस्ट बात समझनी चाहिए। और हर, क्योंकि देखिए हम सभी जानते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर चीज़ के दो मतलब होते हैं, कौन सा मतलब समझना है वो तो सामने वाले के हाथ में है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों की, जैसे कि हुमा कुरैशी ने उठाया सही सवाल, सिर्फ लड़कों को ही फिल्में क्यों आए, मतलब लड़कों की फिल्में ही क्यों आए। हुमा कुरैशी ने कहा कि जब अल्फा जैसी औरत वाली बड़ी मूवी जो आ रही है, जो सिर्फ मर्दों की फिल्म की बात होती है, ये कहते हैं कि जो स्पाई की बात हो रही है, जासूस की बात हो रही है, तो हम हमेशा लड़कों को आगे करते हैं, लेकिन इस बार लड़कियाँ सबसे ज़्यादा आगे हैं। लड़कियों वाली फिल्म यानी कि जिसके पर हम बात भी कर रहे थे, अल्फा, जो कि अभी से ही बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा दिखाना शुरू कर दी है, वो आने वाली है। और इसके सपोर्ट में हुमा कुरैशी भी खड़ी हुई हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट है आपकी इस बहुत ही बेहतरीन मूवी अल्फा को तरफ, और जिसके लिए धन्यवाद किया है आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम में हुमा कुरैशी का। भाई देखिए, अगर हम इससे कुछ सीखेंगे नहीं तो कैसे चलेगा भाई काम। देखिए, एक एक्ट्रेस दूसरे एक्ट्रेस की सपोर्ट में खड़ी है और हम हैं कि अपने ही साथ वालों को नीचे दिखाने में लगे हुए हैं, तो भाई हमें इससे कुछ सीखना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा सुखद बनाना चाहिए, ईजी बनाना चाहिए। क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भाई कर्म हमेशा ऐसे करो कि जब सामने वाला कहे कि उसके फल मिलेंगे तुम्हें या कर्मों के फल मिलेंगे, तो हमारे दिल में जो है एक डर ना आए, हमेशा एक सुकून हो कि हाँ मुझे मेरे कर्मों के फल चाहिए। इसी थॉट के साथ लेते हैं आपसे विदा, क्योंकि वक्त हो चुका है हमारे जाने का। खबरें तो कई सारी हैं लेकिन सभी को एक घंटे में समेटना थोड़ा सा मुश्किल है। लेते हैं आपसे विदा, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा और आपने इन्जॉय भी किया होगा आज का शो। इन्जॉय किया है तो ज़रूर फीडबैक आके चैट बॉक्स में दें, और अपना ध्यान रखना बिल्कुल ना भूलें।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे के एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा

0: आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमर निधि, जो एक पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ हैं और इस समय वे न्यू कॉन्सेप्ट संस्था से जुड़ी हैं। डॉक्टर अमर निधि के पास 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है और उन्होंने स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक समानता, बाल संरक्षण, लाइफ स्किल्स, परिवार नियोजन, एचआईवी एड्स और सामाजिक व व्यवहारिक परिवर्तन पर व्यापक रूप से काम किया है। उन्होंने समुदाय को जागरूक बनाने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए कई प्रशिक्षण और कार्यक्रम संचालित किए हैं। हमें खुशी है कि डॉक्टर अमर निधि आज हमारे साथ हैं और आज हमारे जरिए वे समुदाय से कुछ बातचीत करेंगी। डॉक्टर अमर निधि, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका, मुझे भी आप सबके साथ जुड़कर बहुत खुशी हो रही है और ये ऐसा महसूस कर रही हूँ, गर्वित महसूस कर रही हूँ कि श्रोताओं को मेरे माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी मैं दे सकूँ जिससे वो लाभ उठा सकें।
0: हमारा पहला सवाल है कि अनीमिया की समस्या काफी व्यापक हो गई है और इसके मुख्य कारण क्या हैं?
1: ये बहुत ही अहम सवाल है। अनीमिया का सबसे बड़ा कारण है शरीर में आयरन की कमी होना। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व नहीं मिलता तो खून में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। इसके अलावा फॉलिक एसिड, विटामिन B12 की कमी, कभी किन्हीं कारणों से शरीर में से खून का बह जाना, पेट में कीड़े या कृमि होना या कुछ पुरानी बीमारियां भी अनीमिया का कारण हो सकती हैं।
0: क्या अनीमिया के कुछ भिन्न लक्षण होते हैं? मतलब कैसे पता चलता है कि अनीमिया है?
1: अनीमिया के सामान्य लक्षणों में थकान होना, चक्कर आना, त्वचा या जीभ का पीला होना, हाथ पैरों का ठंडे होना, सांस फूलना और खास कर पढ़ाई जैसे कामों में ध्यान ना लगना शामिल हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि किसी को अनीमिया हो और ये लक्षण ना दिखाई दें, इसीलिए अनीमिया का पता लगाने के लिए हीमोग्लोबिन की जांच ही सबसे सही तरीका है।
0: जी, तो क्या अनीमिया को रोकने या अनीमिया से निकलने का कोई तरीका आप बता सकती हैं हमारे श्रोताओं को?
1: जी हाँ, बिल्कुल। अनीमिया को रोकने के लिए आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां या सिरप का सेवन लेना, आयरन वाले आहार, हर 6 महीने में कृमिनाशक दवा का लेना और बीमारी का इलाज, ये सब बहुत मदद करते हैं। गंभीर स्थिति की अनीमिया में डॉक्टर ज्यादा खुराक या ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दे सकते हैं।
0: जी, तो मैम, अनीमिया सिर्फ लड़कियों और गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए को ही होता है या फिर पुरुषों में भी अनीमिया पाया जाता है?
1: ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि महिलाओं, खास करके किशोरियों और गर्भवती महिलाओं में अनीमिया का खतरा अधिक होता है, लेकिन पुरुष और बच्चे भी अनीमिया से प्रभावित होते हैं, इसलिए समय समय पर सभी को अनीमिया की जांच करवानी चाहिए।
0: तो मैम, मतलब अनीमिया के बचाव के लिए सरकारी योजनाएं क्या क्या हैं? कुछ सरकारी योजनाएं या सरकारी कार्यक्रम कुछ उपलब्ध हैं जो लोगों लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं?
1: ये बहुत आपने अहम सवाल पूछा जो श्रोताओं की जानकारी के लिए है कि सरकार ने अनीमिया मुक्त भारत अभियान शुरू किया हुआ है, जिसके तहत जीवन के हर चरण के लिए आयरन फॉलिक एसिड की खुराक दी जाती है और इसी के साथ साथ बच्चों और किशोरों में किशोर किशोरियां दोनों शामिल हैं, उनकी जांच, कृमिनाशक दवा और काउंसलिंग भी की जाती है। स्कूलों में साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, जिसे हम विफ्स के नाम से भी जानते हैं, ये कार्यक्रम भी चलाया जाता है।
0: मैम, हमारा अगला सवाल होगा कि आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र से परिवार किस तरह आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां, कृमिनाशक दवाएं और बच्चों की वृद्धि की निगरानी जैसी सेवाएं ले सकता है?
1: ये आसान है। परिवार जो है वो नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, सब सेंटर या PHC में मुफ्त अनीमिया की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर IFA की गोलियां, विटामिन सी की गोलियां और कृमिनाशक गोलियां देती हैं और घर पर ही बच्चों का वजन और ऊंचाई भी नापती हैं।
0: तो क्या इसका इलाज घर पर ही हो सकता है? मतलब हमारा अगला सवाल यही था कि एनीमिया, मतलब इसके जो इलाज है, उपचार है, वो कैसे कराया जा सकता है? निशुल्क जांच कहाँ होती है? तो इसके बारे में।
1: इसको मैं दो भागों में कवर करना चाहूंगी। सबसे पहले तो यह है कि अनीमिया का उपचार किसी भी सरकारी केंद्र पर, स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त में उपलब्ध है। एक बार जब सब सेंटर या पीएचसी या आंगनवाड़ी केंद्र से दवा मिलने लगती है तो उसको बार बार आशा, जो आंगनवाड़ी आशा और आंगनवाड़ी इसका वितरण कर सकते हैं, घर जाकर भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो अगर किसी को अनीमिया की शंका है, वो सबसे नज़दीकी सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी या जिला अस्पताल में जाएं तो वहाँ हीमोग्लोबिन की जांच और मुफ्त इलाज जो है वो डॉक्टरों द्वारा उपलब्ध है। जो गंभीर रूप से अनीमिया से पीड़ित मरीज होते हैं उनको आगे रेफर कर दिया जाता है।
0: जी, तो मैम जैसे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में ज्यादा अनीमिया पाया जाता है, तो क्या इनके बचाव के लिए, इनके इनके स्वास्थ्य के लिए कुछ अतिरिक्त सहायता हमें सरकार से मिलती है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा इनके लिए होता है?
1: जी हाँ, बिल्कुल होता है। ICDS और जो सरकारी मुहिम है पोषण अभियान के तहत, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक पोषण, जिसे हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी कहते हैं, उसके साथ साथ मुफ्त आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां, स्वास्थ्य की जांच और सलाह दी जाती है।
0: मैम एक जरूरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि क्या जो लोग अधिक मोटापे की समस्या से जूझते हैं उन्हें भी अनीमिया हो सकता है या उन्हें अनीमिया होने के अधिक चांसेस हैं?
1: थोड़ा सा ये सुनने में अजीब लगता है कि, लेकिन आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि जो मोटापा है वो अनीमिया से बचाव नहीं करता, बल्कि सूजन की वजह से शरीर में आयरन का उपयोग कम हो जाता है। इसलिए ये जानना आवश्यक है कि मोटे लोगों को भी अनीमिया हो सकता है।
0: तो आजकल की जो बहुत आदतें हैं जंक फूड खाने की लोगों में, तो क्या आज की युवाओं में जो जंक फूड ज्यादा खाते हैं उनको अनीमिया और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कैसे बढ़ रही हैं उनमें?
1: आजकल की पीढ़ी के लिए, खास करके युवा की पीढ़ी और जो बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी बात है जो आपने पते की बात पूछी है। जंक फूड में कैलोरी तो बहुत होती है लेकिन ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन नहीं होते। इसलिए आयरन युक्त और पौष्टिक भोजन की जगह अगर जंक फूड लिया जाए तो खून की कमी का खतरा, यानी अनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा उनमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो जंक फूड होता है, जिसे हम फास्ट फूड भी कहते हैं, जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, नूडल्स, मोमोज, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उनमें अक्सर मीठा या नमक अधिक मात्रा में होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य नहीं है और वो हमारे स्वास्थ्य को और आगे खराब करता है अनीमिया के साथ साथ। तो इसलिए जंक फूड को, ये तो मेरा कहना उचित नहीं होगा कि बिल्कुल ना लें, लेकिन घर पे बने खाने का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करें, इससे हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा।
0: एक और सवाल मैम मैं पूछना चाहूंगी कि आयरन फॉलिक एसिड की जो गोलियां हैं वो सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेनी चाहिए या मतलब अगर हमें सिम्टम्स लग रहे हैं तो हम खुद से भी ले सकते हैं, और कितनी गोलियां लेनी चाहिए अगर हम लेते हैं तो दिन में?
1: आयरन फॉलिक एसिड की गोलियों का सेवन समुदाय स्तर पर ANM द्वारा वितरित किया जाता है इनको, और जो कि हीमोग्लोबिन की जांच के बाद ही किया जाता है। जो हमारा अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम है उसमें गर्भवती महिलाओं और जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उनको 6 महीने गर्भावस्था के दौरान और पहले 6 महीने बच्चे के जन्म के बाद जब वो स्तनपान कराती हैं, 180 और 180 दोनों को मिला के 360 गोलियों का सेवन आयरन फॉलिक एसिड का कराया जाता है। इसके अलावा किशोरियों को और जो और ऐसी महिलाएं हैं जो कि बच्चा या प्रजनन वर्ग में जो आती हैं, जो जो भी माँ बनने की आशंका हो सकती है, उनको सप्ताह में एक बार आयरन फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है। लेकिन ये एक जरूरी बात है कि स्वयं से इसको लेकर इसका सेवन करने की सलाह नहीं दी जाती। इसको किसी ना किसी जांच के बाद ही, और जो भी हमारे जो, चाहे वो डॉक्टर हो या चाहे वो हमारे ANM हो, वो एक बार जब उनका पर्ची पर उसको लिख दें, उसके बाद ही आशा और आंगनबाड़ी भी उनको आगे उनका वितरण करती हैं। तो स्वयं से इसको लेना उचित नहीं है।
0: थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे श्रोताओं को काफी बातें बताई और आशा है कि वो सुनेंगे अच्छे से, उसको अमल भी करेंगे। धन्यवाद मैम।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका कम्युनिटी रेडियो और मैं हूँ स्मार्ट से सुजाता। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या पर जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है, कमजोरी, चक्कर आना, जल्दी थक जाना। क्या ये सिर्फ काम की वजह से है या फिर एनीमिया के संकेत हैं? इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर शालू गुप्ता, जो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद। नमस्कार श्रोता और नमस्कार सुजाता जी।
0: मैम, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि एनीमिया क्या होता है और ये कितना आम हो गया है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे जुड़ने का मौका दिया अपने कम्युनिटी रेडियो के तहत, जिससे कि मैं लोगों को इस बारे में कुछ बता सकूं। अगर आप एनीमिया का मतलब सरल शब्दों में चाहें तो यह है शरीर में खून की कमी होना। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है हमारे शरीर में, जिसका काम होता है कि ऑक्सीजन को खून के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाए। जब शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो ऑक्सीजन सही तरीके से शरीर में नहीं पहुंच पाती है, जिससे शरीर में कमजोरी, थकान और सुस्ती महसूस होती है। और आयरन की कमी की वजह से और कई कारणों की वजह से इस हीमोग्लोबिन की मात्रा में जब कमी होती है, उसे एनीमिया हम कहते हैं। थोड़ा बदलाव खाने में अब आने लगा है, लोग जंक फूड खाने लगे हैं, जिससे ऊर्जा तो मिलती है लेकिन जरूरी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन है, आयरन है, विटामिन है, ये सब नहीं मिलते हैं। इन वजहों से भी शरीर में खून कम हो जाता है और एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा साफ सफाई की कमी, पेट में कीड़े होना, महिलाओं में पीरियड्स अगर बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो तो उसकी वजह से भी कारण ये बन सकता है।
0: अच्छा डॉक्टर, हमें ये भी बताएं कि एनीमिया के मुख्य लक्षण क्या होते हैं और आम लोग इसे शुरुआती स्तर पर कैसे पहचान सकते हैं?
1: ये एक बहुत ही अहम प्रश्न है, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं एनीमिया के कुछ लक्षणों को इग्नोर करती हैं, उन्हें नजरअंदाज करती हैं, ये सोच के कि ये तो नॉर्मल सी चीज है। शुरुआती लक्षण ये होते हैं कि इंसान जल्दी जल्दी थक जाता है, चक्कर आने लगता है, कमजोरी महसूस होती है, सांस भी फूल सकती है, चेहरे पे, होंठ पे पीलापन आ जाता है, शरीर पे सूजन आ सकती है, बालों का झड़ना भी हो सकता है। इसकी वजह से लोगों को लगता है और स्पेशली महिलाओं को ये लगता है कि क्या ऐसी खास बात है, शायद ज्यादा काम कर लिया इस वजह से ये परेशानी हमें हो रही है। लेकिन अगर ये सब चीजें कंटिन्यूअस निरंतर बनी रहे तो ये जरूरत है जानने की कि ये किस कारण से हो रहा है, कहीं हमें खून की कमी तो नहीं हो रही है। ऐसे में कमजोरी बार बार महसूस होने पे, सीढ़ियां अगर थोड़ी सी चढ़ने पे सांस फूलने लगे, या निरंतर थोड़ा स्पीड में चलने में अगर सांस फूलने लगे, तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपने खून की जांच जरूर से करवानी चाहिए।
0: अच्छा, क्या एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से होता है या इसके और भी कारण हो सकते हैं?
1: देखिए, ज्यादातर एनीमिया आयरन की कमी से होता है, भारतवर्ष में भी और उत्तर प्रदेश के राज्य में भी ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से होता है, इसके और भी बहुत कारण होते हैं। हम आयरन की

0: बीमारियाँ जैसे मलेरिया, जो शायद लोगों को इतना नहीं पता है, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कई तरह के इन्फेक्शंस और किडनी की बीमारी और कैंसर, इन सब में भी एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। लेकिन मैंने जैसा अभी आपको बताया, मुख्यतः भारत में और उत्तर प्रदेश में आयरन की कमी की वजह से ये बीमारी होती है।
1: क्या ये सिर्फ एनीमिया महिलाओं तक सीमित है या पुरुष और बच्चे भी इससे प्रभावित हैं?
0: ये एक बहुत अहम प्रश्न है, क्योंकि हम लोग जैसा देखते हैं महिलाओं में ही ये सीमित नहीं है। जान के आपको हैरानी होगी कि बच्चों में, पुरुषों में, बुजुर्गों में, ये किसी भी एज को नहीं छोड़ता है, सब में ये बीमारी हो सकती है। हालांकि महिलाओं में ये थोड़ी ज़्यादा होती है, किशोरियों में ज़्यादा होती है, कारण बच्चों में ज़्यादा होती है। कारण ये है कि खान पान की कमी और अपने ऊपर थोड़ा लापरवाही करना या पौष्टिक तत्व ना लेना। महिलाओं में आप जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं, किशोरियां हैं, इन सब में संभावना अधिक होती है। बच्चों में क्योंकि उनके शरीर को अधिक पोषण चाहिए, आयरन विटामिन की ज़रूरत उनके शरीर को ज़्यादा होती है जब ये ग्रोइंग फेज होती है। और इसके अलावा गलत खान पान की आदतें, जैसे बच्चे आजकल जंक फूड्स बहुत खाते हैं, बार बार पेट में कीड़े हो जाने, जैसे वर्म इन्फेस्टेशन अगर हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। इसलिए हर एज में और हर सेक्स में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा।
1: अच्छा डॉक्टर, हमें ये भी बता दें कि हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए और कब इसे खतरनाक माना जाता है?
0: WHO की गाइडलाइंस के अनुसार जो महिलाएं और किशोरियां हैं उनमें नॉर्मल जो हम हीमोग्लोबिन का लेवल लेते हैं वो है 12 ग्राम या उसके अधिक, पुरुषों में 13 ग्राम पर डेसीलीटर या उससे अधिक, लेकिन गर्भवती महिलाओं में अगर 11 ग्राम डेसीलीटर या उससे अधिक होता है तभी हम उसे नॉर्मल मानते हैं। 11 ग्राम से कम अगर हीमोग्लोबिन होता है तो हमें उसे फिर एनीमिक कैटेगराइज करते हैं। ये कैटेगरी एनीमिया की माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है और सीवियर भी हो सकती है।
1: तो किन स्थिति में हम जानेंगे कि ये सीवियर एनीमिया है?
0: अगर 7 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन है तो ये सीवियर है, ये खतरनाक है और ये जानलेवा भी हो सकता है।
1: क्या मोटे लोगों को एनीमिया नहीं होता?
0: बिल्कुल हो सकता है। मोटापे का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पोषण आपको मिल रहा है, ओवर ईटिंग अगर आप कर रहे हैं या हिडन हंगर जैसी, अगर जिसे कुपोषण मतलब जिसे कहते हैं ना, मोटापा इज अ काइंड ऑफ कुपोषण, ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। और मोटे लोगों को कई बार वो तला भुना जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, वो पोषण और जो कि ज़रूरी पदार्थ हैं, पोषक तत्व हैं, वो नहीं खाते हैं। बेसिकली एनीमिया हमारा आयरन की, विटामिन की, मिनरल्स की कमी की वजह से होता है। इसलिए ऐसे लोगों में एनीमिया होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उनका जो खाना है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसलिए संतुलित और पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है।
1: अच्छा, रोजमर्रा के खाने में कौन कौन सी सस्ती और स्थानीय चीजें शामिल करें जिससे एनीमिया से बचा जा सके?
0: वैसे तो आयरन फोलिक एसिड की गोली हमारे प्रदेश में हर स्वास्थ्य केंद्र पे, चाहे वो उपकेंद्र हो, चाहे वो PHCs हों, CHCs हों, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हों, मेडिकल कॉलेजेस हों, वहाँ सब जगह ये निशुल्क उपलब्ध है। लेकिन खाने में जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि इंसान अपना सकता है इस बीमारी से अपने बचाव के लिए, वो हैं दालें, अनाज जैसे चना है, मसूर है, मूंग है, सोयाबीन है। इसके अलावा अंकुरित दालें जैसे हैं या मूंग चना है, इनको ले सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक है, मेथी है, सरसों है, और सबसे सस्ता जैसे कहना चाहिए गुड़ और चना, जो कि हर घर में उपलब्ध होगा। इसके अलावा बाजरा है, ज्वार है, मूंगफली है, सेब है, अंडा, मांस मछली, जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं वो इससे भी अपने को आयरन की कमी दूर कर सकते हैं। आयरन के साथ साथ अगर आप विटामिन सी का सेवन करें तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, जैसे नींबू है, अमरूद है, आंवला है। अगर ये आप आयरन के जो खाने हैं, आयरन रिच फूड्स जो मैंने अभी आपको बताया, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चना, दाल, अंडा, मांस, मछली, इसके साथ अगर आप

0: ये वाले फल भी खाएं जो कि सिट्रस फ्रूट्स कहलाते हैं, तो इसमें आयरन का अवशोषण और भी बेहतर हो सकता है।
1: मुझे ये भी जानना है कि आयरन की गोली लेने का सही तरीका क्या है और खाने के साथ या खाली पेट उसे खाया जा सकता है।
0: देखिए, आयरन की गोली लेने का सबसे सही तरीका तो खाली पेट है और ये ज़्यादा प्रभावी होता है क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि खाली पेट लेने पर कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जैसे जी मचलाना, उल्टी आना, पेट में दर्द, ये सब भी महसूस हो सकता है। ऐसे में इसे हल्के भोजन के करीब 1 या 2 घंटे बाद लिया जा सकता है। लेकिन ये चीज़ का खास ख्याल रखें कि चाय और कॉफ़ी के साथ या उसके तुरंत बाद आयरन नहीं गोली जो है वो कभी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और प्लस कुछ पदार्थ जैसे टैनन्स होते हैं, फाइटेट्स होते हैं, वो सब नुकसान करते हैं। अगर आप आयरन की गोली को नींबू पानी के साथ या आप संतरे के रस के साथ आप लें तो ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है।
1: अच्छा, हमें ये भी बताएं डॉक्टर कि क्या बच्चों में एनीमिया जब हो जाता है तो क्या उनकी पढ़ाई या मानसिक विकास को प्रभावित करता है?
0: अब बहुत हद तक ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए कि गर्भवती माताएं और धात्री माताएं स्पेशली अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जैसे कहते थे ना पहले ज़माने में लोग कि गर्भवती जब महिलाएं होती हैं तो वो 2 केले खाती हैं, अपने लिए भी खाती हैं, अपने बच्चे के लिए भी खाती हैं। तो ये बहुत गर्भ से ही अगर आप आयरन की कमी आपके अंदर नहीं होगी, आप पूरी तरह से आयरन खाएंगे तो आपके बच्चे पे इसका अच्छा असर पड़ेगा। और बच्चों में तो स्पेशली अगर एनीमिया हो तो उनका वो शारीरिक और मानसिक विकास दोनों पे इसका असर पड़ता है। अगर उनकी याददाश्त, उनकी ध्यान लगाने की क्षमता, उनकी सीखने की गति ये कम हो सकती है और उनका शारीरिक विकास भी कम हो सकता है अगर उनमें आयरन की कमी हो। इसलिए माँ और बच्चे दोनों के लिए आयरन बहुत जरूरी है।
1: अच्छा डॉक्टर, ये भी बताइए कि अगर एक श्रोता आज से ही एनीमिया से बचाव शुरू करना चाहे तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए?
0: मैं इसमें 2 बातें आपको बताऊंगी कि बचाव करने के लिए सबसे पहला तो है कि अपनी आदतें जो कि खाने से संबंधित हैं उनमें सुधार करें, और दूसरा नियमित रूप से आयरन के टेस्ट के लिए अपनी हीमोग्लोबिन की जांच कराए जिससे उसे ये पता चल सके कि उसका आयरन का लेवल कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है। साथ में जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हर 6 महीने पे हमारे यहाँ प्रोग्राम्स चलते हैं जिसमें कि डिवॉर्मिंग के लिए हम लोग गोली देते हैं जिससे कि पेट के कीड़े भी मर सकें, तो उसका भी 7-6 महीने पे अगर करें तो जो वर्म इन्फेस्टेशन है वो ख़त्म हो सकता है, जिस जो भी एक कारण होता है एनीमिया करने का। और बाकी तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि पौष्टिक तत्व जो हैं वो खाने में लेने चाहिए। आयरन की गोली ज़रूरत के हिसाब से दी जाती है। स्कूलों में भी हमारा विप्स का प्रोग्राम चलता है जिसमें कि स्कूल के बच्चों को हर हफ्ते आयरन की गोली दी जाती है स्कूलों के अंदर। तो इस तरह से भी घर में भी और घर के बाहर भी आयरन की गोली का सेवन करना, खाने में पौष्टिक तत्वों को इंक्लूड करना और समय समय पर हीमोग्लोबिन की जाँच कराना।
1: हमारे जितने भी ग्रामीण श्रोता हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी अपनी ओर से?
0: देखिए, एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसे लोग बहुत हल्के में लेते हैं, मगर आपको मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ कि यही चीज़ अगर बढ़ जाए तो वो जानलेवा हो सकती है। और इसीलिए बहुत, और ये बचाव पूरी तरह संभव है, आपके हाथ में है। ऐसा नहीं है कि ये एक लाइलाज बीमारी है। ये बीमारी आप छोटी छोटी अपनी आदतों में सुधार लाके, अपनी जीवन शैली में सुधार लाके आप इस बीमारी पे कंट्रोल पूरी तरह से कर सकते हैं। इसलिए संतुलित आहार, साफ सफाई, नियमित जांच, आयरन की गोली और डिवॉर्मिंग, ये सब चीज़ें आप, इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ में शामिल कर लेंगे तो आप आयरन की कमी से हमेशा के लिए बच जाएंगे।
1: आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मैम हमारे श्रोताओं को। तो आगे हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर कि क्या सभी गांवों में नियमित हीमोग्लोबिन जांच की सुविधा उपलब्ध है?
0: हाँ, हमारे यहाँ प्रदेश में सरकार ने ये निशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई है सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों में, सभी अस्पतालों के माध्यम से हीमोग्लोबिन की जांच होती है और ये बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है जिसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में, आपके घर के पास जो भी कोई सरकारी अस्पताल है, चाहे वो PHC हो चाहे CHC हो, वहाँ जाकर आप ये जांच करा सकते हैं और अपने हीमोग्लोबिन का स्टेटस पता कर सकते हैं।
1: अगर किसी को IFA की गोली से दिक्कत होती है, जैसे उल्टी आना, जी मिचलाना, तो इसके लिए क्या विकल्प है, वो क्या करे?
0: देखिए, ये मन में बहुत भ्रांतियां हैं आयरन के दवा को खाने में, और कई बार ये कहा जाता है कि आयरन की गोली अगर खाएंगे तो काले रंग की लेटरिन हो, शौच में जब आप जाएंगे तो काले रंग की लेटरिन हो जाएगी,
1: बच्चे भी काले
0: हो जाएंगे। शायद इसलिए भी कुछ परिवार में ये दवा नहीं खाई जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आयरन की गोली को लेने में आपको हल्का फुल्का पेट में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी आना है, तो आप इसे घबराएं नहीं। ये कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है। ये सिर्फ हल्के से जो ये सिम्टम्स हैं, इनको अगर आप खाली पेट लेने के बजाय खाने के एक दो घंटे बाद लें, नींबू के रस के, मैंने बताया ना, नींबू पानी के साथ लें, या आप संतरे के जूस के साथ ले सकते हैं, आंवला आप साथ में अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये साइड इफ़ेक्ट्स कम भी हो सकते हैं। हम लोग वैसे खाली पेट कहते हैं, लेकिन अगर आपको खाने के बाद ये परेशानी आती है तो आप इसे खाली पेट ना लें। इसके साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। चाय कॉफ़ी का सेवन आयरन की गोली के साथ ना करें, क्योंकि ये आपके साइड इफ़ेक्ट्स को बढ़ा देगी, आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देगी। और जी मिचलाता है अगर, तो नींबू पानी शिकंजी के रूप में आप ले सकते हैं। ORS का पैकेट्स फ्री मिलते हैं, वो भी आप साथ में ले सकते हैं। और अगर आप को कोई एक पर्टिकुलर सॉल्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि एक कोई खास सॉल्ट जो होती है आयरन की, उसकी वजह से ये लक्षण आते हैं, जैसे कहते हैं ना, कभी कभी कोई दवाई किसी को सूट नहीं करती, तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, उस सॉल्ट के बजाय वो आपको कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट करके कोई दूसरी सॉल्ट भी दे सकती है। और अब बहुत तरह के आयरन की दवाएं उपलब्ध हैं, और साथ में आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे प्रदेश में इंट्रावीनस आयरन, जो कि पहले आयरन सुक्रोज के ही फॉर्म में मिलता था, अब हम लोगों ने आयरन FCM एक नई हमने इंजेक्शन भी लॉन्च किया है अपने प्रदेश में, और इसके द्वारा भी, लेकिन ये हर किसी को नहीं दिया जाता, ये तभी दिया जाता है जब सीवियर अनीमिया हो, मॉडरेट अनीमिया हो, तो ज़रूरत के हिसाब से वो भी दिया जा सकता है। मतलब आयरन की कमी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, तो कोई ना कोई विकल्प तो आपको सूट कर ही जाएगा।
1: अभी आपने इंजेक्शन की बात करी डॉक्टर, तो क्या ये बच्चों को भी दिया जा सकता है कि या सिर्फ गर्भवती महिलाओं को? ये किस एज के सीवियर एनीमिया को दिया जा सकता है?
0: देखिए, अभी आयरन का जो हमारा फिलहाल जो प्रोग्राम चल रहा है, ये जो FCM का इंजेक्शन है, ये अभी हमने गर्भवती महिलाओं को और साथ में धात्री महिलाओं के लिए हमने शुरू किया है, क्योंकि ये तब दिया जाता है जब आयरन की जो हमारा लेवल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो मॉडरेट और सीवियर एनीमिया में हम लोगों को, और ये एक तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन का विकल्प है। फिलहाल जो हमारा प्रोग्राम जो FCM का है, ये इसमें अभी बच्चों को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन बच्चों के लिए आयरन का सप्लीमेंटेशन सिरप की फॉर्म में, क्योंकि ये इंट्रावीनस इंजेक्शन है, तो इंट्रावीनस से आप समझती हैं ना, नस में ये सुई दी जाती है, तो ये अभी बच्चों को हम नहीं देते हैं, ये अभी फिलहाल हम लोग गर्भवती महिलाओं को, और इसके अलावा हम लोग किशोरियों को भी दे सकते हैं अगर बहुत ज़रूरत हो तो। मैंने

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: क्या आप
3: सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आ गई आपकी आज समता और साथ में आज अंशिका। क्या हाल है भाई आपका? आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने शो जिसका नाम है
3: सुन सहेली
2: आज समता है आज अंशिका। भाई आप सभी जल्दी से चैट बॉक्स में आ जाएं, क्योंकि आज जो है यानी कल से जो है हम लोगों ने कुछ टाइम अपना चेंज किया है। मतलब इतना ज़्यादा हमारे पास बोलने के लिए होता है, इतना ज़्यादा आपसे बात करने के लिए हमारे पास होता है कि टाइम थोड़ा सा पड़ जाता था कम। क्यों, ऐसा ही है ना?
4: यस मैम।
2: हाँ, तो इसीलिए मैंने सोचा और अंशिका ने, हम लोगों ने ये विचार विमर्श किया कि अब हम लोग सीधे सीधे 1:30 पे एंट्री ले लेंगे और धीरे धीरे आपसे बातें भी करेंगे और आपको सॉन्ग्स भी सुनाते चलेंगे साथ ही साथ में।
4: बिल्कुल। और भाई आज बहुत प्यारा मौसम है।
2: क्यों?
4: इसलिए कि कहते हैं ना, जब बहुत टाइम से जमीन जो है वो धूप में तपती है और फिर बारिश होती है तो वो ठंडी ठंडी हो जाती है।
2: हाँ, जैसे हम तपे हैं क्या?
4: नहीं, अब मैं आपको नहीं कह रही हूँ, मैं जस्ट एक बात कह रही हूँ कि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी तो जो जमीन है, जो धरती है,
2: वो वैसे भी जो ज्यादा तपते हैं ना वो एक दिन ठंडे पड़ ही जाते हैं।
4: ऐसा नहीं होता,
2: ऐसा ही होता है, जो बहुत ज्यादा तपते हैं तो इसीलिए तपन उतनी ही रखनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर जब ठंडा करता है ना तो ढंग से ठंडा करता है। ये मेरे कहने का
4: ये तो फिर ये वाला तो बिल्कुल सही है।
2: ठीक है, तो भाई आज के मौसम में हम शुभ दोपहरिया तो बोलेंगे बाद में, लेकिन पहले हैप्पी मॉनसून बोलेंगे। इतना बेहतरीन सा मौसम है कि मन कर रहा है ना कि बस क्या ही बता दें। तो एक साथ एक ही फ्रेम में हम दोनों लोग पहले हैप्पी मॉनसून बोलेंगे, ठीक है?
4: यस मैम।
2: तो 1, 2, 3 स्टार्ट,
3: हैप्पी मॉनसून
2: एंड प्यार से एक ही साथ एक ही फ्रेम में
3: शुभ दोपहरिया।
4: शुभ दोपहरिया लिसनर्स, और दोपहरिया हो गई है और आपकी सखियां आ गई हैं और लेकर के भी आई हैं, लेकिन लेकर के हम कुछ आते हैं उससे पहले पहले पहले हाल चाल पूछते हैं। तो अभी अभी हम मिले हैं, फटाफट से आप लोग बता दीजिए कि आप लोगों का हाल चाल क्या है, कैसे हैं और कौन इस मौसम को एंजॉय कर रहा है। कोई भुट्टे के साथ, कोई आराम से छतों पे बैठा होगा, ठंडी ठंडी हवा ले रहा होगा, तो कोई कुछ सोच रहा होगा,
2: पता नहीं क्या, कोई कुछ कर रहा होगा, सोच रहा होगा क्या कर रहा होगा। लेकिन मैं तो भाई इस मौसम को अभी अभी बाहर गई थी, मैंने एंजॉय किया, बहुत ही बढ़िया सा मौसम है। लेकिन साथ ही साथ में ये होता है कि इस मौसम में साथ में घूमने फिरने वाला मौसम है ये।
4: हाँ,
2: है ना? तो ये घूम फिर सकते हैं, खैर कोई बात नहीं। चलिए हम और कहीं अपने ट्रैक को न ले जाते हुए आज के सेगमेंट की ओर चलते हैं, जो कि आज हमारा थर्सडे स्पेशल होता है, हमारे बड़े बुजुर्गों पर, रिश्तों पर और हमारे पारिवारिक मामलों पर। तो सबसे पहले तो आज की पोयम, जो कि हमारी औपचारिकता होती है सबसे पहले कि हम पोयम लेकर के आते हैं, और आज परिवार का अटूट बंधन जो कि शीर्षक है हमारी आज की पोयम का। तो शुरू करें अंशिका?
4: ऐसे नहीं, पहले हम कुछ कह लेते हैं और उसके बाद शुरू।
2: पहले माहौल बना,
4: पहले माहौल बनाते,
2: माहौल बना जी।
4: तो माहौल ऐसे बनाते हैं कि बचपन बीता उस आंगन में, बचपन बीता उस आंगन में, उस खाने की महक आज भी सांसों में है। परिवार, परिवार वो सुरक्षा कवच जो हर मुश्किल से बचाता है, पर हमारे दिल में उसकी जगह, उसकी, उसका लगाव आज भी वही है। तो चलिए कुछ उन्हीं यादों को फिर से उस यादों के झरोखों से ढूंढ लाते हैं और प्यारी सी पोयम आरजे समता की जुबानी सुनते हैं।
2: जी हाँ, थैंक यू सो मच। तो चलिए, हर बार की तरीके से एक बार फिर से अंशिका ने माहौल बना दिया है हमारी पोयम को, आते आते रास्तों में फूल बिछा दिया है। तो चलिए सुनते हैं इस प्यारी
4: वो सी किसी और का काम भी हो सकता है रास्तों में फूल बिछाना। चलिए शुरू करते हैं।
2: जी, तो परिवार का अटूट बंधन जो कि आज की पोयम का शीर्षक है।
4: जी,
2: जीवन की तपती राहों में जो शीतल छांव दिलाता है, सुख दुख के हर मौसम में जो साथ हमेशा निभाता है, वो और कोई नहीं संस्थान नहीं, वो कोई और संस्थान नहीं, धरती पर सुंदर स्वर्ग वही, हर रिश्ते की खुशबू से महके उसे ही परिवार कहा जाता है। एक छत के नीचे जब बसता है खुशियों का संसार अनूठा, दादा दादी की गोदी होती है और चाचा चाची का लाड अनूठा, ताऊ की डांट में प्यार छिपा, भाई बहनों का संग होता है, वही रूप संयुक्त परिवार का जहां स्नेह कभी न होता झूठा। इस आंगन में रहकर बच्चे संस्कारों का पाठ पढ़ते हैं, अकेलेपन से दूर सदा वे अपनों के साए में बढ़ते हैं, मिलजुल कर चीजें बांटना और बड़ों का आदर करना सीखें, मुश्किल राहों से लड़ने का वे हर पल साहस गढ़ते हैं, तनाव और संकट के क्षण में हर हाथ जहां मिल जाता है, जब बोझ पटे सब कांधों पर हर कठिन काम आसान हो जाता है, संयुक्त परिवार वो बगिया है जहां मिलकर सब खिलते हैं, इनकी जड़ें मजबूत रहें तो हर जीवन महक उठता है।
4: वाह वाह, मतलब बहुत ही प्यारा, और मैम ने बहुत ही फीलिंगफुल तरीके से सुनाया भी तो बहुत अच्छा लग रहा था। और परिवार के नाम से ही एक जो फील होता है ना कि जैसे लगता है आप कितनी भी बड़ी मुश्किल में खड़े हो, लेकिन अगर आपकी फैमिली आपके साथ है तो लगता है यार हो जाएगा,
2: बिल्कुल
4: कर लेंगे, लेकिन जब फैमिली नहीं होती है तो फील होता है कि अरे आप अकेले कैसे करेंगे।
2: एग्जैक्टली, एक फैमिली का होना, जैसे कहते हैं ना कि हम जब दुनिया से भागते हैं तो सबसे पहला जो कि हमारे जहन में क्या आता है कि हम अपनी फैमिली की ओर जा रहे हैं।
4: जी मैम,
2: तो फैमिली को एक सपोर्ट की, मतलब हम सभी को सपोर्ट की जरूरत होती है, चाहे जितना भी लड़ाई झगड़ा हो यार, लेकिन एक परिवार है तो एक इंसान बंधा हुआ होता है।
4: बिल्कुल मैम, आप सबने वो मूवी देखी होगी, सलमान जी की मूवी थी प्रेम रतन धन। उसमें एक लाइन जो थी जो वो बोलते हैं कि भले ही परिवार में तकलीफें हो, प्रॉब्लम्स हो, लेकिन वो खुशकिस्मत होते हैं जिनका परिवार होता है।
2: बिल्कुल,
4: परिवार का महत्व उनसे पूछें जिनके पास है ही नहीं, वो आपको ज्यादा बेटर बता पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास है आपकी फैमिली तो हमेशा उसे सहेज के रखना चाहिए।
2: जी बिल्कुल, तो चलिए रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ में जानते हैं कि आज क्या है।
4: बिल्कुल, तो बताते हैं, संस्कारों की उंगली छोड़कर जो चलते हैं वो आगे नहीं हमेशा पीछे होते जाते हैं, इसलिए अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने संस्कारों की उंगली हमेशा थाम कर चलना चाहिए। कहने का सेंस ये है कि बच्चों को हम ये सिखाते हैं कि बेटा मॉडर्न हो, देखो आजकल सोसाइटी बहुत मॉडर्न है तो आप उनके तौर तरीके सीखिएगा, अच्छे बनिएगा सोसाइटी के हिसाब से, लेकिन हम उन्हें ये भी सिखाते हैं ज़्यादा, अरे पैर मत छुओ, पैर वगैरह छूना ये सब तो अब आउटडेटेड हो गया है ना, नहीं नहीं रहने दो, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये ठीक नहीं है, वो जड़ें वो संस्कार आपको उन्हें देना होगा, अगर वो उनके साथ रहेगा तो फिर आगे बाकी चीज़ें वो सीख जाएंगे। और जब हमारे अंदर संस्कार होते हैं तो वो हमें गलत चीज़ों को, हम गलत चीज़ों के पास भी जाते हैं ना तो हमें समझ में आता है अरे नहीं इसके लिए तो मम्मी ने मना किया था,
2: बिल्कुल,
4: या चाचू से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था नहीं ये गलत है इसको नहीं करना, क्यों, क्योंकि आपने वो संस्कार दिए हैं। तो बच्चों को संस्कार दें। और रही बात मॉडर्न बनाने की, या हम आजकल कहते हैं ना ट्रेंडिंग हो गया यार कूल रहो, तो कूल रहने का सेंस ये नहीं होता है कि आप गलत चीज़ों में जाइए या गलत तौर तरीके अपनाइए, कूल सोच से होते हैं। अगर कूल बनना चाहते हैं तो सोच से बनिए,
2: सोच अपनी सोच को और भी ज्यादा विख्यात करने की जरूरत है, है ना अंशिका?
4: बिल्कुल राइट, एब्सोल्युटली।
2: तो चलिए हो गया है टाइम एक गाना सुनने का और सुनाने का, और उसके बाद आएंगे सीधे चैट बॉक्स में, क्योंकि लिसनर्स तब तक आ जाएंगे हमारे। और थैंक यू सो मच जो हमें रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं, जो हमें फ्रिक्वेंसी से सुन रहे हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम को, जो कि आपका पसंदीदा शो है जिसका नाम है
3: सुन सहेली।
2: स्टे ट्यून।
5: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशन्स ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता। अपने नियमानुसार, अपने वादे के अनुसार जल्दी से आ गए हैं, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। आज के दूसरे पड़ाव की ओर चलते हैं, जो कि आज हमारा रिश्तों को लेकर के है। अंशिका,
3: यस मैम, आज बात करते हैं कि अभी अभी आते ही हमने शुरू किया था परिवार
2: परिवार,
3: परिवार। और आपको बहुत ही अच्छे से हमने गाना भी सुनाया।
2: हाँ जी,
3: तो आज कुछ माहौल ऐसा है और दिल में बातें भी ऐसी हैं कि संयुक्त परिवार।
2: संयुक्त परिवार, ओके।
3: जैसे आजकल परिवार की एक डेफिनेशन ये भी हो गई है, और कहीं तक सही भी है शायद, कि मम्मी पापा और बेबी बस। तो कहीं ना कहीं वो फैमिली भी देखिए जो दूसरे शहरों में आकर जॉब करते हैं, या जॉब के लिए जिनकी मजबूरी होती है अपनी फैमिली छोड़कर बाहर जाना, उनके लिए तो वो नीड है कि उन्हें बाहर रहना है अकेले। लेकिन कहीं ना कहीं एक संयुक्त परिवार की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस होती है हमारी लाइफ में, तो वो होनी चाहिए। तो आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको बताएंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जब आप सुनेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा।
2: ओके,
3: लेकिन शुरुआत कहाँ से करें?
2: शुरुआत करते हैं श्री गणेश करेंगे हम लोग
3: जी।
2: किससे करेंगे
3: हमारे पास जो बैठी है प्यारी सी, अच्छी सी, क्यूट सी, उनसे करेंगे
2: जी। तो मुझे लग रहा था कि मुझे फिर ठीक ठाक करने के लिए दिया जाएगा, तो
3: तोड़ना ठीक ठाक नहीं करेंगे।
2: अच्छा, आज ठीक ठाक नहीं करना है। तो चलिए भाई, संयुक्त परिवार के बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहले मजाक अपनी जगह पे है, लेकिन हम जो आप तक बात पहुँचाना चाहते हैं वो अपनी अपने उस पे है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि साझा करने की एक फीलिंग, सहयोग वाली भावना होनी चाहिए। उसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है?
3: क्या होता है मैम?
2: नहीं समझ में आया? देखो, चचेरे भाई बहन, ठीक, अपने भाई बहन,
3: हाँ,
2: ठीक है, उसके बाद परिवार के सदस्यों के साथ रहने के लिए शेयरिंग करना बहुत जरूरी होता है।
3: बिल्कुल,
2: है ना,
3: कहीं ना शेयरिंग इज केयरिंग होती है, ये अगर कहा जाता है तो उसका कुछ मीन है।
2: हाँ, बहुत बड़ा मीन होता है,
3: इसीलिए कहा जाता है कि शेयरिंग इज केयरिंग। और अगर हम शेयर करते हैं तो देखिए ऐसा नहीं होता है, जब हम लोग छोटे थे मैम तो भाई बहन होते थे तो ये लगता था यार एक चॉकलेट मिली है तो आधी भैया खाएंगे आधी हम खाएंगे, या एक मिली है तो चलो आधी दीदी को दे देते हैं आधी हम खा लेते हैं। उससे सिर्फ ये नहीं होता था कि आपकी चॉकलेट बढ़ जाती थी, उससे ये होता था कि प्यार आ जाता था कि अच्छा आधी मिली लेकिन दीदी को मिली। हम लोग तो भाई बहनों में आज भी है, मतलब सभी में, कि एक दूसरे का हम जूठा भी खा लेते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार से भी रहते हैं। आज भी वो आदत है कि अगर मम्मी एक कटोरी में कोई सामान बना के देती हैं तो वो जब तक दीदी मेरी कटोरी में से दो पीस नहीं खा लेती हैं तब तक उनका नहीं होता है। फिर चाहे भर के खुद एक कटोरी मिली होगी, लेकिन जो मजा एक दूसरे की थाली में से खाने में आता है,
2: अरे
3: वो
2: ये,
3: नहीं आता।
2: ये चीज तो अंशिका मैं आज बता दूं, मैं अभी जैसे तुमने बात छेड़ी है तो मैं बता दूं
3: जी
2: कि मतलब जैसे कहते हैं ना, तुमने भी बोला संयुक्त परिवार, तो कई घरों में मैंने ये भी देखा है कि वो एकाकी तो है लेकिन वो लगता नहीं है कि वो एकाकी हैं। वो आपस में अगर खाना उधर बन रहा है तो एक जगह पर खाना ले आ करके एक साथ बैठना और खाना। तो आज भी जब मैं खाना बनाती हूँ घर पे, तो क्या होता है कि जैसे बच्चे हैं, जब तक मैं उनकी थाली से ना खा लूं या वो बच्चे मेरे थाली से ना खा लें, मुझे लगता है कि ना उनका पेट फिल होता है ना मेरा ही पेट फिल होता है।
3: बिल्कुल मैम,
2: मतलब ऐसा लगता है कि यार कि मतलब क्या ही है। और फिर एक संयुक्त परिवार की अहमियत जो है वो पता चलती है। हालांकि मैं बताऊं अंशिका कि मैं तो एक भरे पूरे संयुक्त परिवार की बेटी हूँ, और मैंने अपना बचपन एक संयुक्त परिवार में ही पूरा बिताया है। जैसा कि मेरी पोयम में एक था कि वो बच्चे बहुत अच्छे से स्वस्थ पलते बढ़ते हैं जिनको माहौल संयुक्त परिवार का मिलता है।
3: जी मैम,
2: जिनके साथ में दादा दादी, चाचा चाची और उनकी बुआएं और उनका चाचा चाची के बच्चे सब साथ में रहते हैं, तो उनकी परवरिश, और जो एकाकी परिवार में सिर्फ मम्मी पापा और बच्चे रहते हैं उनकी परवरिश में दिन रात का असर होता है।
3: बिल्कुल,
2: आप चाहे कितना भी उसको चीजों से आप उन्होंने क्या कहते हैं कि खिला दो, भरपूर कर दो, घर में खूब क्या कहते हैं सारी सुविधाएं दे दो, लेकिन अगर ये एकाकी है, संयुक्त नहीं है, तो वो असर उनके चेहरे पे, उनके स्वास्थ्य पे दिखता है। वो दिखता है।
3: जी मैम, पूरा ओवरऑल जो है कि हम कहते हैं ना डेवलप होना चाहिए, वो उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाता। क्योंकि देखिए दादा दादी के पास बैठने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है, जब वो अपने कोई पुराना किस्सा बताते हैं तो सुनने में मजा आने के साथ साथ ये भी लगता है कि अरे इन्होंने ऐसे किया था, इट मींस कि हमें भी ऐसे करना चाहिए।
2: एक, मतलब, एक, एक अच्छी वाली मोटिवेशन मिलती है। मेन बात ये है।
3: मैं तो बताऊं कि मेरे आवाज बात निकली तो याद आ गया कि जब हम लोग छोटे थे तो पापा से जाते थे पैसे मांगते थे टॉफी वगैरह के लिए, तो पापा मना कर देते थे कि दिन भर में कितनी बार खाओगे, दांत खराब हो जाएगा और छोटे हो अभी। तो हम लोग भाग के चाचू के पास जाते थे कि चाचा देखो पापा ने नहीं दिया, आप तो दोगे ना, तो वो अगर उनके पास होते थे तो वो निकाल के दे देते थे, लेकिन वो हमेशा ये कहते थे कि देखो चुपके से लाना और खा लेना और पापा से
2: पापा को नहीं
3: बताना। तो हम लोग भी चुपके से जाते थे और फिर उन्हें जब कुछ मंगाना होता था तो वो अपने पैसे भी दे देते थे कि अच्छा जाओ अपने लिए ये लाओगे तो मेरे लिए ये ले आना, और फिर हम लोग चुपके से खाते थे और फिर पापा को नहीं बताते थे। तो कहीं ना कहीं वो एक प्यार था कि हाँ एक लगाव है। मतलब मैं तो बहुत घूमी हूँ, जब मेला वगैरह लगता था जैसे गोंडा में तो स्पेशली नुमाइश बहुत ज्यादा फेमस है, सभी देखने जाते हैं। तो हम लोग जब देखने जाना होता था तो पापा से नहीं तो चाचू से कहते थे या फिर सब मिलके जाते थे। एक दिन ये होता था कि यार शाम को कुछ नहीं बनाओ खाना वगैरह और चलो फुल फैमिली जाते हैं घूमने, और फिर बहुत मजा आता था जब फुल फैमिली जाते थे।
2: तो मैं जैसे अंशिका अभी बोला ना, तो हम लोग के मतलब घर में जैसे जो वो बड़ी वाली बस होती है ना, रोडवेज बस वाली होती है, तो वो पूरी बस हुआ करती थी मतलब हमारे घर में। तो मेरे चाचा जी क्या कहते हैं कि खुद ड्राइव भी करते थे और साथ में उनके बहुत सारे स्टाफ जैसे नहीं रहते ड्राइवर
3: जी, जी,
2: तो
3: जी।
2: वो भी फिर होते थे, तो दूर दूर जाती थी बस। लेकिन जब हम लोगों को जैसे तुमने भी नुमाइश का लिया ना, तो हमारी फैमिली बहुत ही बड़ी फैमिली थी जिसमें हमारे दादा दादी और दो चाचा चाचियाँ, उनके बच्चे, पापा, मम्मी, हम लोग तीनों भाई बहन और बुआएं आ जाती थी। अभी इधर मई जून में ही लगती है नुमाइश, तो ऑलमोस्ट पूरी जो बस हम लोगों की अपनी फैमिली से भर जाती थी। और यही चौक में, अब तो क्या कहते हैं कि जो मतलब ये जो चौक जो ये चौक एरिया है या फिर जो ये कौन सा अपना ये फाउंटेन जो
3: फाउंटेन चौराहे पे
2: ये सब अब इतना ज्यादा क्राउडेड हो गया है। पहले इतना क्राउडेड नहीं हुआ करता था, तो आराम से यहाँ से बस पे हम लोग वहीं क्या कहते हैं घर के बाहर ही बस लग जाती थी शाम को मतलब 8 बजे, और सब लोग अपने अपने हिसाब से बैठते जाते थे और हम लोग काफी दूर क्या कहते हैं बस से जाते थे घूमने के लिए। मतलब इतना अच्छा आज वो दिन याद आ गया कि वो एक संयुक्त परिवार था और आज कितने घर बन गए। मतलब कहते हैं ना कि वही एक घर में से कितने घर बन गए,
3: कितने घर बन गए,
2: और कितना ज्यादा वो लगता है कि देखो कि उन सब चीजों का असर पता है बच्चों पे पड़ता है, मेनली संयुक्त परिवार का और एकाकी परिवार का पूरा जो असर होता है वो आपके आने वाली पीढ़ी पर और पड़ेगा
3: और ज्यादा,
2: तभी वो लोग अपना अकेले रहना पसंद करने लगे हैं और क्या कहते हैं बाहर पढ़ने निकल गए, तो शादी हो रही है तो वो वहीं अपना सेटल्ड हो जा रहे हैं, इधर माँ बाप अकेले रह जा रहे हैं। तो ये सब इसी का कारण है कि वो संयुक्त में वो लोग नहीं रुके, ना देखा उन्होंने, तो उन लोगों के अंदर भी यही वाली बातें और फीलिंग पलती बढ़ती गई
3: कि अगर जैसे एक सेपरेट फैमिली जब होती है तो मन में आता है कि अगर मेरे मम्मी पापा सेपरेट फैमिली में रह सकते हैं तो मैं भी अपनी फिर सेपरेट फैमिली रख सकता हूँ, क्या जरूरत है मम्मी पापा को साथ रखने की।
2: बिल्कुल।
3: तो कहीं ना कहीं वो जो नींव में ही, जब कहते हैं ना कि जब पौधे की नींव में ही खराबी है तो बढ़ेगा कैसे, तो कहीं ना कहीं एक जो बहुत ज्यादा मूल में दी जाती हैं चीजें वो संयुक्त परिवार में ही मिल सकती हैं। और ऐसा नहीं होता है, कहते हैं कि संयुक्त परिवार में, ये रिसर्च पे प्रूव्ड है कि जो बच्चे संयुक्त परिवार में पलते हैं उनके अंदर आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है।
2: बिल्कुल होता है, क्योंकि उनको समझाने के लिए काफी लोग होते हैं। देखा जाए तो अगर मतलब जो बच्चा मतलब उस टाइम की बात कर रहे हैं जब संयुक्त परिवार हुआ करता था, आज भी ऐसे कई फैमिलीज हैं जिसमें संयुक्त परिवार है, तो मान लीजिए कि कोई बच्चा 10th में है, ठीक, उसके नंबर कम आए, अब अगर मम्मी से बच्चा डरता है, मानो डरता है, तो वो पापा के पास जाएगा और अपना रिजल्ट दिखाएगा, तो उसको समझाने के लिए कौन हुआ, उसके केवल फादर हुए,
3: फादर।
2: ठीक, मम्मी का डर है, मम्मी से डांट पड़ेगी तो उनकी
3: तरफ मम्मी जाना
2: को ही
3: कहेंगे नहीं,
2: ठीक है, तो पापा ने समझा दिया कि बेटा कोई बात नहीं, अगली बार तुम अच्छे नंबर लाना, खत्म हो गया। उसके बच्चे के अंदर एक बात रह गई कि चलो पापा ने बता दिया। लेकिन अगर संयुक्त परिवार है और उस बच्चे को सपोर्ट चाहिए और मिल रहा है दादा से, दादी से, चाची से, चाचा से, ताऊ से, ताई से, बुआ से, और उनके चाचा के बच्चों से अगर वो बड़े हैं तो
3: जी।
2: तो सोचो कितने लोगों का सपोर्ट मिल गया, अरे कोई नहीं बेटा नेक्स्ट टाइम तुम और अच्छे से लाना। तो एक बच्चे की जो नींव हुई अंदर से वो और स्ट्रांग हो गई और अच्छा करने के लिए उसे प्रेरित किया गया।
3: बिल्कुल। मतलब इससे याद आ गया कि जब मैं भी 10th में थी और मेरा भी रिजल्ट आया था, तो मेरे छोटे वाले चाचा जो हैं वो थोड़े मतलब हम लोगों से हैं, बड़े हैं बट थोड़ा उनको मस्ती
2: मतलब वो फैमिली
3: हाँ मस्ती हाँ। ज्यादा आती है, तो वो कह रहे हैं पास वास तो होगी नहीं या देखो रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा
2: हाँ।
3: और उस टाइम पे टेंशन होता है, उस टाइम पे कोई कह देता है कि देखो क्या आएगा तो और टेंशन हो गई,
2: टेंशन हो जाती है।
3: तो फिर मैंने दादी से कहा, मैंने कहा दादी देखो ये मेरे साथ मस्ती कर रहे हैं, और वो मेरे रिजल्ट को सिर्फ एक दिन बाकी था और दूसरे दिन जब रिजल्ट आया और रिजल्ट अच्छा निकला मतलब, तो मेरे यहाँ छोटे वाले चाचा जो है सुबह जलेबी और समोसा सब लेकर के आए और उन्होंने पहले ही दादी को दे दिया कि इसको रख दो, सुबह जब रिजल्ट देख लेगी तब उसे खाने के लिए दिया जाएगा और अभी इससे कुछ मत कहना। और मेरी सुबह से हालत खराब क्योंकि मुझे लग रहा था क्या आएगा क्या आएगा, भले लिखा था हमने बट फिर भी। तो रिजल्ट जब आया, जब सब लोगों ने देख लिया, तो मैंने कहा देखा मेरा रिजल्ट अच्छा आया और आप मुझे ऐसे ही कह रहे थे कि कैसा आएगा। उसके बाद भी उनकी मस्ती है, अरे ठीक है वो चेक करने वाले से गलती हुई होगी तो अच्छा नंबर तुम्हें मिल गया, तो हमने कहा लो। इसके बाद भी
2: बाय डिफॉल्ट पास हो गई,
3: उसके बाद भी वो शुरू था, तो मैंने चिढ़ गई, मैंने कहा अच्छा ठीक है जाओ बात ही नहीं करेंगे, तो कह रहे अच्छा चलो छेड़ रहे थे, चलो तुम्हारे लिए देखो जलेबी लाए चलो खाओ, और अरे मेरे घर की बेटी है ना वो थोड़ी ना ऐसे होगा, वो तो पास ही हो जाएगी।
2: बताओ कितना सपोर्ट मिला।
3: हाँ
2: सपोर्ट मिला ना, इसीलिए मतलब कहा जाता है कि संयुक्त परिवार एकाकी परिवार की अपेक्षा आज भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम ज्यादा होता है, एक समझने की शक्ति ज्यादा होती है, एक अपनापन उस परिवार में ज्यादा होता है।
3: बिल्कुल।
2: तो कंक्लूजन यही है कि अभी भी जो भी फैमिलीज बन रही हैं, एंड अगर आपको एक मॉरल सपोर्ट, एक मेंटल सपोर्ट चाहिए या कोई भी किसी प्रकार का सपोर्ट, तो संयुक्त रहें, क्योंकि संयुक्त परिवार जैसा सुख और शांति और प्यार कहीं नहीं है।
3: बिल्कुल। आगे वाली जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनसे कहना चाहेंगे कि अपने परिवार को संयुक्त रखने की कोशिश करें। तो चलिए चलते हैं बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, और इस सॉन्ग के उस पार आएंगे आपके लिए क्या लेकर, वो आप सोचिए, तब तक हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आज समता और साथ में आज अंशिका। चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं भाई। आज है हमारा वृद्ध जनों का दिन और हाँ। वृद्ध जनों के दिन के साथ में उनकी केयर के साथ में और ऐसी कुछ एनजीओस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि कुछ ऐसे एनजीओ हैं जहां पर केयर के साथ साथ प्यार की भी फुली देखभाल की जाती है।
5: बिल्कुल, तो सबसे पहले बात करते हैं,
4: लेकिन उसके पहले मैं चाहती हूँ कि हमारे चैट बॉक्स में लिसनर्स आ गए हैं तो उनका स्वागत कर लेते हैं। अंशिका
5: जी, मैम,
4: तो प्रीति जी आ गई हैं, अनुष्का जी आ गई हैं एंड नागेश्वर जी एंड कमल नयन जी, लवली सिंह, आशु जी, तो बाकी सभी लिसनर्स भी जल्दी जल्दी आ जाएं एंड आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। एंड जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में आ जाएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि आप सभी के मैसेजेस आ रहे हैं और हम उन्हें रीड कर रहे हैं और आप तक हम अपने मैसेज को पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
5: बिल्कुल, तो फटाफट से फोन उठाइए और फटाफट से आप टाइप करिए, हमारी कुछ जो भी आप टाइप करना चाहें वो टाइप करें, फटाफट से भेज दें। तो चलिए अब बताते हैं पहले एनजीओ के बारे में। तो हमारा जो फर्स्ट एनजीओ है वो है हेल्प एज इंडिया।
4: ओके,
5: हेल्प एज इंडिया बहुत ही भारत में प्रख्यात है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और साथ ही साथ में ये जो काम करता है, ये काम करता है सीनियर सिटीजन्स के जो कानूनी अधिकार हैं उन्हें लेकर के। यानी इस एनजीओ में जब आप जाते हैं और आप हेल्प मांगते हैं तो वहाँ आपको ये बताया जाता है कि किस तरीके से, अगर आपके, जैसे आजकल देखा गया है कि बहुत बच्चे अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं या उनके साथ प्रॉपर्टी के लिए झगड़े करते हैं, तो उस अगर इन सब कारणों से आपको निकाल दिया गया है या आपको टॉर्चर किया जा रहा है इनकेस, तो वो आपको ये बताते हैं कि क्या उस संविधान में क्या क्या प्रावधान है, किन धाराओं के तहत आप हेल्प ले सकते हैं। मतलब कहना कि आपका आपकी प्रॉपर्टी पर राइट है, ऐसा ज़रूरी नहीं है अगर आपने कोई पावर ऑफ अटर्नी नहीं दी है या कोई पेपर्स नहीं दिए हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे जो है वो आपकी प्रॉपर्टी पे हक जताएं। उनका हक जताने का राइट तभी है जब आपने वो हक दिया हो पहले से।
4: ओके,
5: तो कहीं ना कहीं उन्हें लॉयर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, पूरी उनकी केयर की जाती है और यहाँ तक कि केस लड़ने के लिए जो पैसे, जो भी कुछ फाइनेंशियली हेल्प लगती है वो फाइनेंशियली पूरा हेल्प करते हैं अपने फंड से। और उनको वहाँ रखा जाता है, मतलब उनके लिए रूम्स हैं, पूरी उन्हें सुविधा दी जाती है और एक फैमिली जैसा माहौल भी दिया जाता है। क्योंकि मैं बता दूँ कि 150 बुजुर्ग जोड़े हैं जो कि वहाँ रहते हैं और हेल्प्स इंडिया उनके लिए काम करता है।
4: वाओ,
5: और उन्हें पूरा एक फैमिली है, मतलब वो 150 जो वहाँ पे रहते हैं
4: उन्हें अपने घर जैसा,
5: अपने घर जैसा माहौल। और वो कहते भी हैं, मतलब बताते भी हैं, एक रिपोर्ट में ये बताया भी गया है जो वहाँ की रिपोर्ट थी, कि वो सभी वहाँ पे सेटिस्फाइड हैं, उनको ये लगता है कि वो अपनी फैमिली में हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिनके केस लड़े जा रहे हैं उनमें से बहुतों ने अपने अपने केस जीत लिए, उन्हें अपनी प्रॉपर्टी मिल गई, अपनी जो उनकी जो भी चीज़ें थी, ज़मीन वगैरह, वो सब मिल गई और कहीं ना कहीं आज वो अपने घर के अंदर खुश हैं। और उनको ये भी एक सपोर्ट मिला कि अगर गलत होता है तो गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और उसके लिए अगर आप चलते हैं तो लोग आपकी मदद करते हैं। तो बहुत ही बेहतर काम है। और हम बता दें कि हेल्प्स इंडिया ने जब शुरुआत की थी तो उन्होंने 1960 में शुरुआत की थी, तो 1960 से आज तक का उनका सफ़र है। और 1960 में सिर्फ 2 कमरों से इसे शुरू किया गया था और तब उनका ये मानना नहीं था कि वो कभी इतने बड़े पैमाने पर पहुंचेंगे और इतने सारे लोगों की मदद करेंगे। उन्होंने तो बस एक भावना से शुरू किया था कि हम कुछ वृद्धों की, कुछ बुज़ुर्गों की मदद कर सकें जो अपने घर से, अपनी फैमिली से परेशान है।
4: तो वो अंशिका आपने कहावत नहीं सुनी है कि हम चले थे अकेले पर पीछे देखा तो पूरा कारवां बनता गया। तो ऐसे ही नेक कामों में ना हमें बहुत सारी अड़चनें आती हैं, पर जैसे कहते हैं ना कि नेक काम जब हम ठान लेते हैं दिल से तो भी उसके बाद में हम अच्छे से उन पर एक फतेह भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इरादे अच्छे होते हैं।
5: बिल्कुल, तो हमेशा अपने इरादों को अच्छा रखें, क्योंकि जब इरादे अच्छे होंगे तो मंजिल अच्छी मिलेगी, लेकिन अगर इरादे ही अच्छे नहीं होंगे तो मंजिल तो दूर की।

0: पर हक जमा रहे हैं, जमीन है, प्रॉपर्टी है, तो वो आपकी है ना, आपने अपनी मेहनत के पैसों से उन्हें खड़ा किया है, तो कहीं ना कहीं वो आपका हक है।
1: लेकिन अंशिका, ये आपकी बात से मैं सहमत भी हूँ, लेकिन आजकल इंडिया में खास करके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सबकी सोच ऐसी है कि मैं क्या अब अपने बच्चों से हम लोग केस लड़े, मतलब इसी में वो हार मान करके अपना वो वृद्धाश्रम भले चले जाते हैं और उन्हें वो माफ कर देते हैं।
0: जी मैम।
1: और इसी का गलत फायदा उठा करके आज की जनरेशन जो है वो अपना तो मतलब बाहर जाकर के रहने लगती हैं या दूसरे मकान में रहने लगती हैं और वो उनका पुश्तैनी मकान जो है वो उन्हें बेच देती हैं, तो उसका गलत फायदा उठाते हैं, उनके सीधेपन का फायदा उठाते हैं। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज की जनरेशन हो या पहले की जनरेशन हो, हर किसी को उनके आगे फिर उनकी औलाद है,
0: बिल्कुल
1: उनके बच्चे हैं, तो आगे जो वो कर रहे हैं, जो वो देख रहे हैं, उनके साथ फिर वैसा ही पूरा
0: होगा,
1: सामने होने वाला होता है। तो इसीलिए इसमें सबसे बड़ा जो गेम होता है, सबसे बड़ा जो खेल है, वो बड़े बुजुर्गों का है कि वो भी अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दें कि अगर आप सही करेंगे तो फिर आपकी बच्चे भी आपके साथ वैसा ही करेंगे।
0: बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही मैसेज है जो सभी तक पहुंचना चाहिए। और अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने शुरुआत तो की थी कुछ सोचकर, मतलब नेक सोच के साथ ही की थी, लेकिन उनकी सोच में एक ये भी था कि जो मेरे ऊपर बीती है वो मैं दूसरे के ऊपर कभी बीतने नहीं दूंगा। तो इस सोच के साथ जब कोई शुरुआत करता है तो बहुत अच्छी शुरुआत होती है। तो चलिए बताते हैं कि इस फाउंडेशन का नाम क्या है और नींव क्या है। तो नाम है एजवेल फाउंडेशन।
1: आज क्या?
0: एजवेल फाउंडेशन। एजवेल फाउंडेशन को शुरू किया था हिमांशु जी ने। हिमांशु जी ने इस फाउंडेशन को शुरू किया जब उनकी उम्र करीब 55 साल थी। और जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि उनके मन में था जो मेरे ऊपर बीता वो मैं औरों के ऊपर नहीं बीतने दूंगा। मैं आपको बता दूं कि वो बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब में हैं, मतलब अभी भी ये बताया जाता है कि उन्होंने शुरू किया तो वो अच्छी गवर्नमेंट जॉब में थे। लेकिन हुआ क्या कि उनका जो बेटा था उनको उन्होंने पढ़ाया, अच्छी एजुकेशन दी और वो जा करके बाहर सेटल हो गया। जब वो बाहर सेटल हो गया तो धीरे धीरे उसने अपने घर आना कम कर दिया, धीरे धीरे घर आना कम क्या किया, बिल्कुल छोड़ दिया। और फिर धीरे धीरे मम्मी पापा से बात नहीं, कुछ भी नहीं, तो वो एक अकेलापन उन्होंने उनके अंदर उनको बार बार टच करता था कि मेरा बेटा मुझसे बातें नहीं करता, मेरे साथ नहीं,
1: मतलब कि उसको ये लगा कि मैं अब बिल्कुल अकेला हो गया हूं। और ये कहीं ना कहीं अकेलापन उनको अंदर अंदर से फिर वो
0: फील होने लगा क्योंकि उनकी वाइफ भी उनके साथ नहीं थी, उनकी डेथ पहले ही हो गई थी। तो कहीं ना कहीं उन्हें अकेलापन लगने लगा और कुछ टाइम बाद उन्होंने ये रियलाइज किया कि उनका बेटा उनके साथ बात भी नहीं करना चाहता है। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि चलो ठीक है, मैं अपने अकेलेपन को मतलब उसमें जाऊंगा नहीं, ना मैं डिप्रेशन में जाऊंगा, मैं इसे एक हथियार बनाऊंगा। क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट जॉब थी इसलिए उनके पास वो एक फाइनेंशियली सपोर्ट था। तो उन्होंने अपने गांव में, वो बताते हैं कि मैंने पहले से जमीन कुछ ले रखी थी तो मैंने उस पे धीरे धीरे घर बनवाना शुरू किया, कमरे बनवाना शुरू किया और फिर मैंने धीरे धीरे उस फाउंडेशन की नींव रखी और उसे शुरू किया। जब मैंने शुरू किया तो मुझे ऐसे अपने आसपास, वो बताते हैं कि आसी पास के माहौल में और मोहल्ले वगैरह में और मेरे खुद के शहर में मुझे ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग मिले जो इस अकेलेपन से जूझ रहे थे।
1: अच्छा।
0: तो धीरे धीरे हमने उनके लिए लाफ्टर क्लब शुरू किया, जो अपने घर से परेशान थे उनको ये किया कि आप यहीं आकर रहिए, और जो अकेले थे उनके लिए ये शुरू किया कि किस तरीके से वो अपना पूरा दिन वहाँ बिता सकते हैं। मतलब वो सुबह आ जाते थे और पूरा दिन अपना बिताते थे और रात को जब उनको नीड होती थी तो वो अपने घर चले जाते थे और उन्हें वहाँ पूरा एक पारिवारिक माहौल दिया जाता था, ये दिया जाता था कि आप अपना पूरा दिन खुशी से बिताएं। और उन्होंने बताया कि वहाँ कैरम और वगैरह बाकी सारी खेलने की सुविधाएं थी, खाने की सुविधा थी, सब कुछ था। और धीरे धीरे लोग बढ़ते गए और अपना दिन वहाँ बिताते चले गए। और आज मैं आपको बताऊं कि वो जो फाउंडेशन है उसमें करीब बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं, 200 से 500 ऐसे बुजुर्ग हैं जो आते हैं, अपना दिन बिताते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं। तो वो बताते हैं कि उनके साथ जब बैठते हैं और बातें करते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं, किसी की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती। तो वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हम सभी के लिए कि अगर अपने दर्द को कोई हथियार बनाता है तो वो पूरे समाज के लिए एक एग्जाम्पल बन जाता है। जैसे वो हैं, वो भी चाहते तो औरों की तरह उस डिप्रेशन में जा सकते थे कि अरे मैंने अपने बेटे को जन्म दिया और देखो वही मेरे साथ नहीं। लेकिन उन्होंने उसको उल्टा लिया। तो जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को पॉजिटिविटी के साथ लेते हैं तो एक एग्जांपल बन जाते हैं सोसाइटी के लिए।
1: बिल्कुल। तो ये बहुत ही बढ़िया अभी अंशिका ने न्यूज़ दी है। और आशु जी लिख रही हैं कि बिल्कुल सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, जब भी जागो तब सवेरा।
0: बिल्कुल, जब जागो तब सवेरा।

बिल्कुल सही बात है। और प्रमुख जी पूछ रहे हैं तो क्या मैं भी आ जाऊं? जी बिल्कुल आ जाइए अनुष्का जी, मोस्ट वेलकम। और चलिए अब यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे फिर से एक नए टॉपिक की ओर। तब तक के लिए आप सुनते रहिए 9.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आइए मिलते हैं हम दोनों आज इस फिल से एक म्यूजिकल शॉर्ट ब्रेक के बाद।

0: डिलिशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा शो सुन सहेली। और बिल्कुल हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर लो तुम इनकार। बिल्कुल लाख इनकार कर लो भाई, प्यार तो ऐसी चीज है जो होती है और सीधा हो जाती है, बस हो जाती है। कुछ ऐसा ही कनेक्शन होता है हमारा हमारी फैमिली से, हमारे कहीं ना कहीं अपनों से, कि जो जुड़ जाते हैं वो दिल से बिल्कुल सीधा जुड़ जाते हैं। तो अभी अभी हमने बात की कुछ NGOs को लेकर के, आपको बताया कि उनका कैसा काम है सीनियर सिटीजन्स को लेकर के। अब बताते हैं, आते हैं कुछ हम हमारी सीनियर सिटीजन्स की हेल्थ को लेकर के। तो उनकी हेल्थ को लेकर के हम आज बताएंगे जिस चीज़ के बारे में, वो आप ये है कि समय बीतने के साथ साथ जब एज बढ़ती है तो बॉडी में कहीं ना कहीं विटामिन की कमी हो जाती है।
5: और विटामिन्स की कमी के कारण से बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जो कि मैं भी झेल रही हूँ। विटामिन्स की कमी जब हो जाती है ना, तो सबसे पहला असर हमारे मूड पे पड़ता है। मूड स्विंग होता रहता है।
4: अच्छा, मूड स्विंग,
5: कभी अच्छा होगा कभी खराब होगा, कभी किसी को मारने का मन करेगा, कभी किसी को प्यार करने का मन करेगा, कभी घूमने का मन करेगा, कभी कुछ करने का मन करेगा। तो ये जो है ना विटामिन्स की कमी के कारण भी होता है।
4: ओके,
5: ये फन में नहीं बोल रही हूं, मैं सच में बोल रही हूं।
4: जी मैम, मैं सच में ही उसको, मतलब मैं फनी नहीं ले रही हूं। तो मैं ये सोच रही थी लगता है मुझे भी विटामिन्स की कमी हो गई है, क्योंकि ऐसा कभी कभी मेरे साथ भी होता है।
5: सच्ची?
4: अच्छा। कभी कभी मन करता है कि अच्छी अच्छी चीजें बनाए खाएं, कभी कुछ करने का मन नहीं करता, कभी आलस वाला मन करता है आराम से जो है चादर डाल के सो जाए, लेकिन वो भी नहीं कर सकते। तो आज बताते हैं कि बड़े बुजुर्गों में ये क्यों होता है। सबसे पहले तो विटामिन की कमी आपके शरीर में तब आती है जब आपका जो आपकी जो डाइट है वो सही नहीं होती,
5: वो
4: है
5: या तो कम होती है और या तो उसमें पौष्टिक आहार नहीं होता है।
4: नहीं होता है, बिल्कुल। जैसे कि हम बात करें तो शिमला मिर्च।
5: हाँ।
4: शिमला मिर्च अपनी डाइट में जरूर लेनी चाहिए।
5: मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो उसको सैलेड में भी लेती हूँ।
4: जी मैम, अगर जैसे आप खा सकते हैं जैसे मैम ने भी बताया सैलेड में, तो आप सैलेड में खाइए। अदरवाइज आप सब्जी में उसको ले सकते हैं, या किसी भी तरीके से अपनी बॉडी में शिमला मिर्च जरूर लेना चाहिए, क्योंकि शिमला मिर्च जो होती है उसमें विटामिन की पूरी पूरी एक मात्रा होती है।
5: अच्छा, मुझे तो पता है अंशिका कैसे पसंद है।
4: कैसे?
5: सैलेड में जैसे प्याज कट कर लो, टमाटर कट कर लो, शिमला मिर्च कट कर लो, बहुत ही जैसे नहीं चॉपर में डालकर।
4: जी जी जी।
5: और उसके ऊपर फिर चाट मसाला, काला नमक और फिर ये नींबू और हल्का सा आमचूर, मतलब और हरी पत्ते धनिया और हरी वाली मिर्च, कसम से बता रहे हैं इसको हम लोग कच्ची चटनी कहते हैं।
4: जी जी।
5: और ये केवल अगर दाल चावल के साथ मिल जाए ना, या फिर आप सिर्फ पराठे के साथ भी अगर आप
4: जी
5: खाओगे
4: जी
5: ना, तो मैं आपको एक दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप 2 पराठे की जगह पर आप 3 पराठे खा जाओगे। इसको कच्ची हम लोग चटनी कहते हैं। और आप इसमें खीरा मिला सकते हो, अनार के दाने डाल दो, मतलब इतना गजब का स्वाद लगता है कि मैं आपको क्या बताऊं।
4: ये तो बिना मंडे वाली हमारी आज रेसिपी हो गई।
5: हाँ,
4: मतलब मुझे तो बहुत टेस्टी लगी, मतलब सुनने में।
5: मतलब पता है ये वाला सैलेड ना सभी को पसंद आता है, और मुझे लग रहा है कि इतना पौष्टिक होता है,
4: मैं बनाऊंगी,
5: कि एक कटोरी तो हमें रोज इसको लेना ही लेना चाहिए अपनी डाइट में।
4: जैसे खाना आप खा रहे हैं तो 2 रोटी कम खाइए, उसे पूरा 1 कटोरी भर के खा लीजिए, तो आपको प्रोटीन अच्छे से मिल जाएगी।
5: हाँ, बिल्कुल।
4: और साथ में विटामिन भी। और मैं बता दूं कि अगर विटामिन की अच्छी एक आपको चाहिए खुराक की आपकी बॉडी में हो, तो उसके लिए एप्पल जरूर खाने चाहिए।
5: ओके, सच्ची? वाव, तब तो मेरी डाइट ठीक चल रही है। मतलब
4: आपकी डाइट ठीक चल रही है मैम, नो डाउट। तो एप्पल खाना चाहिए।
5: आप ठीक चल रही है।
4: आप ठीक चल रहे हैं। अब ठीक चल रही है,
5: अब ठीक चल रही है।
4: और उसके साथ साथ में केला खाना चाहिए,
5: विटामिन्स होता है,
4: विटामिन्स होते हैं। और अगर विटामिन्स के लिए आप लेना चाहते हैं तो सबसे अच्छा होता है पालक। अगर पालक
5: में तो बहुत होता है प्रोटीन, मतलब क्या ही बता दूं, अगर आपने एक बहुत ज्यादा वाले कमजोर इंसान को भी अगर पालक का सूप या पालक खिलाना शुरू कर दिया ना, तो वो मैं बताऊं कि इतना ज्यादा उसमें आयरन होता है सबसे पहले
4: जी।
5: तो आयरन का स्रोत ज्यादा होता है पालक में। और पालक तो अगर आपने ज्यादा बवाल नहीं करना है तो पालक में हल्का सा भून करके छोटे छोटे आलू कट भी करके डाल करके आप सब्जी बना करके खा सकते हैं। मतलब बहुतों को लगता है कि पालक का मतलब है कि केवल साग बनाओ, है ना, पर ऐसा नहीं है। पालक की सब्जी भी आप बना सकते हैं आलू टमाटर के साथ में।
4: मैम कितनी अच्छी रेसिपीज बताती हैं, इससे पता चलता है कि मैम खाना बहुत अच्छा बनाती हैं।
5: हाँ, मैं बना लेती हूँ खाना, अच्छा बना लेती हूँ।
4: वैसे मैंने तो खाया भी है, मतलब
5: ऐसा लोग कहते हैं, बट कभी कभी लगता है कि यार कि अब अपने हाथ का नहीं, कहीं और के हाथ का खाना खाना चाहिए।
4: तो कहीं और
5: जिसको खाना बनाना आता हो,
4: अरे ऑफकोर्स आता नहीं होगा तो सीख जाएंगे ना मैम, सीखना पड़ता है। वैसे भी कहते हैं ना, जब समय आपके साथ आता है तो आप सीख जाते हो, तो अच्छी बात है कोई सीख जाए, आपको बनाए, आपको खिलाए।
5: आप सुन रहे हैं सुन आप सुन रहे सुन सुन सहेली सुन रहे हैं
4: ऑफकोर्स सुन सहेली सुन रहे हैं, और तो फिलहाल हम कुछ सुन नहीं सकते, सुन सहेली सुन रहे हैं। और बिल्कुल सुन सहेली में हम जो है वो क्या कहते हैं, राह भटक गए थे,
5: ये बिलख जाती है बीच में, बिलख नहीं जाती है मतलब ये भटक जाती है।
4: अब आते हैं उन पे जो नॉनवेज खाते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको अंडा जरूर खाना चाहिए। और मैं बताऊं कि नॉनवेज जो खाते हैं उनके लिए सबसे अच्छा पता है क्या होता है, कच्चा अंडा ले आइए, उसकी जर्दी को एक गिलास दूध में, जो येलो वाला उसका हिस्सा होता है, उसको डालिए, अच्छे से मिक्स करिए और पी जाइए। कभी भी आपकी बॉडी में विटामिन की कमी नहीं होगी, हड्डियां कभी दर्द नहीं करेंगी।
5: अंशिका ने किया है लग रहा है।
4: नहीं मैंने कभी किया नहीं है, क्योंकि एक्चुअली वो बहुत कड़वा लगता है।
5: तो तुम्हें कैसे पता चला कड़वा लगता है?
4: नहीं मैम पिया है, मतलब मैंने नहीं पिया है। हाँ। अरे पूरी बात तो सुनिए, मेरे यहाँ जो पेशेंट है, मतलब पापा वगैरह, वो लोग पीते हैं तो वो बताते हैं कि वो कड़वा कड़वा टेस्ट लगता है।
5: अच्छा।
4: मैंने नहीं पिया है कभी, मैं उतना कड़वा नहीं पी सकती हूँ, आई डोंट लाइक दिस। तो अगर आप ऐसा है इनकेस, तो आप उसको ले सकते हैं। सेकेंड पे आती है फिश, जैसे हम बोलते हैं ना फिश में बहुत अच्छी कैल्शियम होती है, उसी तरह से विटामिन भी होते हैं। तो फिश का जो हिस्सा आगे वाला होता है, यानी कि सिर वाला होता है, वो आप अगर खाएंगे
5: जी आगे,
4: तो हो सकता है मतलब विटामिन मिल सकता है आपको। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट ये है कि ये तो बात हो गई डाइट की, अब बात होती है थोड़ी सी हाइजीन की। हाइजीन इसलिए क्योंकि देखिए, जब विटामिन की बात हम करते हैं तो जितना आपको आपके खाने में आपकी डाइट में मिल जाता है, उतने ही कहीं ना कहीं हमें हाइजीन भी रखना चाहिए, हाइजीन से भी मिल जाता है। हाइजीन का मतलब ये होता है कि जैसे आप घर में कुछ चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे कपड़ों को हम यूज़ करते हैं, तो मानसून के टाइम में हमने आपको पहले भी बताया था कि कहीं ना कहीं फंगस और इस तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, तो जब बॉडी में इन बैक्टीरिया की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं वो कमज़ोरी आपकी बॉडी में आ जाती है। इसलिए हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ में कुछ चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हल्की स्ट्रेचिंग, वॉक जरूर करनी,
5: योग से जुड़े,
4: योग से जुड़े।
5: योगिनी बैठी हुई है तो बता दूं कि हल्की सी स्ट्रेचिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उससे मांसपेशियों में ना एक खिंचाव होता है, और जब मांसपेशियां खिंचती हैं तो वो आपके लिए स्वस्थ मानी जाती है।
4: बिल्कुल। और ये ज्ञान मैं आपको इतने अच्छे से इसलिए दे रही हूँ क्योंकि फिलहाल कुछ दिनों से मैं कर रही हूँ।
5: ओके।
4: क्योंकि मैंने मैम को बताया था कि किन कारणों से मुझे कुछ तकलीफ है इस वक्त, तो उस तकलीफ से निजात,
5: इसलिए मैं सोचूं कि अंशिका थोड़ी दुबली पतली क्यों होती जा रही है।
4: नहीं, उस तकलीफ से निजात पाने के लिए मैंने शुरू किया था, क्योंकि मुझे वाकई में काफी उससे पेन था, तो मैं गई थी तो किसी ने मुझे ये सजेस्ट किया कि आप करिए और जब धीरे धीरे खिंचेगा तो वो ठीक हो जाएगा।
5: ओके।
4: तो मैं उसको कर रही हूँ फिलहाल, और अच्छा है, अब थोड़ा कम है पेन। और आई गेस
5: हम कहते थे तो इसको असर नहीं, जैसे कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल
4: बराबर, नहीं नहीं ऐसा नहीं
5: है, तो उसको बुद्धि में नहीं घुसता था, जब किसी और डॉक्टर ने बोल दिया तो उस चीज को करना ही करना,
4: किसी ने ढकेला है मुझे, वरना मैं और एक्सरसाइज और वो भी मॉर्निंग में, मतलब था मुश्किल है मेरे लिए, किसी ने मुझे अच्छी एक अच्छी वाली वो दे करके, खुराक दे करके ढकेला है कि अगर अब नहीं करोगी तो चल नहीं पाओगी, तो तुम कब करोगी जब तुम चलने के
5: कैपेसिटी
4: में नहीं रहोगी। तो फिर मैंने सोचा नहीं, हेल्थ पहले आती
5: है, कर लेते हैं,
4: अब कर लेते हैं,
5: अब कर लेते हैं,
4: लेकिन बस कुछ दिन वाला है, मतलब जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो फिर मैं,
5: अभी भी असर नहीं हो रहा है इसको देख लीजिए, है ना।
4: नहीं, नहीं। तो ऐसा नहीं है, मतलब मजाक था ये, आप रेगुलर करें
5: जी। तो ब्रेक ले अंशिका।
4: जी मैम।
5: तो चलिए एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार आएंगे आज के लास्ट बट नॉट लीस्ट वाले सेगमेंट पे। और आज के प्रोग्राम का फीडबैक देना ना भूलिएगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने बहुत मेहनत करी हुई है, अच्छी अच्छी चीज़ों को आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो जल्दी से फीडबैक तब तक दे दीजिए, और अभी हमारे पास टाइम है, पूरे पूरे 15 मिनट है, तो अभी नहीं जा रही हूँ, लेकिन तब तक अभी तक जो भी सुना है तब तक का एक फीडबैक देना ज़रूरी है। चलिए बस हम लोग यूँ गए, यूँ आए। स्टे ट्यून्ड।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
2: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
5: गोंडा शहर की धड़कन।
6: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
7: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता एंड साथ में आज अंशिका। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट सेगमेंट पे हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी आपको बताने वाले हैं।
8: तो हमारा लास्ट जो होता है वो होता है पूरे दिन का, मतलब सॉरी पूरे दिन का नहीं,
7: हाँ पूरे दिन का ही हुआ भाई, हम लोग तो अब जा रहे हैं ना।
8: हाँ
7: तो हम लोग जा रहे हैं, तो हमारे तो पूरे दिन का हुआ ना, हमारे
8: पूरा
7: शो
8: दिन
7: का।
8: यस, हमारे शो का जो कि होता है टिप ऑफ द डे। तो आज का टिप ऑफ द डे हमारी सीनियर सिटीजन के लिए है, जो कि बहुत ही अच्छा है और चाहे तो इसे जो सीनियर सिटीजन नहीं है वो भी यूज कर सकते हैं।
7: जैसे
8: ये है कि सुबह खाली पेट खाने के बाद गुनगुना पानी जरूर पीना चाहिए। आप चाहें तो सुबह खाली पेट भी पी सकते हैं और नाश्ता करने के आधे घंटे के बाद भी पी सकते हैं।
7: हाँ, गुनगुना पानी तो बहुत ही अच्छा मतलब माना गया है। अभी मैं कुछ देख रही थी मोबाइल में अपने, तो उसमें भी सबसे पहला अगर हम किसी से पूछते हैं या फिर गूगल में सर्च करते हैं अपने हेल्थ को लेकर के, तो सबसे पहला टॉपिक यही आता है कि आपने क्या गुनगुना पानी शुरू किया। और मतलब मैक्स टू मैक्स, अगर ज़्यादा किसी को लगता है कि हम, क्योंकि बहुतों को ये भी लगता है कि हमने अगर गुनगुना पानी ज़्यादा पीना शुरू किया तो हमें वीकनेस होने लगती है।
8: नहीं, ऐसा नहीं होता।
7: नहीं, होता है अंशिका, होता है लोगों को, होता है। हाँ, तो ऐसा करिए कि आप ना पहले एक कप से शुरू करिए, मतलब एक कप आपने 15 दिन चलाना है, एक कप केवल, और उसके बाद में आपको फील करना है कि अगर आपको कुछ नहीं हो रहा है तो आप धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी आप बढ़ाते जाएं। लेकिन सुबह खाली पेट गुनगुना पानी, समझ लीजिए कि आपकी उम्र को 4 साल, जो आपकी उम्र होगी उससे आपसे 4 गुना आपकी उम्र, 4 साल आपकी और बढ़ाई देता है।
8: ओके। तो जरूर लें और इसको अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि ये पूरी बॉडी को, जैसे मैम ने अभी आपको कितनी अच्छे से ब्रीफ किया, तो उसी तरह पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है।
7: बिल्कुल,
8: जो भी चीजें होती हैं आपकी बॉडी में हार्मफुल उन्हें बाहर करता है, और साथ ही साथ जिन्हें पेट में मरोड़ की और बाकी कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो होती हैं, वो बिल्कुल नहीं होंगी। और फिर आप आराम से जो भी खाना चाहें वो खा सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर ये होता है कि अरे आपको प्रिकॉशन पे रहना है, तो अगर आप प्रिकॉशन ना रख करके अपनी मनपसंद चीज़ों को इन्जॉय करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा तरीका है कि सुबह आप जैसे मैम ने बताया कि हल्की क्वांटिटी से शुरू करें, आधे कप से, और फिर अपना जैसे आपको सूट
7: मतलब
8: करे।
7: मुझे लगता है कि जब भी कोई हम नई चीज शुरू करते हैं ना, तो उसको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग पहले कम मात्रा में ही शुरू करना चाहिए।
8: जी मैम,
7: ऐसा नहीं कि आपने हैवी डोज ले लिया, आपने बिल्कुल 1.5 गिलास गुनगुना पानी कर लिया और आराम से, भाई हमको किसी ने, बाबा ने कहा था, और गुनगुना पानी लेके बैठ गए आधा जग, आपने एक दिन पिया, 2 दिन पिया और फिर आपको उसका साइड इफेक्ट होने लगा, आपको वीकनेस होने लगी, वेट लॉस हो गया, बहुत जल्दी वेट लॉस हो गया, तो ये सारी चीजें भी आपको मतलब नुकसान कर सकती हैं। इसीलिए कोई भी प्रिकॉशन लेने से पहले, मतलब मेरी तरफ से ये एडवाइज है कि अगर आप कोई मेडिसिन भी लेते हैं, मतलब मेरे बाबूजी तो यही कहा करते थे अंशिका,

0: जी
1: अगर
0: मैम,
1: आप नई कोई मेडिसिन भी ले रहे हैं तो आप थोड़ी सी एक टैबलेट के बाद में एक थोड़ा अंतराल करें,
0: हाँ
1: या फिर उसको आधी खाएं,
0: जी
1: क्योंकि आपको आधी से ही पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में कुछ इसका साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप फिर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये आदत मेरी इतनी अच्छी है, मतलब मैंने इसको बांध लिया है कि कभी भी कोई अगर मतलब भगवान ना करे कभी भी अगर मैं बीमार पड़ती हूँ ना, तो मैं हमेशा से उनकी इस बात को जरूर मद्देनजर रखती हूँ कि पहले आधी जैसे भी होती है टैबलेट्स, पहले उसको लेती हूँ, थोड़ी देर के बाद लगता है कि हाँ मतलब मैं फिट हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, इसका असर मेरे पे अच्छा ही हो रहा है, फिर मैं थोड़ी देर के बाद में 15 मिनट के बाद में फिर मैं आधी ले लेती हूँ। तो ये सभी को अपनाना चाहिए। जैसे अभी आपने गुनगुने पानी के लिए बोला, तो गुनगुना पानी लेना है, लेकिन ऐसा नहीं, आपने आधे कप से शुरू करना है, तब धीरे धीरे जा करके आपको अपनी उसकी क्वांटिटी बढ़ानी है।
0: बिल्कुल, तो वही इसी बातचीत के साथ हमारा समय भी हो गया, क्योंकि समय जो है वो उड़ जाता है पंख लगाकर, तो अब लगता है हमें भी जाना पड़ेगा।
1: बिल्कुल, और कल मिलेंगे सेम प्लेस सेम टाइम पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और प्यारा सा मौसम उसको एंजॉय करिए, पानी खूब पीजिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, ताकि कल हम आपसे फिर से मिल सकें। बाय बाय दोस्तों,
0: बाय बाय।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला, यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88-40-33-95-84। अब बारी है आपकी। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 88-40-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब?
2: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-1416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
7: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल LT स्किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का हो

जी श्रोताओं, हाजिर हूँ मैं आप सभी के बीच में, आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो कैनसल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। भाई धड़कने आज थोड़ी सी इनहेंस होंगी, कारण है आज का मौसम। मौसम है ऑसम, और ऑसम मौसम में आपका मूड और भी बेहतरीन बनाएंगे, आपके प्यारे नगमों से सजाएंगे आज का शो। जी हाँ, कॉलर ट्यून गोंडा को। तो भाई फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम का नंबर वही है 6393316429, जिस पर लगातार आप सभी की कॉल्स आ रही है, फरमाइशें आ रही है, और हम भी हाजिर है अपने पसंदीदा नगमों के साथ में। जी हाँ, तो चलिए चलते हैं आज के सफर के सबसे पहले गीत की ओर, और ये गीत हमारी झोली से यानी कि हमारी प्लेलिस्ट से है आप सभी के लिए, और गाना बड़ा ही प्यारा है। क्योंकि कहते हैं ना, प्यार दिलों का मेला है, फिर भी इंसान अकेला है, अकेला रह जाता है, तन्हा रह जाता है। क्यों? क्योंकि जब मुलाकातें कम हो जाती है, बातें कम हो जाती है, या फिर कभी कभार ऐसा प्यारा मौसम हो और तड़प बढ़ जाती है, और मिलना बिछड़ना ऐसा लगता है, वैसे ये दस्तूर है मोहब्बत का, मिलने बिछड़ने से ही तो कहीं ना कहीं प्यार बढ़ता है और जवां रहता है। तो चलिए चलते हैं इस गाने के माध्यम से, एंजॉय करते हैं उस तड़प को, उस बिछड़न को, और उस प्यार को जो कि मेले में होके भी अकेला होता है। एंजॉय करिए आज की शो का पहला ट्रैक आपकी आकांक्षा के प्लेलिस्ट से आप सभी के लिए। अपने अपने समवन स्पेशल को याद कर लीजिए जनाब इस गाने के माध्यम से। आते हैं नेक्स्ट डिमांड के साथ में, और देखते हैं आज की पहली फरमाइश है किसकी। वैसे है सबलू जी की, लेकिन उससे पहले आरजे आकांक्षा की प्लेलिस्ट से ये गाना आप सभी के लिए। एंजॉय द ट्रैक विद ऑसम मौसम।

दोस्तों, जब ऐसा मौसम होता है, मूड ऑसम होता है और कोई अगर मिलके बिछड़ जाए या बिछड़ के मिलने की मतलब चाहत हो, पूछिए हिम्मत जनाब, कत्ले आम हो जाता है, कहाँ पे दिल पे चलाई छुरियां टाइप्स हो जाता है। फिलहाल ये नगमा आप एंजॉय करें आपकी अपनी आज आकांक्षा की पसंद का। आपको भी अगर आपकी पसंद का कोई सॉन्ग सुनना है या डेडिकेशन में किसी के लिए भेजना है ऐसे ऑसम वाले मौसम में, प्लीज कॉल करें 6393316429 पे।

धड़केगा और मौसम जब जब बेमान होगा आपका दिल धड़कना बनता है बॉस। इसी को तो कहते हैं प्यार, इसी को तो कहते हैं इश्क, इसी को कहते हैं मोहब्बत। वैसे इस मोहब्बत की रफ्तार को बढ़ाते हैं और तड़का लगाते हैं कांटे से। जी हमारे पास में आई हुई है कांटे छुरी वाला गाना, नहीं छुरी नहीं है, खाली कांटा कांटा कांटा है। तो चलिए सुनते हैं सबलू सावंत जी की डिमांड पे, जो कि हमें सुन रहे हैं कहां से भी बता दे, सांता क्रूज मुंबई से सुन रहे हैं भाई। और इनकी डिमांड बड़ी प्यारी, आप भी सुनिए हम भी सुनते हैं आपके 3 से 4 के सफर में ये प्यारा सा नगमा। एंजॉय द ट्रैक दोस्तों। Everybody now, let me see you move.

सॉन्ग चेंज करेंगे अपनी तरफ से आपके लिए खास गाना बजाएंगे। पंडित जी अपनी बारी का इंतजार करिएगा। सेम टू सेम दोनों की डिमांड हमारे सलू जी की और प्रबल जी की। प्रबल जी आपका गाना हम चेंज करते हैं अपनी तरफ से।

गाना था हमारे प्रबल जी और हमारे प्यारे लिसनर यानी सब सामन जी की ओर से, लेकिन हम प्रबल जी के गाने को चेंज करते हैं और अब आनंद उठाई हमारे पंडित जी की डिमांड का, जो कि हमने अपनी ओर से लगाया स्पेशली आपके लिए। एंजॉय करिए इस ट्रैक को, आते हैं नेक्स्ट डिमांड के साथ।

आवाज में मुझे मालूम है बेस ज्यादा था और सारे शब्द क्लियर नहीं सुनाई दिए, लेकिन जिसको सुनना था उसने सुन लिया होगा। उम्मीद है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड के साथ में। प्रमुख जी की डिमांड हमारे पास में है, फिर आएंगे समरीन जी देवी प्रसाद जी की नेक्स्ट डिमांड के साथ। उसके बाद होंगे हमारे मुकेश जी, अपनी बारी का इंतजार करिए भाई। हमारे मुकेश जी ने आज बड़े दिनों बाद अपने सिग्नेचर सॉन्ग की डिमांड की है। आप सभी बने रहिए आपके अपने शो कॉलर ट्यून गुंडा के साथ।

जो देख ले एक नजर तो फिर दिल को करार मिलता है, ऐसा कहा गया है इस गाने के माध्यम से, बिल्कुल सत्य कहा गया है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो कि हमारी समरीन जी की डिमांड बहुत सारी आई हुई है, लेकिन बीच में हम चैट बॉक्स की ओर भी जरूर से जरूर आएंगे। क्या गाना है, वाह वाह वाह, एंजॉय करिए।

जी हाँ, तो द एक्सपोज से अभी ये गाना आपने सुना और ये डिमांड थी हमारी समरीन जी की, और अब हम बढ़ेंगे देवी जी के सॉन्ग की ओर। भाई बड़े दिनों बाद इनकी डिमांड हम कंप्लीट करने वाले हैं, उसके बाद मुकेश जी आपकी बारी होगी। इंतजार करिएगा आप सभी अपनी अपनी फरमाइशों का, और उसके बाद दुर्गा जी की हम डिमांड लेंगे, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड के साथ में जो कि होने वाली है शहनवाज जी की। उससे पहले ये गाना

सॉन्ग के बाद अब हम बढ़ेंगे भाई मुकेश अंबानी जी के सिग्नेचर सॉन्ग की ओर। बड़े दिनों बाद इनकी डिमांड हम तक आई है, इसको पूरा करते हैं फिर आएंगे दुर्गा जी आपकी डिमांड के साथ। लेकिन उससे पहले चलेंगे हम चैट बॉक्स की ओर और ये गाना आप सुन रहे हैं आपके अपने पसंदीदा शो यानी कि फोनी फरमाइशी कार्यक्रम कॉलर ट्यून गुंडा में, और आपने ट्यून करके रखा हुआ 89.6 FM भाई, हाँ गुंडा शहर की धड़कन।

जी जो हमें दिल से सुनता है वो अंबानी से कम नहीं होगा, इसीलिए हमने इनका नाम रखा है मुकेश अंबानी। एक दिन मेरा मन कहा कि इनका हम नामकरण कर दें, तो हम इनका नाम तो बदलने का मन नहीं हुआ, तो हमने कहा लाइए पीछे से अंबानी ही जोड़ देते हैं, क्योंकि जो दिल से अमीर होता है वही शायद अंबानी टैग को बिलोंग करता है। सो योर नेम इज मुकेश अंबानी। आप लोग हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं इस बात पे।

हाँ जी श्रोताओं, अभी आपने मुकेश अम्बानी जी यानी हमारे मुकेश जी जो हमें दिल से सुनते हैं की डिमांड को सुना है, और अब हम चलेंगे आप लोगों के मैसेजेस की ओर यानी कि चैट बॉक्स की ओर, और देखेंगे कि चैट बॉक्स में आप सभी के पैगामात के रूप में हमारे पास में क्या क्या आया हुआ है, क्या पहुंचा है। चलिए तो फिर सबसे पहला मैसेज हमारे पास में जो हमें दिख रहा है वो हमारे प्रबल मिश्रा जी पंडित जी का है, उसके बाद है प्रमोद कुमार जी लुधियाना से, दरक्षा अंसारी जी हैं सीतापुर से, गुड आफ्टरनून डियर गुलाबो, गुड आफ्टरनून टू यू डियर, उम्मीद है आप बहुत अच्छी होंगी। सरू सावंत जी हैं सांता क्रूज से, वैसे पता नहीं कि मुझे सांता क्रूज में जब पढ़ती हूँ पता नहीं क्यों मुझे सांता क्लॉज याद आ जाते हैं, और उम्मीद है कि आप भी किसी की लाइफ के सांता क्लॉज जरूर होंगे हमारे सामने बलम जी। और लिखते हैं आज के लिस्ट में हमारी हाजिरी लगा देव आरजे आकांक्षा बबनी जी, हाजिर लाग गई बा, और बाद में आगे बढ़ते हैं। प्रमुख जी ने लिखा है आरजे आकांक्षा मुस्कान आपकी खिल मैं पहले मुस्कुरा लूं, हाँ मैं मुस्कुरा चुकी हूँ, पढ़ती हूँ मैसेज को। आरजे आकांक्षा मुस्कान आपकी खिलता हुआ सवेरा है, क्या उपमा दी गई है खिलता हुआ सवेरा, आहा। आगे बढ़ते हैं, हर प्रस्तुति में झलकता अपनापन जैसे प्रेम का बसेरा है, आपकी मीठी आवाज दिलों को सुकून दे जाती है, हर शब्द में एक नई उम्मीद और खुशियां बिखर जाती है। अच्छा मैं ऐसे प्रवचन देती, थैंक यू। यूं ही हंसती रहिए, यूं ही मुस्कुराती रहिए, महकती रहिए, अपनी प्यारी प्रस्तुति से हर दिल में बसती रहिए, थैंक यू सो मच। ईश्वर करे आपकी राहें हमेशा रोशन रहे, आपकी मुस्कान और कला यूं ही सबके चेहरे पर मुस्कान भरती रहे, गुड आफ्टरनून प्यारी आकांक्षा दे दिया, सो मेनी ब्लेसिंग्स फॉर यू, थैंक यू सो मच। भाई हमको थोड़ा सा ब्लश आ रहा है, मतलब मैं खुश हूँ पढ़ के, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे, सुरेंद्र यादव जी हैं गौरा चौकी से, धर्मेंद्र मोहन भारती जी भाई बड़े दिनों बाद अपने असली अवतार के साथ आए हुए हैं, आपका सबसे पहले हार्दिक वाला स्वागत और अभिनंदन है। कॉलर ट्यून सुनने वाले सभी श्रोताओं को आओ धूम मचाएं मेरे साथ, अच्छा आपके साथ धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम, पता नहीं कि मेरे को वो वाले बटन वाले खिलौने याद आ गए इस गाने से, थैंक यू सो मच। इसके बाद में है हमारे के गुप्ता जी तिरंगा कॉम्प्लेक्स से, और इन्होंने प्रणाम वाला मैसेज भेजा है, आशीर्वाद आपको। और लिखते हैं प्रबल जी बहुत सारी हार्ट इमोजीज भेज चुके हैं, और हमारे के जी बहुत बहुत धन्यवाद, गुड आफ्टरनून मैम जी, आज भी प्रबल जी ने हमारी राधे राधे लिखना मिस कर दिया है, कोई बात नहीं फिर से आपकी क्लास लगाएंगे हम, आपको फिर से याद दिलाएंगे कि भाई आपके मैसेज में राधे राधे सबसे औसम लगता है, प्लीज मेंशन किया करें। शिवा जी है विद्यानगर मोतीगंज से जो हमें सुनते हैं, इन्होंने भी हमें प्रणाम भेजा है, प्रणाम आपको भी, और उम्मीद है आपका दिन बहुत बेहतर जाएगा। और इसके बाद में लिखते हैं सबलू जी हमारे, तुझे देख कर दिल धड़कता है पर रिचार्ज खत्म हो तो डर लगता है, अच्छा ऐसा भी है, ओके थैंक यू। और नेक्स्ट मैसेज में है ये जवाब तो नहीं दे पाएंगे मुकेश जी, मुकेश जी पूछ रहे हैं ये कांटा कहाँ लगा, कैसे लगा, किस ओर लगा, कब लगा, किधर से लगा, तो ये तो जिसको लगा होगा वही बताएगा ना, क्योंकि हमको तो लगा ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मैसेज की ओर, मुस्तफा जी हैं सऊदी अरेबिया से, अजीबोगरीब सवाल करते हैं आप सभी, गुड आफ्टरनून आपको भी। और इसके बाद मैसेज आए हमारे मोस्ट वॉन्टेड बैचलर की ओर से, जो कि है रतलाम की गलियों से नहीं भाई रीवा से बिलोंग करते हैं, एमपी रीवा से इट्स कुमार साहब आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके बाद में नीना जी हैं यानी मेरी चंगू जी हैं, कल मंगू जी थी आज चंगू जी हैं, दोनों की जोड़ी को क्या हो गया, डिस्टर्बेंस कहां से हो रही है हम जानना चाहेंगे, वैसे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। इसके बाद में नेक्स्ट मैसेजेस आप सभी के ही हैं, और मनी जी हैं भटपुरवा से, आपका भी स्वागत करते हैं, और हां जी वेरी फास्ट, जी हां हां जी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी फास्ट ही हैं हम, क्या करें कभी कभी फास्ट होना पड़ता है क्योंकि डिमांड बहुत सारी होती है, तो अगर मैं जल्दी जल्दी नहीं कवर अप करूंगी तो फिर बहुत सारी डिमांड से बहुत ज़्यादा सारी वाली डिमांड रह जाएंगी। कमल नयन जी हैं आकांक्षा मैम गुड आफ्टरनून आपको भी। और इसके बाद में एक प्यारा सा मैसेज है, आकाश के तारों में खोया है जहां सारा, लगता है प्यारा एक एक तारा, उन तारों में सबसे प्यारा है एक सितारा जो इस वक्त पढ़ रहा है मैसेज हमारा, ओहो थैंक यू सो मच फॉर योर लवली वाला मैसेज, और साथ में लिखा है थैंक यू हां जी मैम, अभी आप समझ गए होंगे कि ये मुकेश अम्बानी जी हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मैसेज की ओर, तो आप सभी ने ओके अपने अपने कुछ बातें साझा की हैं, तो उन सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हम बढ़ते हैं फटाक से उस गाने की ओर जिसको हमको थमवाना है, तो गाना है भाई बरसात का मौसम है और दुर्गा जी की डिमांड है, बड़े दिनों बाद आज इनकी डिमांड हम तक आई है और इनको सुनना है, थम के बरस जरा थम के बरस, कहाँ जाना है वहीं भाई, जब ऐसा मौसम होता है तो जहाँ जाने का मन करता है और कहाँ जाना है, आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को और फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड लेकर के शाहनवाज साहब की।

जिनका नाम है प्रेम मौर्य जी, जो हमें चुपके चुपके से सुनते हैं फ्रॉम सीतापुर। भाई आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, और आपके लिए गाना भी हम आपको चिपकाएंगे। देखते हैं कौन सा गाना आप पे सूट करेगा, हम वही आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एंजॉय करते रहिए 3 से 4 के सफर में। मैं हूं आपके होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा, आप शो सुन रहे हैं आपका फोनी फरमाइश कार्यक्रम कॉल ट्यून गुंडा। और अपनी डिमांड तो आपने काफी सारी पहले ही भेज दी है, इसलिए नंबर नहीं बताने का मन, लेकिन फिर भी बता देते हैं 6393316429।

भाई हमारे श्रोताओं का आधे से ज्यादा लोगों का ये सवाल होता है कि आपके पिताजी को आपके दामाद मिले या नहीं, नहीं आपके नहीं उनके दामाद मिले या नहीं। तो यही सवाल आज हमारी दुर्गा जी का था बड़े दिनों बाद। तो हमने भाई बता दिया है, भाई उनको तो नहीं मिले, अगर किसी और को मिले हो तो जरूर बताइएगा। फिलहाल कॉलिंग नंबर वही है 6393316429, इस पे आप कॉल करके ये सूचना भी पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं शहनवाज जी की डिमांड के साथ में। थैंक यू सो मच दुर्गा जी।

जी अलैला मजनू मूवी से ये गाना भी आपने एंजॉय किया हमारे प्यारे लिसनर शहनवाज जी की ओर से। और अब हम बढ़ेंगे आमिर कुमार जी की डिमांड की ओर। आज इन्होंने भी ओल्ड इज गोल्ड वर्जन वाले सॉन्ग की डिमांड की है। ये सुनते हैं क्या फरमाइश है इनकी फ्रॉम द मूवी उजाला।

पता नहीं क्यों जब ये याला याला दिल ले गई कह रहे थे तो मेरा मन कर रहा था चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के इसी लाइन को दोहराए। बड़ा मजा आएगा अगर आपने कभी ऐसा उधम किया होगा घर पे तो आप जानते होंगे, नहीं किया होगा तो एक बार ट्राई करिएगा, मम्मी से जरूर आपको फटके मिलेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर। और नीना जी का कहना, भाई 50 साल की उम्र में कोई गाना नहीं गा सकता। गा सकता है भाई, बस यही है कि ग्लिचिंग्स आएंगी थोड़ी बहुत, ग्लिचिंग्स के साथ में भाई नेटवर्क इशू भी हो सकता है, मतलब ऐसे वाला, और आपकी सांस भी फूल सकती है। ये तो वैसे 50 बहुत ज्यादा नहीं होता है, आप 90 तक जाके भी गा सकती हैं, हमें जो लगता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड के साथ में। और नेक्स्ट डिमांड हमारे पास में जो है वो है हमारी तनु त्रिपाठी जी की ओर से, और ये गाना हम जी हाँ समर्पित करेंगे अपने प्रेम मौर्य जी को। प्रेम मौर्य जी थोड़ा कान को खोल के सुनिएगा, ये गाना आपके लिए है स्पेशली तनु जी की डिमांड पे। जी हाँ, तनु त्रिपाठी जी की ओर से ये गाना, आइए सुनते हैं मिलकर।

0: अरे मैडम आइए आइए, कैसी हैं आप? ये रहा
1: भीड़ का तो पता नहीं भाई, कुमार साहब हमारे कह रहे चीख कर मजा आएगा, लेकिन चीख कर मजा आएगा उसके बाद में जो चिखावट पड़ेगी मम्मी के तमाचों से या फिर यहाँ से हम शायद बेदखल ही हो जाएं। आप कह रहे भीड़ लग जाएगी, स्टूडियो में भीड़ नहीं लगेगी, हम यहाँ से बाहर हो जाएंगे। मुकेश जी ने ढेर सारे आम भेज दिए भाई, आम के मौसम में आम, क्या बात है। खाते रहिए और गानों को सुनते रहिए।

जाने के बाद अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो कि शालिनी मौर्य जी की डिमांड गुड़वाघाट से। पहली दफा आज इनकी कॉल हम पर आई है, तो लीजिए सुनते हैं इनकी डिमांड पे ये ब्लेंडर वाला सॉन्ग।

जी हाँ, शालिनी जी की डिमांड अब यहाँ कंप्लीट होती है जो हमें सुन रही है गुड़वा घाट से, और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर। और ये डिमांड है किसी की, और हम ये किसी को समर्पित करने वाले हैं। ये डिमांड है हमारे रविंद्र जी की, जो हमें सुनते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो राधा कुंड से। और अब हम बढ़ेंगे, या फिर लक्ष्मणपुर से हैं भाई, कहाँ से हैं मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, प्लीज़ आप क्लियर करिएगा नेक्स्ट कॉल पर। और अभी हम इस गाने को समर्पित करेंगे उनको जिन्होंने हमसे कहा भाई हमारा नाम मत लीजिएगा, लेकिन हमारे लिए आप अपनी तरफ से कोई गाना जरूर प्रस्तुत करिए। तो चलिए इलाहाबाद वाले हमारे प्यारे लिसनर के लिए प्यारी सी डिमांड हमारी ओर से, एंजॉय करिए 3 से 4 के सफर में ये गाना। 3:46 हो चुके, शेष 14 मिनट एंजॉय करते रहिए एक से बढ़ के एक सुपर डुपर हिट नगमों को आपकी पसंद के।

मैं तुझसे ऐसे मिलूं। बिल्कुल भाई, और ये गाना था हमारे रविंद्र जी की डिमांड पे और किसी को डेडिकेट किया हमने, जिन्होंने कहा हमसे हमारे नाम मत लीजिएगा, बस हमारे लिए कोई गाना प्ले कर दीजिए। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट डिमांड की ओर। उससे पहले भाई सबलू जी ने बहुत ही प्यारा सा मैसेज भेजा है, मैसेज पढ़ लेता है अपन। हाँ, तो लिखा है, दिल बड़ा रखो पर बिल छोटा रखो, दोस्ती गहरी रखो पर उधार कम हो। ओहो हो, पढ़ाई जरूरी है पर मोबाइल भी जरूरी है, जिंदगी मस्त है जब खाना सस्त है, हंसते रहो यार टेंशन को मार, चाय गरम हो बिस्किट नरम हो, पेट भरा हो दिमाग खरा हो, मूड खराब हो चॉकलेट लाजवाब हो, पैसा कम हो पर हंसी ज्यादा हो, और जिंदगी छोटी है पर मस्ती बड़ी मोटी है। क्या बात है भाई, और मस्ती को मोटा करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड के साथ में। ये डिमांड है हमारे प्यारे धर्मेंद्र मोहन भारती जी की ओर से, फ्रॉम आवाज बिकॉज कॉलोनी गोंडा। एंजॉय द ट्रैक। प्यारे दोस्तों, मित्रों, मित्राणियों और सभी प्यारे लिसनर्स, आप सभी एंजॉय करिए इस ट्रैक को।

मनी जी आपकी डिमांड एक गाने के बाद में, थोड़ा वेट कर लीजिए प्लीज। गाने बहुत सारे आए हुए हैं तो भाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो ही सकता है ना, और आज काफी डिमांड्स रह भी जाएंगी और लगातार हमारे पास कॉल आ रही, मैं कॉल भी नहीं रिसीव कर पा रही, उन सबसे भी मैं माफी चाहूंगी क्योंकि मैं या तो लिंक ले सकती या फिर कॉल रिसीव कर सकती। जैसे हमारे सुरेश कुमार जी चौक गोंडा से कॉल कर रहे थे, वैसे आज काफी डिमांड छूटेंगी तो उसके लिए पहले से ही माजरा चाहूंगी।

नहीं। जी हाँ, ये डिमांड थी हमारे धर्मेंद्र मोहन भारती जी की। बड़े दिनों बाद भाई इनके दर्शन हुए हैं। और नीना जी का कहना, भैया एक बार हमसे मिलिए आप, तो हम आपसे बस इतना ही वादा करते हैं, आज आपके सपने में हम जरूर आएंगे, बस डरिएगा नहीं, हो सकता है हा हा हा करते आए तो आप डर जाए। सेम उसी तरह जैसे किसी से मिलने गए थे, उनके बच्चे जी सो रहे थे, अचानक से हमारी हंसी सुन के उठ गए, कहो रोए नहीं वरना हम शर्मिंदा हो जाते, सभी हंसने लगे। खैर आगे बढ़ते हैं और हमारे पास में जुड़ गए हैं सचिन शुक्ला जी, जो मैं दिल्ली से सुनते हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और पंडित जी लिखते हैं, इश्क उसी से करो जिसमें कमियां हजार हुई, खूबियों वाले चेहरे इतराते बहुत हैं। ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं जो बहुत प्यारे दिखते हैं लाइक हीरो टाइप, फिर भी वो इतराते नहीं, और उन पर इतराना वैसे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो लड़की हो या लड़का, अगर थोड़ा सा इतराता है तो उस पर चार चांद से लग जाता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, रामकृष्ण नंदन जी हैं, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है आपकी अपनी आर्जी आकांक्षा। आपने नाम तो नहीं लिया लेकिन इशारे में बता ही दिया, थैंक यू सो मच रामकृष्ण जी। और एक बात पूछनी थी, बारिश में जो बूंदा बांदी होती है उसमें कैसे पता चलता है कौन बूंदा है और कौन बांदी है? भाई ये भी हमें नहीं पता है, ये सब आप लोग खुद ही में ढूंढ लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आई डिमांड की ओर, और ये गाना हम गुनगुनाना पसंद करेंगे। ये डिमांड हमारे प्यारे लिसनर की है, जिनका के नाम है रमेश कुमार जी, और ये हमें सुनते हैं महाराष्ट्र से। गाना बहुत ही सुंदर है, आइए एंजॉय करते हैं मिलके हम और आप सभी।

क्वीन यानी कि फाल्गुनी पाठक की आवाज में आप एंजॉय कर रहे हैं इस बहुत ही खूबसूरत से डिमांड को, लड़कियों का मोस्ट फेवरेट रहा ये सॉन्ग। आइए एंजॉय करते हैं आगे बढ़ के इसके अंतर के साथ।

दोस्तों इश्क किसी से ना हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे खतरे होते हैं। और इसका तो लास्ट पड़ाव मैंने आपको बताया ही था कि मौत होती है, खुद को फना कर देना होता है। वैसे इंसान अपने अहम को खत्म करता है, ना कि जिंदगी को। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आज की नेक्स्ट डिमांड लेंगे हम अरमान जी की, और उसके बाद आज की लास्ट डिमांड होगी हमारे प्यारे लिसनर जो हमें सुन रहे हैं लखनऊ से, और इन्होंने अपना नाम तो नहीं मेंशन किया है लेकिन बड़ा सा मैसेज जरूर भेजा है। नहीं, हाँ, नाम बताया, श्रीनाथ यादव जी। चलिए फिलहाल लेते हैं अरमान जी की इस प्यारी सी डिमांड को, और उसके बाद आते हैं लास्ट डिमांड लेकर के, और बाकी जिनकी डिमांड रह जाएगी उनसे माफी चाहूंगी। एक घंटा मात्र होता है दोस्तों, मैं क्या ही कर सकती, मजबूर हूँ वक्त के हाथों।

भाई गाना बहुत ही प्यारा है अरमान जी, लेकिन मुझे यहाँ पे रोकना पड़ेगा वक्त की कमी के कारण, और उम्मीद है कल आप इसकी फिर से डिमांड करेंगे और मैं तो रहूंगी नहीं, मेरा वीक ऑफ होगा, लेकिन आरजी उन्नति जी जरूर आपकी ये डिमांड को कंप्लीट करना पसंद करेंगी। और एक मैसेज आया है वो मैं पढ़ना चाहूंगी, लिखते हैं पंडित जी हमारी नीना जी को समझाते हुए, और आप सभी के लिए बहुत जरूरी है तो सुन लीजिएगा। आदमी फल छोड़कर कचौड़ी समोसे खाता है, फिर बीमार पड़ के अस्पताल जाता है, अस्पताल के बिस्तर पर वो रिश्तेदारों द्वारा लाए गए सेब संतरे खाता है, और रिश्तेदार खुद बाहर बैठ करके समोसे कचौड़ी खा रहे होते हैं। बस यही जीवन का चक्र है, बाकी सब मोह माया है। मतलब घूम फिर के इंसान वही करता है जिसको नहीं करना होता, और फिर उससे वही करा जाता है जो उसे करना होता है। मतलब मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, नहीं समझ पाएंगे तो कोई बात नहीं, कल मैं नहीं परसों आपको जरूर समझाने की कोशिश करूंगी आपकी कॉल इन शो में। लेकिन उससे पहले आज जिन जिनकी डिमांड रह गई उनसे माफी मांग लेते हैं। माफीनामा में सबसे पहला नाम हमारे रईस साहब का है, अपनी रईसियत के साथ में बड़े प्यारे सनगमा था इनका। सुरेंद्र यादव जी आपसे भी माफी है, मुमताज अंसारी जी आपसे भी माफी है, और राकेश वर्मा जी जो मैं दुखरा नाथ से सुनते हैं, आज दूसरा दिन है इनके गाने मैं प्ले नहीं कर पाई हूँ। रीना शर्मा जी हमारी रुड़की उत्तराखंड से हैं, आपसे भी मैं माफी चाहूंगी, और हमारे प्यारे लिसनर जिनका हमें नाम नहीं पता चल पाया है उनसे भी माफी चाहूंगी, और कल चाहूंगी आप लोग सभी डिमांड करें। दो घंटे का आपका फोनी फरमाइशी कार्यक्रम कॉल्टून गुंडा होगा, और एक प्यारा सा मैसेज हमारे श्रीनाथ यादव जी की ओर से, जो कि इंस्पेक्टर विभाग मतलब पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर है लखनऊ में। लिखते हैं आपकी आवाज की धूम चल रही है, आपके द्वारा बहुत ही दमदार धमाकेदार शो प्रस्तुत किया जा रहा है, और साथ ही साथ में लिखते हैं कि आप जो गुनगुना रही है वो तो और कहर बरसा दे रहा है, चार चांद लग जा रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रस्तुति है आपकी, शानदार प्रोग्राम, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये रहने वाले हैं गोंडा के ही। चलिए चलते हैं, फिलहाल आज की आखिरी डिमांड हम इन्हीं की लेंगे, और इसी के साथ में अब आपको बाय बाय बोलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे शनिवार के दिन, कल जरूर सुनिएगा अपनी उन्नति के साथ में आपका अपना शो क्वालिटी गुंडा, और हाँ सुनते रहिएगा बाकी सभी प्रोग्राम्स को भी, और प्यार और अपनी दुआओं से ऐसे ही नवाजिएगा जैसे हर रोज आप नवाजते हैं अपनी ज्ञानस्थली को। बाय बाय, टेक केयर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
6: आप सुन रहे हैं एक सुपर हिट सॉन्ग्स वाला शो, ज्ञान स्थली बेस।
7: ज्ञान स्थली बेस।

0: एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते हैं, ये लाइन भी नहीं है और बहुत मुश्किल हो रहा है कोई।
1: बस वीरूपा जी बस, वरना तेरे प्यार में पग पड़ जाऊंगा।
2: तुम क्या कह रही थे?
0: गर्मी गर्मी कितनी हो रही है यार, पसीने निकल रहे हैं।

0: सबसे पहले बोलेगी लेट्स पार्टी।
1: लेट्स
0: पार्टी, आई नो।
1: एक बार अपने
0: Why don't you say something? Tarika.
2: और फिर तुम अपना सामान लेके उसके रूम से मेरे रूम को जाओगे। And then we'll also enjoy, है ना?
0: I'm not a mendak ki us room se is room. You make me sound like I don't know what I'm doing. I love you, Meera.

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में, और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: हाँ जी श्रोताओं, तो एक बार पुनः से मैं हाजिर हूँ आप सभी के बीच में, और घड़ी की सुइयों ने इशारा कर दिया है कि 5:13 हो गए, यानी कि आज का दिन है गौधुली स्पेशल खेत खलियान वाला। जी हाँ, दिन है गुरुवार और मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त आर्या कांक्षा, और हमारे साथ में बतौर को होस्ट की भूमिका पे हैं आप सभी के प्यारे, यानी हम सभी के प्यारे मित्र इरफान शाह जी। कैसे इरफान जी?
4: सबसे पहले तो सभी को हमारा प्यार नमस्कार, और मैम आपको भी नमस्ते।
3: जी बहुत बहुत नमस्कार आपको भी। वैसे बरसात का सीजन चल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि बारिश में भीगना चाहिए या फिर नहीं भीगना चाहिए?
4: देखिए, बरसात में जब बरसात आती है तो कहीं ना कहीं ये मुसीबत भी अपने साथ में लाती है।
3: अच्छा।
4: बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो भी आने लगती हैं, बहुत सारे जो है इन्फेक्शन फंगल जो है वो भी बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम ही सब हैं बरसात के मौसम में
3: जी,
4: तो इसमें कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत लापरवाही किए तो इसमें हम बीमार पड़ जाएंगे या भीग गए तभी, मतलब तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो हो जाती है मतलब।
3: ओके, तो मतलब बारिश के मौसम में हमें भीगना चाहिए या नहीं, मैंने ये पूछा था तो इन्होंने कहा कि भाई फंगल की क्या नाम है समस्या हो सकती है, तो मैंने सीधा मैंने आपसे पूछा। तो भीगने के बाद आपको चाय पीना पसंद नहीं है क्या, या पकौड़ियाँ खाना नहीं पसंद है?
4: देखिए जब मौसम की बात होती है ठंड मौसम में तो चाय पकौड़ी तो बनती है।
3: तो बॉस भीगो ना फिर, तभी तो चाय पकौड़ी का असली वाला लुत्फ मिलेगा। कहाँ आप भीना, वही तो बात है, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों में बड़ी सारी खुशियां होती है, लेकिन इंसान क्या है, आगे का सोच करके आज की खुशियों को दरकिनार कर देता है। फिलहाल दोस्तों, आज हम जिस विषय को आपके साथ में साझा करने वाले हैं वो है बरसात के मौसम में पशुओं की देखभाल कैसे करेंगे। उसके लिए हमारे बीच में बतौर एक्सपर्ट हमारे डॉक्टर साहब मौजूद हैं, और डॉक्टर साहब का नाम क्या है बताएंगे इरफान जी?
4: जी बिल्कुल, आज हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राकेश कुमार तिवारी सर, जो कि उप मुख्य चिकित्सक अधिकारी राजकीय पशु चिकित्सालय सदर गोंडा में हैं।
3: जी हाँ, उप चिकित्सक अधिकारी सदर गोंडा से हमारे बीच में डॉक्टर साहब मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद
3: जी, एक बार ये हमारे बीच में पहले भी आ चुके हैं और इनसे बात करके काफी अच्छा लगा था, और कुछ तो ऐसी जानकारियां थी जो कि दैनिक जीवन में हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी थी। अक्सर हम देखते हैं कि सड़कों पर कुछ पशु जो है वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंटली चोटिल हो जाते हैं या फिर किसी कारणवश और भी हो जाते हैं, तो इन्होंने हमको नंबर भी साझा किया था पिछली दफा, हमें अभी भी याद है, और इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी सर ने दी थी हमें। तो आज भी हमारे बीच में सर उपस्थित हुए, अपने कीमती वक्त में से बहुत ही कीमती वक्त हमारे लिए निकाला है, तो सबसे पहले तो धन्यवाद, और आप सभी बधाई के पात्र हैं हमारे श्रोतागण जो हमें जहां से भी सुन रहे हैं। चलिए तो फिर आज के विषय की ओर रुख करते हैं, और सबसे पहले तो बस हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि सर जो बरसात का मौसम है इसमें सबसे ज्यादा जो हमें पशुओं को लेकर के सावधानी बरतनी चाहिए वो किस विषय को लेकर के है, मतलब उनके खान पान को है या उनके रहन सहन को लेकर के, या फिर वही सवाल जो मैंने इरफान जी से भी पूछा था कि मतलब हमें भीगना चाहिए या नहीं भीगना चाहिए?
5: नहीं नहीं, ध्यान रखकर ही मौसम में भीगे
3: जी,
5: तो क्योंकि मौसम अच्छा है, लेकिन अति किसी चीज की नुकसानदेह होती है। और चूंकि अपना ये तराई बेल्ट है जहाँ पर जो हमारा बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, टेम्परेचर तो रहता ही है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा रहती है, तो जिसके कारण से अनड्यू स्ट्रेस जो है वो चाहे मानव जीव हो या पशु हैं हमारे, उनके ऊपर पड़ता रहता है, बेचैनी महसूस होती है, तो उसके कारण से, और ये मौसम बहुत ही चूँकि हार्ट ह्यूमिड क्लाइमेट है, तो जितने भी बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं
3: जी,
5: बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, इनका प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब पशु स्ट्रेस में रहेगा उसकी इम्यून क्षमता घटेगी तो वो बीमारियाँ उसी पशु में आएंगी। तो भीगना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन अति बहुत सावधानी से, और रही बात कि पशुओं के किस तरह प्रबंधन किया जाए
3: जी,
5: तो उसको किसान भाई ध्यान रखें, क्योंकि ये पशु को रखने ज़्यादातर जो पशुओं की बात होती है, प्रोडक्शन हम तभी ले पाते हैं जब उनका प्रबंधन अच्छा करें।
3: बेशक।
5: तो प्रबंधन में सबसे पहले आता है उनका आवासीय प्रबंधन। तो आवास उनका कैसा होना चाहिए, इस बात का पशु पालक जितना ध्यान रखेंगे उतना ही वो पशु अच्छा दूध उत्पादन देगा, अच्छे कम स्ट्रेस में आएगा और बीमारियाँ कम होंगी। तो जहाँ तक इनकी आवास की बात है, आवास एकदम सूखा रहना चाहिए जो उसकी फर्श है, और हवादार होना चाहिए। अगर फर्श

0: दर्द भी होता है और हमें उसका दूध को निकालना भी पड़ता है, वरना फिर वो गांठ बन जाए।
1: जी जी, गांठ बन जाती है, थन भी खराब हो जाता है और दूध उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। तो अगर आप साफ सफाई रखेंगे तो बैक्टीरियल ग्रोथ कम होगी, तो और उससे जो थन उसका जो बैठने के कारण थन की जो कैनाल है, जो उसकी ओपनिंग है, वो कम एक्सपोज होगी, तो थनेला रोग भी संभावना कम होती रहती है। तो ये सब चीज़ें हैं कि अगर आवास की प्रबंधन अच्छा करेंगे आप तो तमाम बीमारियों से आप बचे रहेंगे।
0: जी,
1: दूसरी चीज़ ये है कि अगर आवास के साथ साथ हम पशु को आहार क्या देते हैं, इसमें चारों तरफ पानी लगा हुआ है, अच्छा मौसम है, अच्छे चारे के उत्पादन हो रहा है, लेकिन पशुपालक भाई ध्यान रखें कि कभी भी उसको जो चारा खिलाएं, हरा चारा, तो ऐसी जगह से ना खिलाएं जहां से वो सबमर्ज एरिया हो, पानी में डूबा हो, और हरे चारे को खिला लें, उसमें टॉक्सिन बनने की संभावना बढ़ जाती है, चाहे उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ की संभावना बढ़ जाती है। तो चारा अच्छी जगह से, सूखी जगह से रहे, जहाँ पर पानी, वाटर लॉगिंग एरिया ना रहे, ऐसी जगह से पशु को चारा दें। इस समय तो बहुत अच्छे अच्छे चारे अवेलेबल हैं, चाहे वो आपका ज्वार हो, बाजरा हो, नेपियर ग्रास इस समय काफ़ी प्रचलित हो रही है, तो नेपियर ग्रास दे सकते हैं, जिससे कि पशु को अच्छे सी अच्छा पोषण मिले और अच्छा उनका उत्पादन रहे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर चूंकि इन्वायरमेंट बहुत हॉट है इसमें, तो पसीना निकलता है उनका और हाँफते रहते हैं, तो उसमें उसके जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता रहता है।
0: जी,
1: तो इस मौसम में खासकर जो टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसमें आप मिनरल सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। साल्ट लिक आता है जो पशु चाटते रहते हैं, तो उसके उनके सोडियम और क्लोराइड और पोटेशियम वगैरह मिलता रहता है।
0: जी,
1: तो साल्ट लिक का यूज कर सकते हैं, नहीं साल्ट लिक अवेलेबल है तो घर का जो नमक है, आयोडाइज साल्ट है, उसको दे सकते हैं आप।
0: जी सर, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, कई दफ़ा मैंने देखा है कि मतलब जो बच्चे होते हैं, जैसे हमको लगता है कि इनके पेट में कीड़े हैं, इसलिए ये मतलब इतना मिट्टी की बजाय ईंटे तक खाने लगते हैं, नादे को ही अपने तोड़ने लगते हैं।
1: जी, जी, जी,
0: तो ये क्या कीड़ों की वजह से ही होता है या फिर उनके जीभ में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से, जैसे परतें मोटी हो जाती है उसको साफ करने के लिए वो ऐसा करते हैं?
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो बेसिकली कीड़ों के कारण ही होता है, लेकिन कीड़े जब पेट में होते हैं तो वो उसके जो पोषक तत्व हैं उसको खाने लगते हैं।
0: जी,
1: तो उसके कारण उसे जो पशु में कमी होती है उसका पूरा करने के लिए खासकर कैल्शियम और जो मैंने अभी बताया साल्ट के रूप में वो सोडियम और पोटेशियम, उसको करने के लिए वो दीवार को चाटेगा कि जिससे उसे कैल्शियम पूर्ति होती रहे, और चूंकि नमकीन कई जगह होता है तो वो नमक का पूर्ति करना चाहता है।
0: जी, जी।
1: कई पशु में एक वाइसेस डेवलप हो जाती है, कुछ अपना पेशाब भी पीने लगते हैं इस कारण से, क्योंकि वो साल्ट पूरा करना चाहते हैं। तो सबसे अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न था आपका कि इसमें कीड़ी की दवा, जो खासकर बरसात का जो मौसम है उसमें कीड़े की दवाएं वो देते रहें, कीड़े की दवाएं देते रहेंगे तो आधी बीमारियां उसकी कंट्रोल रहेंगी, पशु स्ट्रेस में नहीं आएगा, पोषक तत्व उसे अच्छे मिलेंगे, और जो कीड़ों के कारण जो टॉक्सिन बन रहे हैं वो पशु में नहीं जाएंगे।
0: पर यहाँ पे एक सावधानी और बरतनी चाहिए, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ तो मुझे पता है, कई दफा क्या होता है कि जैसे जब हाजमा ज्यादा गड़बड़ हो जाता है तो इंसान कहता है एक डोज की बजाय हम डबल डोज खा लेते हैं, हो सकता है इसे मतलब जल्दी रिकवर हो जाए, बट आप बिना डॉक्टर की समझ के आप अपने मन से डॉक्टर ना बने, क्योंकि सुधारने की बजाय हालत खराब हो सकती है।
1: जी जी, नहीं, उसकी एक डोज होती है, जो भी आप डिवर्मर यूज करते हैं उनकी एक डोज है, जो अपने पशु चिकित्सक से आप संपर्क करके उसका प्रयोग कर सकते हैं।
0: और श्रोताओं, आपसे कहना चाहूंगी कि भाई बरसात का मौसम आ गया है और टीकाकरण को लेकर के भी कहीं ना कहीं पशुओं की बहुत सारी बातें और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें और भी हैं। अगर आपके पास में भी कोई सवाल है इससे रिलेटेड, कोई भी पशु हो सकता है, आपकी बकरी हो सकती है, आपकी गाय हो सकती है, भैंस हो सकती है, या फिर मुर्गे भी हो सकते हैं, जिसके भी संबंध में आप सवाल रखना चाहते हैं, प्लीज कॉल करें 6393316429, आपके स्टूडियो का नंबर है 6393316429, या फिर आप चाहें तो चैट बॉक्स में भी अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ में काफी सारे श्रोतागण जुड़ चुके हैं, जिनमें सबसे पहला मैसेज हमें मिल गया है मुस्तफा जी का सऊदी अरेबिया से, और मोहम्मद रफीक जी हमें सुन रहे हैं राजस्थान से, और इसके अलावा भाई इरफान जी की आवाज बहुत स्लो आ रही है ऐसा कहा जा रहा है, और प्रमुख कुमार जी जुड़ गए हैं लुधियाना से, कमल लैन जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं चाय की कप्स के साथ में, वेरी वेरी थैंक यू फॉर दिस लवली वाली इवनिंग वाली लवली वाला चाय, और सबलू सावन जी हैं सांता क्रूज मुंबई से, गुड इवनिंग आरजे एंड लिसनर्स, ऐसा इनका मैसेज आया हुआ है। तो आप लोगों के पास भी अगर अपने जानवरों को लेके कोई सवाल है या कोई चिंता है तो उसका समाधान प्राप्त करें, नंबर डायल करें, फिर से बता देते हैं 6393316429। फिलहाल

0: हम वापस अपनी ओर आते तब तक हमारे पास में एक कॉलर जुड़ चुके हैं, देखते हैं इनका क्या सवाल है।
1: हेलो,
0: जी नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं प्लीज।
1: मेरा नाम है रोशनी रावत।
0: जी कहाँ से सुन रही हैं आप हमें रोशनी जी?
1: मेरा मैम पहली बार कॉल लगा हुआ है और मैं ग्रामो पोस्ट बमला तहसील सतीपुर जिला उन्नाव से और आपका प्रोग्राम अभी चंडीगढ़ से सुन रही हूँ।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी साथ में कि आपका आज कॉल पहली बार लगा है। कहिए रोशनी जी क्या सवाल है आपके?
1: मैम मेरा सवाल ये रहेगा कि पशुओं की देखभाल कैसे करें बरसात के मौसम में।
0: जी तो कौन सा पशु है आपके पास में?
1: हमारे पास बकरियां हैं मैम।
0: जी बकरियों को लेकर के क्या कोई खास प्रश्न है आपके पास?
1: जी मैम यही कि देखभाल उनकी कैसे करनी है इस मौसम में।
0: ओके जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, पीछे से और कॉल आ रही मैं लेना चाहूंगी, थैंक यू फॉर कॉलिंग।
1: जी मैम जी वेलकम।
0: कोई बात नहीं, लगातार कॉल आ रही है, देखते हैं नेक्स्ट कॉल हमारे साथ में कौन है। हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: जी नमस्कार, मेरा नाम अवधेश है, मैं मैजापुर गांव से बोल रहा हूँ, ब्लॉक हल्दरमऊ है।
0: जी जी अवधेश जी बहुत बहुत स्वागत है, हल्दरमऊ से आप सुन रहे हैं, क्या आपका सवाल है सर?
2: सवाल हमारा ये है कि हमारे पास भैंस है
0: जी,
2: तो अभी हमारी एक जो भैंस थी वो उसने सीमन ले लिया, तो 3 महीने तो हो गए उसको
0: जी,
2: तो हम जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से कि वो कैसे पता चलेगा कि प्रेग्नेंट है या नहीं है, पहला बच्चा है उसका।
0: ओके।
2: और हमारे यहाँ टीकाकरण नहीं होता है, बस अस्पताल जो हमारे यहाँ है वो बंद रहती है हमेशा।
0: ओके तो आप शिकायत तो, करना चाहते हैं या फिर आप निदान चाहते हैं, पहले हमें आप ये बताएं। नहीं,
2: खुरपका मुंहपका इन सब का टीका हम सुनते हैं कि टीकाकरण होता है बरसात से पहले, तो ये सब हो नहीं रहा है
0: जी,
2: और
0: जी।
2: दूसरा समाधान भी मिल जाए।
0: नहीं तो हमारे बगल में ही अधिकारी महोदय बैठे हुए हैं, क्या चाहते हैं आप, शिकायत दर्ज करा दें या फिर आपकी समाधान करा दें?
3: नहीं नहीं इनका समाधान होगा। आपको बताना चाहूंगा कि इस समय जो गलघोटू रोग का टीका है उसमें आ गया है, शुरुआत भी हो चुकी है आपके मैजापुर में, मैं जो संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी का क्षेत्र आता है, हालांकि मैजापुर में कोई परमानेंट पशु चिकित्सा अधिकारी पदस्थ नहीं है, लेकिन फिर भी जिसके चार्ज में है मैं उनको बोल दूंगा कि वो आपके यहाँ गाँव में टीकाकरण अवश्य कराएं। इस समय चल रहा है अभियान के रूप में और जो भी जाए आपके पशुपालन विभाग से अपने पशु में टीकाकरण आप कराएं, गलघोटू रोग का टीका आ गया है और अभियान के तहत चालू भी है।
0: जी अवधेश जी आपके सवाल का जवाब भी आपको देते हैं, पीछे से और कॉल आ रही है मैं लेना चाहूंगी, थैंक यू। हेलो, काफी देर से एक कोई लिसनर हमारे कॉल कर रहे हैं लेकिन इनकी कॉल ना जाने को। गुड इवनिंग भाई, आप अपना शुभ नाम बताएं, उससे पहले आप ये बताएं आप कितनी दफा से कॉल मिला रही हैं?
4: जी अभी मिला रहे थे 5 मिनट पहले से और आज हमने पहली बार कॉल मिलाई है मैम।
0: क्या बात है भाई, आज सभी पहली बार ही क्यों कॉल मिला रहे हैं, अपना शुभ नाम बताएं प्लीज।
4: जी हम गुलफ्ता सिद्दीकी बोल रहे हैं संडीला से।
0: जी गुलफ्शा जी?
4: जी जी गुलफ्शा सिद्दीकी।
0: जी गुलफ्शा जी आप कहाँ से बोल रही हैं?
4: जी संडीला से मैम।
0: ओके क्या आपका सवाल है गुलफ्शा जी, बधाई हो आपको आपकी कॉल लग गई है। क्या सवाल है रखे?
4: पहली बार लगी है, हमें अभी बताया गया तो हमने मिलाया तो मिल भी गया है।
0: जी जी कहिए क्या सवाल है?
4: जी हमारा सवाल यही है कि बकरी के जो पैर में खुरी जिसे बोलते हैं,
0: जी जी जी
4: वो जब बड़ी हो जाती है तो उन्हें मतलब घर में ही काटे या डॉक्टर से, मतलब कैसे क्या उन्हें चलने में बहुत दिक्कत होने लगती है बकरियों को?
0: जी जी
4: तो
0: जी जी जी उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, जरूर आप तक आपका आपके सवाल का जवाब जरूर जाएगा, आप वेट करिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।
4: जी मैम थैंक यू।
0: जी तो भाई हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में वैसे सवाल आ गए लेकिन लगातार कॉल आ रही है और जब भी आएगी तो हम उसको ज़रूर रिसीव करेंगे और उम्मीद है कि चैट बॉक्स में हमारे कुछ प्रश्न ज़रूर आएंगे। और हमारे साथ में नेहा जी भी जुड़ चुकी हैं बहराइच से। जी हाँ रोशनी रावत आ गई आगे। ओके प्रमुख जी ने इसका मतलब है आपको बताया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमुख जी, आपने किसी की समस्या को का निदान करने की कोशिश की है। चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो रोशनी जी का सवाल था कि बकरियों की देखभाल कैसे करें सर बरसात के मौसम में।
3: जी जी जी अभी कोई उन्नाव से जो बात कर रही थी
0: जी रोशनी जी थी,
3: तो उनके प्रश्न का ये है कि बरसात के मौसम में हर पशु के लिए आप थोड़ा सा टिपिकल मौसम है तो अभी उसके पहले भी मैं बता रहा था कि आहार प्रबंधन और आवास प्रबंधन बहुत जरूरी है
0: जी, लेकिन उससे पहले सवाल लेना जरूरी है।
3: जी जी जी
0: हेलो
5: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
0: वेरी गुड इवनिंग कमल नयन जी, कैसे हैं आप?
5: मैम अच्छे हैं
0: जी। आपका नाम आते ही सब मुस्कुराने क्यों लगते हैं, पहले ये बताइए।
5: अरे जो पीछे से नयन लग गया है ना, इसी कलर से।
0: ओह माय गॉड, चलिए बताइए क्या सवाल है आपका।
5: मैम सवाल ये है कि हमारे पास 6 जानवर हैं, मतलब जो 4 भैंस हैं और जो 2 मतलब पाड़ी हैं।
0: ठीक है, तो उसमें आप चाहते कि हम 4 उसमें गाय ऐड कर दें?
5: नहीं नहीं मैम, जानकारी ये लेना था डॉक्टर साहब से कि जो एक पाड़ी जो है बहुत दुबली पतली है, राहु जो है मतलब कोयर कम उठाती है, मतलब चारा कम उठाती है।
0: कितने दिन की है?
5: लगभग 2 साल की है।
0: ओके, और कोई समस्या?
5: और कोई नहीं, असल में यह है कि इसको कई लोगों ने बताया कि इसके कीड़े की दवा खिलाई है, कीड़े की दवा भी 2-3 बार खिला चुके हैं, फिर भी मतलब कोई असर नहीं दिखाई दे रहा उसने।
0: ओके, ये मतलब क्या हरकत करती है, कुछ मतलब मिट्टी खाती है, पत्थर खाती है, या फिर अपने दांतों को रगड़ती रहती है, या कुछ और ऐसी हरकत आपने उसकी नोटिस की है?
5: ऐसा कोई कुछ नहीं था, पहले जो बड़ी वाली थी वो पन्नी वगैरह खा लेती थी, लेकिन जो दूसरी वाली जो है तो कुछ नहीं खाती है, बस खाली पता नहीं क्यों मतलब चारा कम उठाती है।
0: ओके, आपको देख नहीं पाती है, मैं लगता है आप ज्यादातर घर से बाहर रहते हैं, मालिक को ना देखने की वजह से वो बीमार हो गई है। अब देखिए, हम लोग आपका नाम सुन के ही मुस्कुरा देते हैं। आप अपना नाम मुझे बताइएगा आज जाके कान में कि मेरा नाम कमल नयन है, तो वो भी मुस्कुराएगी।
5: पानी से?
0: हाँ जी।
5: नहीं नहीं, वो तो मेरा नाम जानती, जब भी मैं घर पहुँचता हूँ तुरंत आवाज करके बुलाती है, कमल नयन जी, मतलब हमको देखते तुरंत आवाज करती है।
0: मतलब हम सोचे थे हम ही शेर है, लेकिन आप तो सवा शेर निकले। कमल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका सवाल का जवाब आप तक पहुँचता है।
5: असल में बात ये मैम कि पहचानती है ना, जैसे कहीं से आते हैं तुरंत मतलब आवाज करती है।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पीछे से कॉल आ रही है, मैं लेना चाहूंगी। कमल जी बहुत हंसा लिया अब आपने, थोड़ा रुकते हैं। थैंक यू, ओके, टेक केयर सर। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की ओर। हेलो।
6: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं?
6: नमस्कार जी, बहुत बढ़िया है।
0: कहिए कैसे हैं आप, अपने पहले तो हमारे लिसनर्स को अपना नाम बताएं।
6: कुशल पाल दिवाई रैना रुपई जी सोनडा।
0: जी सर, क्या सवाल है?
6: सवाल हमारा दो है, पहला सवाल तो विशेषज्ञ महोदय से है,
0: पूछिए।
6: खास बरसात के महीने में एक रोग होता है लंपी वायरस, लंपी वायरस के बारे में सबसे पहले विशेषज्ञ महोदय से जानना चाहता हूँ कि उसका बचाव और उसका इलाज बताएं। पिछले साल हमारी गायों को हो गया था तो ठीक तो सब हो गई थी, लेकिन इलाज बहुत लंबा हुआ था।
0: वो उसका रोग भी तो काफी लंबा जाता है।
6: हाँ, तो उसके बचाव का तरीका श्रीमान जी से जानना चाहता हूँ। और दूसरा एक प्रश्न इरफान भाई से पूछ रहा हूँ
0: जी।
6: अभी इन्होंने पिछले दिनों अपने एक पोस्ट में लिखा था कि सर्रा रोग किस कारण से होता है
0: जी,
6: पशुओं में सर्रा रोग किस कारण से हो रहा है, शायद इरफान जी सुन रहे होगी मेरी आवाज को।
0: हाँ, उनको जुखाम हो जाता है तो उनकी नाक में कुचल रहता है, इसलिए वो सरसराती नहीं, ऐसा कुछ है इरफान जी?
3: नहीं,
6: अरे उनको इनको इनके इनके लिए नौसादर बनाया जा रहा है सुहाने के लिए। इरफान भाई यार, विशेषज्ञ से इस अपने प्रश्न का उत्तर पूछ लीजिएगा कि सर्रा रोग किस बीमारी किस मक्खी के काटने से होता है, क्योंकि पिछले दिनों आपने पोस्ट में इसको डाला था।
0: जी जी जरूर, आपके सवाल का जवाब जरूर आप तक पहुँचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
6: सबसे लेकिन लंपी वायरस के बारे में विशेषज्ञ महोदय से उसके बचाव के तरीकों को पूछा जाए।
0: जी जी, लंपी वायरस के बारे में सीरियस पूछेंगे, सर्रा रोग के बारे में सरसरा के पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी ये थे हमारे बीच में कुशल पाल जी, और वापस से आते हैं रोशनी जी के सवाल की ओर कि बकरियों की देखभाल कैसे करेंगे।
3: जी, तो जी। बकरियों की देखभाल के लिए वही आवासीय प्रबंधन रखें कि साफ और हवादार जगह पर रखें, क्योंकि बकरियां इतनी ज़्यादा होती हैं कि उनमें जो इन्वायरमेंटल जो भी अगर एक बकरी को भी बीमारी होगी तो वो सब में फैलने की संभावना बढ़ जाती है। तो हवादार उनको जो आवास में दें, जो बेडिंग साइड है, जो उनका नीचे फर्श है वो क्लीन रखें, टीकाकरण उसमें लगा कर रखें, क्योंकि बीमारियाँ जो बकरियों की बीमारी है उसमें पीपीआर रोग और इंटेरोटॉक्सिमिया की जो बीमारी है बहुत घातक बीमारी है, तो उसका टीका आता रहता है, सरकारी टीका उपलब्ध होता है समय समय पर, हर 6 महीने पर लगता है
0: जी।
3: तो अगर नहीं लगा है तो अपने निकट पशु चिकित्सालय से संपर्क कर लें, और अभी तो खैर इस समय नहीं आया है, आने वाला है
0: जी।
3: तो उसको जब जैसे टीका आता है वो उसको टीकाकरण कराएं दोनों बीमारियों का। इंट्रोटॉक्सिमिया तो अभी बीच बीच में आता रहता है, लेकिन पीपीआर का तो रेगुलर आता रहता है
0: जी।
3: तो ये दो बीमारियों का टीकाकरण कराएं। तीसरी चीज़ यह है कि उसको रेगुलर डिवर्मिंग कराएं, क्योंकि बकरियां जाती हैं चरने जाती हैं, ज्यादातर लोग चरा कर ही उसे पालते हैं
0: जी।
3: तो उसको रेगुलर डिवर्मिंग कराएं, कीड़े की दवा हमेशा देते रहें, तो इससे ज्यादातर इनकी बकरियां स्वस्थ रहेंगी। तो उनका मेरे ख्याल से इतने में जब आप संतुष्ट रही होंगी
0: जी जी,
3: अगर कोई स्पेसिफिक हो तो फिर से पूछ सकती हैं
0: जी जी। चैट बॉक्स में उन्होंने मेंशन किया है गुड इवनिंग और अभी कुछ लिख रही हैं, तो अगर कुछ होगा तो जरूर बताएंगी
3: जी जी जी।
0: इसी से संबंधित गुलफशा सिद्दीकी जी का हमारे सवाल था जो कि प्रमुख जी ने इनको भी जोड़ा है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख जी पुनः से आपको। और लिखा है प्रमुख भैया जी आप कैसे, ओके तो चलिए बढ़ते हैं। और गुलफशा जी का सवाल ये था कि बकरी की जो खुरी है वो बड़ी हो जाती है जिससे बकरियों को चलने में दिक्कत होती है, तो उसकी देखभाल कैसे करें
3: जी। जो बकरियों की जो खुरी होती है वो जब टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो उसका मतलब है कि उसमें मिनरल डिफिशिएंसी हो रही है, खासकर कैल्शियम की
0: जी।
3: तो बीच बीच में उन्हें मिनरल पाउडर देते रहें, और अगर बढ़ गई है खुरी तो पशु चिकित्सालय पर भी कट सकती है उसको, या उसके स्पेशलाइज लोग होते हैं तो वो काट देते हैं
0: जी।
3: उसको अपने भी अगर कोई उनके आस पड़ोस में काटने वाला हो, क्यों अगर नहीं काटेंगे तो लंगड़ा कर चलेगी, उसका पॉस्चर बिगड़ेगा और वो रेगुलर स्ट्रेस में रहेगी, तो और बीमारियों के लिए वो प्रोन होगी। तो बेटर है कि उसको कटवा लें जो भी उनकी खुरी बढ़ गई है, और हमेशा रेगुलर रूप से उसको कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देते रहें
0: जी। और मुस्तफ़ा जी लिखते हैं सर ऐसा भी होता है कि चलते चलते बकरियां कभी कभी लड़खड़ा के चलने लगती हैं, ऐसा क्यों होता है?
3: होता है, जब बकरियां कई बार चरने जाती हैं तो काफ़ी समस्याएं जो जब गर्मी बढ़ी है तो इसमें आई हैं कि बकरियां जो चरने चर के आई हैं वो लड़खड़ा के गिरती हैं, उसके बाद अधिकतर में कैजुअल्टी भी हो जाती है उनकी। तो जो उनका जो चरने गई हैं वो कई बार जो सूखी भूमि पर उनकी जो चारा है वो टॉक्सिक हो जाता है, तो उसको खाकर भी वो
0: चक्कर जैसा फील होता है।
3: फिर रही बात कि वो कई बार पेट फूल जाता है जो टॉक्सिक खाना खा के, और एक होता है सर्किलिंग मूवमेंट, वो बकरी हमेशा चक्कर काटती रहती है
0: जी।
3: तो वो दो बीमारियों का कारण होता है, एक गिड कहते हैं उसे, गिड मैंने उसके ब्रेन में जाकर जो पैरासाइट होते हैं जो वर्म होते हैं
0: जी जी।
3: उसके जगह जगह नोड्यूल बन जाते हैं
0: ओके।
3: तो उसके कारण होता है, तो उसमें डिवर्मिंग उसके लिए बहुत जरूरी होता है, तो गिड में भी सर्किलिंग होती रहती है, बकरी चक्कर काटने लगती है
0: ओके। तो भाई कीड़ों की दवाई जरूर से खिलाएं अपने जानवरों को ताकि वो स्वस्थ रहें। और कहीं ना कहीं अभी कमल जी का भी ऐसा ही कुछ सवाल था कि भैया 2 साल हो गए हैं इनकी पड़िया को, इनके पास 6 जानवर हैं, 4 इसमें से भैंस हैं, 2 पड़िए हैं, और दूसरी पड़िया जो है वो स्वस्थ है लेकिन जो छोटी वाली पड़िया है, बड़ी वाली पड़िया जो भी पड़िया है वो चारा नहीं उठा रही है। तो कीड़े की दवा भी इन्होंने काफी मात्रा में मतलब 4 बार दे चुके हैं लेकिन उसे कोई असर नहीं है और कुछ ऐसा दिखता भी नहीं है कि उसको कीड़ा हो। तो क्या कमी हो सकती है इनकी पड़िया में?
3: नहीं, कमी हो सकती है, बिना कमी के कोई ऐसा ना हो कि दुबली ही रहे
0: जी।
3: उसको अपने जो नजदीक के पशु चिकित्सा अधिकारी उसे दिखा लें कि क्या है, क्योंकि कीड़े में प्रथम जो समस्या है वो कीड़े की और लीवर की समस्या होती है जिसमें पशु चारा नहीं खाता है।
0: हो सकता है लीवर की हो क्योंकि इन्होंने कीड़े की दवा दे दी है।
3: तो पशुओं में जो होता है कई बार लीवर फ्लूक होता है, जो कीड़ा होता है, कई जगह कीड़े होते हैं उसमें लीवर का भी एक कीड़ा होता है जो बहुत ज्यादा घातक होता है, वो लीवर में ही अपना वो खून चूसता रहता है लीवर से, और जब लीवर इम्पेयर होता है तो भूख नहीं लगती है। तीसरी चीज इन्होंने बताया कि वो इनका कमजोर है, तो कुछ न कुछ इन्हीं कृमि के कारण जो कीड़े हैं पेट के, चाहे लीवर का कीड़ा हो
0: जी जी,
3: उसके कारण उसमें पोषक तत्वों की कमी होगी जिसके कारण से वो कमजोर होगा। तो सुझाव इनको ये है कि निकट पशु चिकित्सा अधिकारी जो भी हो एक बार उनको दिखा लें, खासकर पशु चिकित्सा अधिकारी जो हो, जो वहाँ के इंचार्ज हो उसको दिखाएं, क्योंकि मार्केट में तो ढेर सारे हमारे बंधु टहल रहे हैं, तो पशु चिकित्सा अधिकारी को दिखा लें
0: जी,
3: तो वो ज्यादा बेटर रहेगा इनको
0: जी,
3: कि उसका अच्छा से इलाज हो पाएगा
0: जी। तो सबसे पहले आपके लिए कमल जी बस इतना ही मतलब सुझाव दिया हमारे डॉक्टर साहब ने कि आप अपने निकटतम पशु चिकित्सक अधिकारी से इसके लिए कोई ना कोई सुझाव प्राप्त करें। वैसे तो आपने काफी सारे लोगों से सलाह सुझाव ले करके दवाई ववाई खिला ली है मुझे मालूम है, लेकिन एक दफा आप जाके अधिकारी से भी बात कर लें। और इन्होंने भाई लिख भी दिया है कि कमल नैन जी ने अपनी प्यारी से पड़िया का नाम नैना रखा है, नैन से नैना, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपनी पड़िया का नाम हमसे साझा किया, अच्छा लगा। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और अवधेश जी का जो हमें हलधर मऊ से सुन रहे हैं, सवाल था कि 3 महीने की प्रेग्नेंट है इनकी गाय और पहली दफा प्रेग्नेंट है, तो सीमन से चुकी हुआ है, तो मतलब प्रेग्नेंट हुई है या नहीं हुई इसका पता कैसे लगाएं, कंफर्मेशन कैसे हो?
3: देखिए कंफर्मेशन का मैनुअल कंफर्मेशन करते हैं कुछ एक्सपर्ट जो होते हैं हमारे विभाग में, जो जितने भी खासकर जितने भी स्टाफ हैं लगभग उसमें एक्सपर्ट होते हैं जो हाथ से चेक करके बताते हैं। बाकी हमारे पास कोई ऐसी किट नहीं है डेवलप हुई है जो फुल प्रूफ हो, कि अभी ट्रायल में एक दो किट हैं लेकिन फुल प्रूफ किट है नहीं कि जिससे कि 3 महीने की पड़िया को देखकर बताया जा सके। और ऐसा माना जाता है कि अगर वो पुनः हीट में नहीं आई है और 3 महीने तक नहीं है तो वो गर्भित हो सकती है। लेकिन उसको पल्पेशन के कारण ही, मैनुअल पल्पेशन से ही पता कर सकते हैं। किट हमारे पास अवेलेबल नहीं है और इतने बड़े पशु के लिए अल्ट्रासाउंड भी हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं।
0: लेकिन एक मतलब जो हमारे दादा परपाजा के टाइम से एक किट हमारे पास में जो उपलब्ध है वो है हमारे कान, जो हम कान लगा के सुनते हैं। क्या कितने महीने पे हलचल होना शुरू हो जाता है पशुओं के पेट में?
3: नहीं, चूंकि कान लगा के सुनने पर उसके ढेर सारे जो आर्गन है, बड़े बड़े आर्गन होते हैं, जैसे हमारे पास तो एक सिंगल पेट होता है, उसके पास तो 4 पेट होते हैं, 4 चैम्बर्ड उसके स्टमक होता है
0: जी, जिसमें वो बचा के रखते हैं अपने।
3: तो अगर कान लगाएंगे तो हमारा जो स्टेथोस्कोप है
0: जी वो काम नहीं करेगा।
3: जनरली हम लोग उसको, इतनी मोटी स्किन होती है, स्टेथोस्कोप से भी सुनने की कोशिश करते हैं
0: जी।
3: ज्यादा एक्सपर्टाइज अगर नहीं है तो उसमें भी सुनाई नहीं देता। तो ये कहना कि कितना वो कर लेंगे पशु है,
0: मतलब ये खुशी हम पहले से बांटने लगे कि भैया सुठोड़ा बनाओ, बच्चा होने वाला है, पता चले बच्चा है ही नहीं।
3: होता है, ऐसा होता है
0: जी जी,
3: फाल्स प्रेगनेंसी होती है पशुओं में
0: जी जी। तो भाई ये आपके लिए सुझाव था हमारे डॉक्टर साहब की ओर से। और टीकाकरण एक दफा पुनः से उस
3: टीकाकरण के लिए हमारे यहाँ गलघोटू का टीका आ गया है, अवेलेबल है, सारे संस्थाओं पर अवेलेबल है, हमारी टीमें निकल रही हैं। फिर भी अगर आपका गांव छूटा है तो आप एक बार अस्पताल से संपर्क कर लें, टीका अवश्य लगेगा।
0: सर अस्पताल बंद रहता है, वही इनका इनकी प्रॉब्लम।
3: अस्पताल इनके यहाँ पोस्टिंग नहीं है, मैजापुर की बात कर रहे हैं ना ये
0: जी जी।
3: तो मैजापुर में पोस्टिंग नहीं है, लेकिन ये है कि जो भी इंचार्ज होगा मेरे ख्याल से रामनगर तरह के डॉक्टर साहब के पास होगा, तो एक बार आप वहाँ पर जाकर या मेरे पास ही आ जाए सदर पशु चिकित्सालय पर, तो देखता हूँ कि कोई स्टाफ वहाँ जाकर टीकाकरण कर दे
0: जी। अगर आपके पास में, अगर आपके क्षेत्र में अगर कोई क्षेत्र अधिकारी उस वक्त नहीं मौजूद है तो आप सीधे सदर गुंडा आकर के संपर्क कर सकते हैं पशु चिकित्सालय से, ताकि आपकी समस्या का समाधान हो पाए। अब चलते हैं कुशल पाल तिवारी जी के सवाल की ओर। लंफी वायरस, उससे पहले सर्रा रोग क्या है?
3: जी जी, सर्रा रोग तो बहुत ही, ये भी एक घातक बीमारी है पशुओं की, जो खासकर प्रोटोजोअन के कारण होती है, ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ होता है उसके कारण होती है, जो ब्लड में अपना पाया जाता है पशुओं के, और ब्लड में जितना वो चलेगा उतना उसकी ब्लड सेल टूटती रहती हैं और पशु धीरे धीरे वो कमज़ोर होता चला जाता है। उसके और भी लक्षण है, टेम्परेचर वगैरह ज़्यादा होता है। तो यह एक प्रोटोजोअन बीमारी है जिसमें,
0: मतलब होता क्या है पशुओं कैसा बिहेव करते हैं
3: पशु, हाई राइज ऑफ टेम्परेचर होगा, खाना कम कर देगा, एडवांस जब स्टेज आएगी तो उसमें वो कमज़ोर काफ़ी फील करेगा, और धीरे धीरे जब उसकी ब्लड कम होने लगेगा, क्योंकि ब्लड सेल टूटती हैं इसमें,
0: ओके,
3: तो बाद में उसकी जो
0: तो मुझे लगता है जिस हिसाब से आप बता रहे हैं ब्लड सेल टूटती है, खाना छोड़ देते, तो बुखार भी रहता होगा?
3: बुखार, बुखार हाई राइज ऑफ टेम्परेचर होता है ना, उसमें 103-104 के करीब टेम्परेचर होता है। तो सर्रा रोग की पहचान कह देते हैं लोग, लेकिन पहचान कोई एक्सपर्ट पशु चिकित्सा अधिकारी कर देता है। दरअसल भ्रांति है कुछ फील्ड में घूमने वाले
0: जी जी,
3: कि 2 दिन में अगर ठीक नहीं हुआ तो 3रे दिन सर्रा कह के ट्रीटमेंट करने लगते हैं। तो ऐसा ना करें, एक बार दिखा लें उसको कि सर्रा है, इस पूरे फील्ड में है, एक वो डस कहते हैं ना उसको, टेबनस फ्लाई कहते हैं हम लोग, उसका साइंटिफिक नेम है। तो टेबनस फ्लाई के काटने से होता है उसको सर्रा रोग, और काफ़ी पशुओं में यहाँ प्रचलित है। तो इसको जब भी कभी बुखार हो पशु हाई राइज, उसका टेम्परेचर नहीं टूट रहा है
0: जी,
3: नीचे नहीं आ रहा है दवाओं करने के बाद, तो एक बार पशु चिकित्सक से संपर्क कर लें।
0: और अब आते हैं लंफी रोग।
3: लंपी रोग ये भी एक बहुत घातक बीमारी है, वायरल डिजीज है, जो पशुओं में काफ़ी पाई जाती है। आपने इसमें जो टेम्परेचर होता ही, आप चूंकि जिन्होंने पूछा था उस बीमारी को देख चुके हैं, बहुत परेशान भी रहे हैं
0: जी।
3: पशुओं जो भी गाय हैं उसके शरीर में इरप्शन होते हैं, जगह जगह नूडल दिखते हैं स्किन पे
0: जी,
3: गोल गोल से, तो उसे लंप से लंपी स्किन बीमारी कहा गया। बाद में वो बीमारी जब आगे बढ़ती है तो लंप फूटते हैं, उसमें मवाद निकलता है, फिर उसमें अगर मक्खियों ने अटैक किया तो कीड़े भी पड़ते हैं। टेम्परेचर थ्रू आउट रहता है जब तक वो ठीक नहीं होता,
0: हष्टपुष्ट जानवर सूख जाता है।
3: और हाँ, जब खाना छोड़ देगा तो सूखी जाएगा
0: जी।
3: तो इसमें बस यही है कि साफ सफाई का ध्यान रखें। इसको न होने के कारण पूछा उन्होंने कि न होने के लिए क्या करें, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। जैसा मैंने आवासीय प्रबंधन में पहले ही बताया कि सूखा इन्वायरमेंट रखें, हवादार इन्वायरमेंट रखें। इसका टीका आता है, सरकार द्वारा लगाया जाता है, निःशुल्क टीका लगाया जाता है लंपी स्किन बीमारी का।
0: किस महीने में लगवाना चाहिए?
3: वो आता है जब, जैसे ये ट्रेडिशनल वैक्सीनेशन नहीं है कि उसको हर 6 महीने पर लगाया जाए।
0: जी जी।
3: जब किसी एरिया का प्रकोप बढ़ता है तो ये बीमारी लगाया जाता है। जैसे पिछले साल लगाया गया था,
0: स्पेसिफिकली लगाया जाता है
3: कि जब कहीं एडजॉइनिंग एरिया में जैसे आ गया तो रिंग वैक्सीनेशन करके उसको रोका जाता है। रूटीन वैक्सीनेशन नहीं है।
0: जी जी।
3: तो पिछले साल भी लगा है, बहुत पशुओं में लगा है, हो सकता है इत्तेफाक से इनका छूट गया, कोई बात नहीं। अच्छा, ऑटो इम्यूनिटी भी देता है, अगर एक बार ये बीमारी हो गई और साथ वाले पशु में उसके साथ रहा हो, भले उसे बीमारी ना हो, तो ऑटो इम्यूनिटी भी ये दे सकता है।
0: ओके, तो काफी कहीं ना कहीं घातक और भयानक बीमारी है।
3: हाँ, ये काफी घातक बीमारी
0: जी। हमारे पास भी एक गाय थी जिसके, मतलब बछिया ही थी और मैं भी 1.5 साल की थी
3: जी,
0: और उसका नाम हमने कल्याणी रखा था। बहुत ही प्यारी, गोरी गोरी एकदम से थी और उसकी जाति भी बहुत प्यारी थी, देसी और कोई और ब्रीड उसके मतलब थी, और इसी बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई।
3: जी जी।
0: तो वो मुझे याद आ गई फिलहाल। हाँ, अब आगे बढ़ेंगे कुछ सवालों की ओर, ताकि हमारे इरफान जी की आवाज भी आप तक पहुंचे, वरना आप कहेंगे इरफान जी की आवाज नहीं आ रही है। उसे पहले स्वागत करना चाहेंगे सविता दुबे जी का, जो हमें सुन रही है हरखापुर से। इरफान जी, प्लीज अपने सवालों को रखें।
7: जी मैम, आपने तो काफी सवाल पूछा भी और अच्छा भी लगा। आप सर जानना चाहेंगे कि बरसात के मौसम में सर कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती हैं
3: जी? इरफान जी, बरसात के मौसम में पशुओं में जो सामान्य बीमारियां इसमें पाई जा रही हैं, वो पैरासिटिक बीमारियां तो ही हैं, क्योंकि पशु में घास उनकी भीगी हुई है, कीड़े वहां पनप रहे हैं, तो वो तो कामन बीमारियां हैं। गलघोंटू बीमारी काफ़ी प्रचलित है, इसीलिए इस समय इसका टीकाकरण कराया जाता है प्री मानसून पर। और दूसरा है कि फुट राट होता है, जो उसके खुर हैं वो सड़ जाते हैं, फुटराट बीमारी होती है। वो वहाँ पाया जाता है जहाँ एकदम दलदली ज़मीन हो, गीला हो, साफ़ सफाई की व्यवस्था ना हो। जैसा मैंने इसीलिए पहले कहा था कि एकदम सूखी जमीन पशु पालना चाहिए, फुटराट की समस्या होती है। थनैला रोग इसमें बहुत प्रचलित है, थनैला रोग भी इसमें काफ़ी दिखता है, क्योंकि पशु पालक भाई क्या करते हैं कि दूध निकालने के बाद पशु को छोड़ देते हैं, तो चूंकि दूध निकलता है तो उसमें कैल्शियम का क्षरण होता है, पशु अपने बैठने की कोशिश करता है तुरंत, तो उसकी टीट कैनाल जो होती है वो खुली रह जाती है। तो जब टीट कैनाल खुली रह जाती है तो पशु जैसे बैठता है तो जो नीचे का बैक्टीरिया है जो ज़मीन पर है वो सीधे सीधे थन में चला जाता है और थनैला रोग कर देता है। तो किसान भाई ध्यान रखें कि जब भी पशु को दूध निकालें तो उसके लिए थंब रूल एक है कि उसको कुछ खाने के लिए दे दें दूध निकालने के बाद, तो थोड़े समय के लिए 10-15 मिनट के लिए पशु अगर खाता रहेगा तो बैठेगा नहीं, तब तक वो टीट कैनाल बंद हो जाएगी और फिर पशु कहीं बैठेगा तो वो उसको ये जो नीचे से जाने वाली बीमारी पिकअप करने वाली समस्या है वो नहीं होगी। तो तीसरा ये है कि जो खासकर जो छोटे बच्चों में होता है, वाइट डायरिया कहते हैं जो कामन नवजात बच्चों में होता है, तो ई कोलाई बैक्टीरिया के कारण होता है, कोलीसेप्टिसीमिया उसे कहते हैं, वो काफ़ी प्रोन है, उसमें काफ मोर्टलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो नवजात बच्चे होते हैं उसमें काफ मोर्टलिटी हो जाती है इस बीमारी के कारण। तो उसको रोकने के लिए जो भी किसान भाई हैं, बच्चा पैदा होने के बाद उसको कोलोस्ट्रम जरूर दें, जो पहला दूध है उसको कोलोस्ट्रम दें। अधिकतर किसान भाई उसमें कंजूसी कर जाते हैं, नहीं देते हैं,
0: इंजड़ी बनाने लगते हैं ना
3: हाँ, तो उसको जरूर दें, शरीर भार का 10% देना चाहिए।
0: नहीं, कई जगह पे मतलब ये भ्रांति भी है कि ज्यादा पीने से कीड़े पड़ जाते हैं, तो ज्यादा मत दीजिए लेकिन कुछ तो दीजिए।
3: नहीं, शरीर भार का 10% तो देना चाहिए ना उसे, अगर आपका 30 किलो का बछड़ा है तो 3 किलो करीब कोलेस्ट्रॉल उसे पीना चाहिए, तो वो नहीं पिएगा तो दिक्कत है। तो आप कोलेस्ट्रॉल दीजिए, उसके बाद उसमें अगर कोलीसेप्टिसीमिया उसे हो गई है तो बिना देर किए हुए अपने निकट पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करके उसका इलाज कराएं, इसे वेट ना करें। दूसरे इसमें नेवल ईल होता है, जो उनकी नाभि होती है, जो नवजात बछड़े हैं उनकी नाभि में कीड़े पड़ जाते हैं, इन्फेक्शन सेटअप हो जाता है, जिसके कारण से भी ज़्यादा मृत्यु दर होती है नवजात बच्चों में।
7: तो जानना चाहेंगे सर, ये रोग की तो बात हो ही रही है
3: जी,
7: लेकिन अब इस पे रोकना चाहेंगे सर, एक लंपी रोग अभी सर अगली बार भी हुआ था और इसमें बहुत सारे जो मतलब हैं इसमें उस बीमारी से ग्रसित हो गए थे
3: जी।
7: हमने भी अपने आसपास भी देखा कि लंपी रोग और सर अक्सर क्योंकि बरसात में यानी अगस्त और सितंबर के बीच में ज्यादा हो
3: जी जी जी जी।
7: तो इससे बचने के लिए जो हमारे किसान भाई बहन हैं, जो पशुपालक जो हैं, तो वो कैसे बचाएं सर?
3: हाँ, अभी मैंने इस पर चर्चा किया था थोड़ी देर पहले कि लंपी स्किन बीमारी घातक बीमारी है, वायरल बीमारी है, और ये आपने सही समय बताया कि ये बरसात के और जाड़े के बीच में आती है, बरसात जैसे जी जी। कारण इसका है कि इस समय पशु स्ट्रेस फैक्टर से निकल रहा होता है, काफ़ी स्ट्रेस झेल चुका होता है ज़्यादा गर्मी और उसका ह्यूमिडिटी का, तो इसमें उसकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसको कूल इन्वायरमेंट में रखें, उसका भोजन सही रखें, उसको कंफर्ट फील कराएं, और जब भी इसका वैक्सीनेशन आए उसको वैक्सीनेशन करा के रखें।
7: कहने का मतलब है वैक्सीन जो है बहुत जरूरी है।
3: जी जी,
7: जैसे जिस तरीके से बच्चों को दिया जाता है नवजात बच्चों को कि समय समय पे टीका लगवाना बहुत जरूरी है, वैसे जो हमारे पशुपालक भाई बहन है वो जरूर टीका अक्सर आते हैं क्योंकि बरसात का मौसम है।
0: एक सवाल मैं भी रखना चाहूंगी, हमारे चैट बॉक्स में आया हुआ है सबलू सावन जी सांता क्रूज मुंबई से हमें सुन रहे हैं और लिखते हैं, सर भूख में सुधार लाने के लिए नींबू का रस पेट की समस्याओं को दूर करता है जिससे कि गाय की पाचन क्रिया दुरुस्त हो जाती, बहुत मदद मिलती है। जिन गायों को खाने में रुचि नहीं आती है उनकी भूख की क्षमता बढ़ जाती है, क्या ये सच है?
3: जी, नींबू देना दे सकते हैं, लेकिन ये कितना बढ़ाता है, क्योंकि उसका जो आहार नाल है वो डिफरेंट है, जो भी उसका स्टमक है, हमने अभी बताया था कि वो 4 चैम्बर स्टमक उसके पास है।
0: अच्छा, मेरे घर पे गाय थी जिसका नाम मैंने काली रखा था, पूरी तरह से काली थी, वो नींबू बहुत खाती थी।
3: जी जी, वो खा सकते हैं, पशु चूंकि उसको फल समझ के खा सकते हैं,
0: वो बहुत पसंद करती थी खट्टे चीजों को, एक नींबू और एक वो भी जो होता है वो क्या बोलते हैं उसको जो फल होता है कदम्ब,
3: जी जी
0: वो भी वो बहुत खाती थी।
3: लेकिन चूंकि इसमें जो डाइजेशन ही होता है वो पहले से सड़ने के साथ ही शुरू होता है।
0: ओके।
3: तो उसमें जो भी चीजें अगर हम देते हैं इस तरह विटामिन समझ के, विटामिन सी मिल जाएगा,
0: जी जी जी।
3: वो उसका सारी क्रिया शुरू होती है इंटेस्टाइन से,
0: उसके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो इंसानों का अलग है और जानवरों का अलग
3: जी
0: है।
3: जी जी।
0: तो उनकी क्षमता थोड़ी ज्यादा वाली है, तो आप कितना नींबू खिलाएंगे
3: जी, जी, जी,
0: जी। और साथ में लिखते हैं, गाय की गौमूत्र से स्नान करना एक पारंपरिक आयुर्वेदिक प्रथा है जिसके कई औषधीय और आध्यात्मिक लाभ है। त्वचा रोग से बचाव, शरीर की ऊर्जा में सुधार और संक्रमण को रोकने के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी सबलू जी कि कहीं ना कहीं कैंसर रोग के लिए गाय के पंचोपचारों से मतलब दवाई बन रही है, और इसके जो सबसे ज्यादा आज के जमाने में घातक है वो है मोबाइल फोन और उससे निकलने वाले रेडियो एक्टिव किरणें। तो भाई उस जहां भी गाय के गोमूत्र होते हैं वहां पे ये रेडियो एक्टिव किरणें काम नहीं करती हैं। तो सबसे बढ़िया बात तो यही है कि आप एक अच्छे जीवन का यापन करेंगे अगर आपके आसपास गाय है। आप मोबाइल की जो दिक्कत बोलते हैं ना लोग कि आप हार्ट के पास मत रखिए, यहां मत रखिए, वहां मत रखिए, अगर आपके घर में गाय है और गोमूत्र आपके इधर उधर कहीं से भी आ जा रहा है, उसकी मतलब गंध इधर उधर आ रही है, तो आप समझ लीजिए कि रेडियो एक्टिव तत्व से आप बचे हुए हैं। तो इसके लिए भी आप बधाई के पात्र होंगे और आपके जीवन की कल्पना अगर आप 10 साल करते हैं तो आप 2 साल बढ़ा सकते हैं, ये भी इससे फायदा होता है। इसके साथ में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं विजय पाल यादव ललहुआ लखीमपुर खीरी से और सभी का स्वागत और धन्यवाद कर रहे हैं एक्सपर्ट महोदय जी आपका भी, इरफान जी आपका भी
3: धन्यवाद।
7: जी सर, बरसात का सीजन चल रहा है तो बरसात के मौसम में पशुओं का आहार एवं चारा प्रबंधन कैसे करें ताकि जो वो पशु हैं वो स्वस्थ और उत्पादक मतलब जैसे उनका जो है अच्छा मिल सके किसान भाई बहनों को?
3: जी जी,
7: कभी कभी क्या होता है कि सर हम आके हरा चारा बहुत ज्यादा खिला देते हैं पशुओं को,
3: जी जी,
7: तो सर इस समय जैसे बरसात का सीजन चल रहा है तो उनका चारा जो प्रबंधन है वो कैसे किया जाए?
3: जी जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। पशु का आहार जो उसकी पूरी शरीर लाइफ का जो 80% जो है हिस्सा है वो शरीर में ये पोषण पर ही निर्भर है। आहार प्रबंधन के समय ध्यान रखते हैं कि हमारे पास अपनी अवेलेबिलिटी क्या है, कि हमारी अवेलेबिलिटी भूसा कितना है, हरा चारा कितना है। अगर इस मौसम में, चूँकि ये बरसात का मौसम है, किसान भाई के पास खेत है, हरे चारे की अवेलेबिलिटी अच्छी है तो अपना 60 और 40 के रेशियो में वो हरा चारा और भूसा दे सकते हैं। एक थंब रूल के हिसाब से अगर बताएं तो 10% भार का जो हम ड्राई मैटर यूज करते हैं, अगर मान लीजिए 40 किलो की 4 क्विंटल की गाय है तो 35 से 40 किलो के करीब वो अपना ड्राई मैटर यूज करेगी, उसमें से हम 60% अपने हरे चारे के रूप में यूज करते हैं और बाकी 40% भूसे रफेज के रूप में यूज करते हैं। उसको अगर हमारे पास हरा चारा है तो ध्यान रखें, हमने पहले भी बताया है कि सबमर्ज एरिया से वो हरा चारा हम नहीं काटें उसे। दूसरा, बहुत ज़्यादा हरा चारा अगर हमारे पास अवेलेबल है तो उसको थोड़ा सा सुखा लें और मॉइस्चर उसका कम करें, ठीक है। साथ में दाना भी दे सकते हैं और मिनरल पाउडर भी दे सकते हैं उसमें।
7: मतलब ये सारी चीजें हैं जो मतलब क्या नाम है खिलाते समय इन बातों का मैं जाना। अच्छा सर, अब आ गया कि सर जहाँ पे जो हम पशु जो है उसको जहाँ पे बांधते हैं
3: जी,
7: तो पशुशाला में नमी और कीचड़ जो गंदगी से सर बचाव के लिए सर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
3: जी, नमी को अपना कम करना चाहिए, जो अगर आपके कीचड़ वाला है जगह तो उसके जगह साफ करके नई रेत डाल सकते हैं या नई मिट्टी डाल सकते हैं और उस मिट्टी में चूने का छिड़काव, चूना बड़ा हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है, वो मॉइस्चर को सोख लेता है अपने में अंदर में,
0: उसी तो जानवरों के शरीर पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा?
3: नहीं, अगर हम कम मात्रा में यूज करते हैं और एक बार जब चूना बुझ जाता है, यानी बुझने का मतलब कि वो मॉइस्चर सोख लेता है, तब उतना नुकसान देख
0: हो जाता जी, है जी,
3: तो वो करके हम मॉइस्चर को कम कर सकते हैं जिससे कि वो खासकर फुट रॉट वाली बीमारी और बाकी और फंगल डिजीज के लिए तो हम उस पर अपना काबू पा सकते हैं
0: जी। अभी एक और सवाल हमारे प्रमुख जी की ओर से, मतलब वो सवाल नहीं है, उनका दुख है, आज सब लोगों ने सवाल पूछा हम ही नहीं पूछ पाए। कोई बात नहीं, आज आपने सभी से सवाल पूछवा लिया है इसलिए आज आपकी बारी, शायद आपने पूछना ही उचित नहीं समझा, बड़े दुखी मन से बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप जरूर रखिएगा अपना सवाल। अब चलने का वक्त हो गया दोस्तों, तो चलते चलते एक लास्ट सवाल सर से पूछेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी सवाल है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी, अगर कोई हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं हमें, और अगर किसी भी सुझाव या सलाह के लिए कोई अगर कॉलिंग नंबर हो, अगर कोई सरकारी नंबर है कुछ भी ऐसा जिससे उनको मदद हो पाए तो प्लीज़ आप बताएं।
3: नहीं, ऐसा अपने डिस्ट्रिक्ट में तो कोई सरकारी कॉलिंग सेंटर नहीं है
0: जी,
3: लेकिन अगर उनको कोई मदद चाहिए तो 1962 नंबर हमारी जो एम्बुलेंस सेवाएं हैं
0: जी जी,
3: अब सारी सेवाएं इमरजेंसी में हैं
0: जी,
3: तो वो उस पर कॉल करके अपनी समस्या के लिए, सामान्य नहीं जो विकट समस्या है, जैसे मान लीजिए कोई रोग है, असाध रोग है, चाहे एक्सीडेंट हुआ है, ऐसी समस्याओं के लिए आप उनको कॉल करेंगे तो वो आपके दरवाजे पर पहुंच के आपके पशु का इलाज करेंगे
0: जी।
3: सामान्य समस्याओं के लिए मैं यहाँ पर सदर पशु चिकित्सालय पर पदस्थ हूँ, आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं, आपकी सेवा के लिए तत्पर हूँ।
0: तो 1962 जो नंबर है वो आपके इमरजेंसी के लिए है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है तो इस पर आप कॉल करके अपनी जानवरों की सुरक्षा को पूरी तरह से प्रयासरत हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी समस्या है तो हमारे सर तो आपके बीच में है ही, तो आज आपका आना हुआ और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भाई लिख के भी भेजा है कि काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत उपयोगी लग रही है आज की वार्ता और एक्सपर्ट महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। और इरफान जी आपके लिए स्पेशली मैसेज आया, भाई फ़ोन माइक्रोफोन के करीब होके बोलिए, वैसे वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकल इशू है, वो तो हम अपने एडिटर साहब से अभी बात करते हैं उस पर। लेकिन आज का जो सेशन रहा बहुत ही प्यारा, बहुत ही उपयोगी रहा, उम्मीद है आप सभी के बहुत काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
3: जी बहुत बहुत धन्यवाद सबका।
0: और इरफान जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बिना आवाज के भी अपने सवाल आपने रख लिए।
7: सबसे पहले सभी किसान भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना कीमती समय वक्त निकालकर हमारे सर का आप लोगों ने प्रोग्राम सुना, और सुनते रहिए और हमको फीडबैक भी दीजिए कि आपको और क्या चाहिए, क्या बदलाव चाह रहे हैं, जरूर आप चैट में जाइए और बॉक्स में लिखिए
0: जी। अभी हम चलते हैं, एक हमारे पास में दो गाने आ गए भाई, जाते आते अब हमारा एक कहीं ना कहीं क्या बोलेंगे आदत हो गई है कि आप लोगों के लिए किसानी वाला हम सॉन्ग लेके आते हैं, तो ये लगातार दो सॉन्ग हमारे पास में आया हुआ है, एक है लवली जी की ओर से और एक है मुस्तफ़ा जी की ओर से जो सऊदी अरेबिया से सुनने हैं। तो अब इजाजत दीजिए, मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में गोधुली स्पेशल खेत खलियान के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और सुनते रहिएगा रेडियो 89.6 FM गुंडा शहर की धड़कन। नमस्कार श्रोताओं।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
0: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

कैमरा मैसेज मसाला वीडियो आर्टिस्ट सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सो दोस्तों आप लोग को ये सरप्राइज कैसा लगा मुझे चैट बॉक्स में जरूर मेंशन करके बताना और आज की इस संध्या को एकदम शुभ शुभ एकदम मंगल मंगल और एकदम खूबसूरत खूबसूरत करने के लिए आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल आप सभी के साथ में आ चुकी है और आई एम डैम श्योर कि आप सभी भी अपने जज्बातों के साथ में और अपनी शाम के मौसम के रंगीन निजालों के साथ में तैयार होंगे। तो क्यों ना चले हमारे गोंडा मैसेज मसाला के शो की तरफ और इंजॉय करते हैं एक दूसरे की चटपटी बातों को जज्बातों को और

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

0: सो। राम राम गोंडा, का हाल चाल बा, सब ठीक ठाक। स्वागत बा आप सबके अपन पसंदीदा शो गोंडा मैसेज मसाला मा, और हम हैं आपके अपन आरजे सिंपल। और आज बा गुरुवार मींस थर्सडे, तो थर्सडे के शाम में एकदम बवाल मचावे के पूरा का पूरा सवाल बा ईसा बा और आप लोग के साथ के जरूरत बा दोस्तों। सो आज के शाम का एकदम से खास बनावे खातिर आज आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल आज आप सभी के साथ में उपस्थित हैं। और कैसन हो, का हाल चाल हवे आप सबके, जरूर हमके बताई। आज हमनी के जम के भोजपुरी और अवधि के तड़का लगावल वाले हैं, तो का हो तैयार बनी आप सब। सो गला साफ कर ली और कान खड़ा कर ली, काहे कि आज के शो एकदम बवाल होखे वाला बा। सो का आप सभी तैयार हैं? वेरी वेरी गुड इवनिंग इन योर शो। मुकेश यादव गोंडा से, कमल नयन सबलू सावंत मुंबई से आपके भी स्वागत करत बनी आपके आज सिंपल नॉट सो सिंपल। वैसे भी हमके तो उतना भोजपुरी नहीं खे आवत, लेकिन हम थोड़ा बहुत अवधि और भोजपुरी मिक्स करके आप सके एंटरटेनमेंट करे पूरे के पूरी कोशिश करत आनी। अगर कहूँ हम गलत हुई तो आप लोग हमके चैट बॉक्स में लिख के बता सकत हैं। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। प्रमुख कुमार लुधियाना से आपके भी स्वागत बा। विजयपाल यादव जी ललुआ लखीमपुर खीरी से आपके भी वेलकम बा। रोशनी रावत स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो। सो भैया आजकल भोजपुरी सिनेमा में तो गर्दा उड़ल बा, का हम सही कहता नहीं ना? हमारे पावर स्टार पवन सिंह के नया गाना आयल बा और जेकर व्यूज देख के सबके सब दंग हो गए हैं। और वैसे भी हमार जे पवन सिंह पावर स्टार हैं, इनके तो एक से एक गाना निकलत है और एक से एक गाना सबके सब गाना के व्यूज इतना जाते हैं कि सबके सब देख के दंग रह जाते हैं। और खेसारी लाल यादव, ये बंदा जब भी आवेला तो स्क्रीन पे आग लगा देला दोस्तों। और खबर बा कि खेसारी भैया बेगो और नईखे फिल्म के तैयारी करत बानी, जेकर नाम भी गुप्त रखल बा। सो का आप सबके तनिको आइडिया बा कि का नाम हो सकेला? और का हाल चाल बा हम आम्रपाली दुबे के और निरहुआ के जोड़ी का, तो अभी भी सबके दिल पे राज करत बानी। सो आप सब लोग बतावा कि आप सबके फेवरेट स्टार के का नाम बा, आप सबके भोजपुरी फेवरेट स्टार के का नाम बा। और स्वागत बा आपके आशु मिश्रा जी लखनऊ से। पता नहीं काहे हमके बहुत शर्म आवत है कि आई डोंट नो कि हम बहुत थोड़ा सा हिंदी भी मिक्स करतानी, थोड़ा सा अवधी भी मिक्स करतानी, थोड़ा सा भोजपुरी भी मिक्स करतानी और थोड़ा सा इंग्लिश भी मिक्स करतानी, तो हम पूरा के पूरा खिचड़ी बनौले बानी। तो जोन कुछ भी हमरे मुँह से निकलत बा, हमार मुखार बिंदु से निकलत बा ना, ओके सुन के प्लीज़ बुरा ना मानी और सिर्फ एंटरटेनमेंट के एक हिस्सा समझ के थोड़ा सा खुश हो जाइए, थोड़ा सा हंस ली, थोड़ा सा मुस्कुरा ली। और तो का कहीं, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। के गुप्ता तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से आपके भी भोजपुरी अंदाज में आपके आरजे सिंपल दिलवा से स्वागत करत हई। तो कैसन बाड़ो आप सब, हमके चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताइया। सबलू सावंत के कहना बा कि रात भर याद में आंसू बहत रहल। अच्छा, रात भर आँख से याद में आंसू बहत रहल और नींद से आँख हमेशा दूर रहल, हम चाहनी जिंदगी भर साथ उनका। अच्छा जी, हम चाहनी जिंदगी भर साथ उनका। हम चाहनी जिंदगी भर साथ उनका, बाकी वो आधा रास्ता माँ छोड़ गई नहीं। अरे तो दुख वाला रहल हो, हमके तो पता ही नहीं खेल, हम तो बड़ा खुशी से पढ़त आने के आपके छोड़ गई नहीं, कैसन लागत हुए हो जरूर हमके चैट बॉक्स में बताइए। और कोई बात नहीं ना, मूव ऑन करा, ये तो प्रकृति के बदलाव ही तो प्रकृति के नियम हवे, काहे ना आशु मिश्रा जी हम सही कहता नहीं ना। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। और चलते हैं हम लोग के शो के तरफ। सो आप सबके फेवरेट भोजपुरी स्टार कौन है, आप सबके फेवरेट भोजपुरी जोड़ी कौन है, आप सबके फेवरेट गाना कौन है, लहरिया लुटाए राजा या फिर लॉलीपॉप लागेलू या फिर कौन से गाने हैं? हाँ, पियर फराक वाली, या फिर बहुत सारे गाने हैं, इतने गाने हैं, इतना गाना है कि हम याद करत रह जा उंगली पर, लेकिन सब कुछ फीका पड़े, कम पड़े, काहे कि इतना सुपर डुपर हिट गाना है भोजपुरी में। हम तो भोजपुरी गाना के सुपर डुपर हिट है नहीं, जब तक हम यहाँ यूपी में रहनी तब तक तो हमके भोजपुरी नहीं के पसंद रहा। हम छोटी सी रहनी ना, तो वैसे भी घर वाले उतना भोजपुरी में इन्वॉल्व ना हुए देते हैं, कहीं कि इंग्लिश का गाना सुन लो, हिंदी सुन लो, लेकिन ये सब ना ही ना। तो फिर जब हम मैं दिल्ली गई, वहाँ पे जब भोजपुरी के क्रेज हमके वहाँ से उठल, और फिर उसके बाद में आज हमारे प्ले लिस्ट में अगर सबसे ज़्यादा गाना कोनो हुई तो वो भोजपुरी के ही हुई। वो तो थोर बहुत मम्मी पापा के सामने तनी भर शर्म आवत ही सुने में, और तो अगर हेडफोन लगाई ली ना तो हमार प्ले लिस्ट तो भोजपुरी कलामा कोनो हुई नहीं सकते। सो आप लोग के का अपन पर्सनल ओपिनियन है जरूर बतावा जी। और आज तो हम भोजपुरी के बारे में बहुत सारा बात कह सकता नहीं, काहे कि आज थर्सडे स्पेशल, ऊपर से गोंडा मैसेज मसाला, और गोंडा मैसेज मसाला में अगर थर्सडे स्पेशल में हम भोजपुरी के बारे में बात ना करी तो ऐसा लगे कि आ हाँ। आशु मिश्रा जी के कहना है कि अखिया अखिया मत तो उसे एतबार करवा। हाँ अच्छा अखिया अखिया माँ तोसे एतबार करब, तोरे संग में पोखरा वोखरा पार करब। ओ माय गॉड, खात बानी तोहर क्रिया है राजा। आय हाय काय को खात बानी तोहर क्रिया है राजा, हम तो बस तोहरा से ही प्यार करब। सो ई लिखल बा आशु मिश्रा जी के लखनऊ से, चैट बॉक्स में उनका ई पेशकश रहल, बहुत खूबसूरत रहल, बहुत मज़ेदार रहल। आप सब भी आपन भोजपुरी पेशकश यहाँ भेज सकत हो, आपन भोजपुरी फेवरेट सिंगर के पसंदीदा नगमा गाना भी भेज सकत हो। हम सब मिलके आज सुपर डुपर डुपर डुपर हिट गाना सुना जाइए, भोजपुरी का इंजॉय करा जाइए। फिलहाल आप बताओ जे आप सबका कौन वाला गाना सुने के हम, मतलब आज हर एक गाना बजेगा, हर एक गाना बजेगा। फिलहाल हम आज चलते हैं, एंजॉय करते हैं ये ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट भोजपुरी का नगमा लॉलीपॉप लागेलू। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर हिट नगमा, और मिला जाए ये सुपर डुपर हिट नगमा के छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद ना। और जितना भी भोजपुरी जज्बात फीलिंग जो उन भी आप कैद कह के रखे हो ना, सब निकालो भाई, सब निकालो, काहे कि महफिल दोबारा ना मिले वाला आपके आरजे सिंपल गोंडा मैसेज मसाला में नहीं के मिले वाली। ये कब्बो कब्बो सुनहरा अवसर आवेला, कब्बो कब्बो ये खास मौका आवेला, तो दिल खोल के भोजपुरी ही भोजपुरी दिल को कर लो, दिमाग का कह लो, अपने आप का कह लो, रग रग मस्से पोसे भोजपुरी बसाए लो। सो एंजॉय करा जाए सुपर डुपर हिट नगमा, मिला जाए छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में। और आप सब लोग डेफिनेटली सुना तारा गोंडा मैसेज मसाला, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर के धड़कन का सुपर डुपर हिट शो, शाम का शो। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर हिट नगमा। कमरिया करे लॉलीपॉप लॉलीपॉप लागेलू, ओ माय गॉड।
1: चर्चा बा, रास्ता चला तड़ू ता देसी पाउडर उड़ता।
0: ओ रियली,
2: अभी कहाँ देखला?
0: अब देखा,
2: शुरुआत है, आगे आगे देखा
0: होता था का।
1: बात ता तू ठीके कहा तड़ू, तुहार है डिजाइन देख के मन करता कि चापा कल में कूद के जान दे दी।
2: ता दे दा।
0: Oh my God, stay tuned from the floor, everyone. I love this song.

0: कुछ भी बोलते हो, है ना?
1: हाँ, कमरिया कोरे लॉपा लॉप लॉली पॉप लागे लू। ओ माय गॉड, हम सब इंजॉय करनी सुपर डुपर हिट नगमा। वाह वाह, का बात बा, ये गाना सुन के ता हमार खुद के मन करत बा कि स्टूडियो से बाहर निकल के अपन गोंडा के रोवा सब श्रोता लोग के साथे ठुमका लगावे लागी। का हाल बा, मन गदगद भइल कि ना? ये गाना सुन के रोवा लोगन के जरूर हमके चैट बॉक्स में लिख के बताई, कहे कि आप सबके कमेंट के, आप सबके रिव्यू के, आपके आज सिंपल का बहुत जरूरत रहा था। सताई रहल एगो ब्लॉकबस्टर तड़का, अब जरा बात करल जा अगर ये तड़का के बारे में, तो हम सिर्फ एगो चीज कहा तानी दोस्तों कि जहिया भी भोजपुरी संगीत के इतिहास लिखल जाए, जहिया भी भोजपुरी संगीत के इतिहास लिखल जाए तहिया एक नाम सबसे ऊपर रही, लॉलीपॉप लागे लू। का बताई ये गाना हाँ कि जादू है? जब पवन सिंह भैया के ये गाना बजेला तब का बच्चा का बूढ़ा सबके गोड़ अपने आप थिरके लागेला। ये गाना सिर्फ यूपी बिहार ना बल्कि पूरा दुनिया में भोजपुरी के झंडा गाड़ दे ले बा। आज भी आप कहीं भी चली जाए, चाहे दिल्ली हो के, मुंबई हो के, या फिर विदेश में भी, डीजे पे जब तक लॉलीपॉप ना बाजी तब तक महफिल जमेला कहाँ। पवन सिंह के आवाज में इसन कशिश बाई तो हम मानब दोस्तों, दोनों हाथ उठाए के अपन ये चीज हम एक्सेप्ट करे खतिन तैयार बानी कि पवन सिंह के आवाज में सही में इसन एक कशिश बा कि आज के आज से लेके बरसों अतना बीत गई लेकिन अतना फ्रेश, अतना बढ़िया, अतना खूबसूरत आवाज केहू के ना रहे। इनकर तो गाना सुने के बाद में सच में ऐसे लागत है कि शरीर मां से एकदम बिजली दौड़ गई बा, काहे सही कहता नहीं कि ना। सो आप सबके पवन सिंह के कौन गाना बहुत बढ़िया लागेला हमके चैट बॉक्स में जरूर लिख के बताई। और सबलु सामंत के कहना है कि प्यार में हार के हम चुप हो गई नी, प्यार में हार के हम चुप हो गई नी, दिल के बात अब कहे से डर गई नी, जिनका पर सबसे ज्यादा भरोसा रहल, जिनका पर सबसे ज्यादा भरोसा रहल उही हमरी नजरी से दूर चल गईली। सो ये कहना है सबलू सावंत जी के। और देखो मुकेश तो खूब ठुमका लगाई नहीं, और वेलकम है आपके अपने शो माँ लवली सिंह गोंडा से। और इनके कहना है कि सिंपल जी कैसन बानी, हमहू चलें गंगा जबरवा में भोजपुरी गाना सुने के लिए, इल बाती हमके कुछ नहीं के समझ में आवल, आपने क्या लिखा है? आप चाहे तो आप हिंदी में लिख सकत थी, हिंदी में भोजपुरी लिखी है तो हमके समझ में आई, अब आप इंग्लिश में भोजपुरी लिखी है तो हमके कहाँ से समझ में आई। हम वैसे भी भोजपुरी में बहुत थोड़ी थोड़ी खट्टी मीठी छोटी मोटी सी ऐसे नटखट सी हैं, थोर बहुत ऐसे बस मूड फ्रेश करे खातिर आप लोगन के हम एकदम जुबली जुबली बना लानी, वो तो हम जाना तानी अंदर का रेजा में का होता ला हमरे। सो इंजॉय करा तानी अगला गाना। सो दोस्तों अगर आप पवन सिंह के बात हो गई है, इतना ज्यादा हम सब पवन सिंह के अगर जय जयकार लगा लेनी है तो काहे ना एक ठू और सुपर डुपर हिट पवन सिंह के गाना के एंजॉय कर लिया जाए। सो एंजॉय करा जाए एक ठू बहुत ही खूबसूरत सा गाना, तोरा राजा जी के दिलवा टूट जाए। राजा जी के दिलवा टूटे इता राजा जी के दिखाई देता, लेकिन रानी जी के दिलवा टूटे एके बारे में का, एके बारे में तो कोई ना सोचेला, राजा जी के भी सिर्फ अपने दिलवा के बारे में दिखाला, काहे सही कहता नहीं ना रानी लोग। हमके चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताइया, स्टे ट्यून एंजॉय करता नहीं ये गाना। लेकिन एके पहले आशु मिश्रा जी ने लिखा है कि कुछ फासला खाली आंख से होला, बाकी दिल का फासला खाली बात से होला, कुछ फासला खाली आंख से होला, बाकी दिल का फासला खाली बात से होला, केहू लाख बोले के कोशिश करे, केहू लाख भूले के कोशिश करे, बाकी कुछ रिश्ता खत्म खाली सांस से होला। आई हाय लव यू आशु जी, तोहरा राज।

आप सुनतानी रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन का बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा सेगमेंट गोंडा मैसेज मसाला आपके अपना आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

सो वाह, अब राजा जी के दिलवा टूट गई बा। तो मामला एकदम से इमोशनल मसाला हो गई बा। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वंस अगेन वेलकम इन योर शो गोंडा मैसेज मसाला विद योर जस्ट सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल। ये राजा जी के का भइल, ई का सुनत बानी हम। अभी तक तो महफिल में ठुमका लगल रहे और अब का भइल कि दिल टूट गइल। हमार गोंडा के रउआ सब श्रोता भाई बहन ध्यान दा, अभी जो गाना बजल उ तब बहुत लोग के दिल के तार छेड़ देले बा। काहे कि प्यार में धोखा खाना था भोजपुरी गानन के सॉन्ग ऑफ द ईयर होखेला। काहे सही कहता नहीं ना। का लागेला रउआ लोगन के कि प्यार में दिल टूटल फूटल बिना भोजपुरी अधूरा बा कि ना बा। अगर आपके दिल टूटल बा, अब हमके तो ये ना पता, कुछ लोगन के तो भोजपुरी में दिल टूटल, हाँ दिल टूटल गाना से हमके एक गाना याद आवेला, जाए चंदा ले आवा खबरिया कैसन बाड़ी मोर जान हो, है ना। बहुत सैड गाना बा ये भोजपुरी के। और अगर कोई अपने चंदा के याद करत हवे और ये गाना ना सुने तो सच में ओकर दिल तो असली में टूटले नहीं खेबा। काहे सही कहता नहीं ना दोस्त लोग हम। सो आजकल के भोजपुरी सिनेमा में जब भी हीरो ऐसे गाना वाना गाए के ऐसे ऐसे हीरोइन के इम्प्रेस करा चाहे तो हमके तो बड़ा हंसी आवे। आप लोग उनका का लागे, आप लोग हमका चैट बॉक्स में ज़रूर बताओ। कहे कि हमें पता नहीं, कहे भोजपुरी मूवी में पता नहीं, कहे हमका वो जब एक्शन होते ना तो वाला मज़ा ना आया होता। कहे कि हमें भोजपुरी में बहुत ज़्यादा कॉमेडी जॉनर कही है, कहे भोजपुरी का एकदम गाना वाना हमें बहुत पसंद है। हम तो मूवी देखे में इंटरेस्ट नहीं रखे थे, गाना एक को नहीं छोड़ी थे लेकिन मूवी बिल्कुल भी नहीं देखी थे। आप लोग अगर भोजपुरी के कोनो मूवी देखा जाते तो हमें चैट बॉक्स में शेयर कर सका जाता है। वो चैट बॉक्स से वो मूवी हम कॉपी करबे, कॉपी करे के बाद में चुप्पे हेडफोन लगा के अपने घर में ज़रूर देखबे कि भोजपुरी पिक्चर आखिर मज़ेदार होला कि ना होला। और अगर हमार अगर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो मैं ज़रूर भोजपुरी पिक्चर भी ज़रूर देखूंगी। सो चलिए एंजॉय करा जाए एक और पवन सिंह के सुपर डुपर हिट नगमा। ये सुपर डुपर हिट नगमा के बाद में हम लोग एंजॉय करा जाए आशु मिश्रा जी के भेजल गाना जब से नैना लड़ल। सो एंजॉय करा जाए ये नगमा। ओके बाद में हम लोग एंजॉय करा जाए मुकेश जी के भेजल गाना। काहे कि सबके पसंदीदा गाना तो बजे चाहिए, हफ्ता में एक बार तो मौका मिलत ही रेडियो ये 9.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर भोजपुरी गाना सुने को वो भी छोड़ा जाए इसे नहीं मिल सकते ना। तो सबके पसंदीदा गीत का सुना जाए, पहले इंजॉय करा जाता ही वाला नगमा। ये नगमा कत्तिन कतना बवाल भइल रहल ना, याद आवा कुछ। याद आवा, याद आयल कुछ।

0: जान मरेला। हम ई बचपन में गाना सुन ले रानी और ई गाना हमके बहुत बढ़िया लागेला। दोस्तों ई गाना सुन के हम बड़ी बहनी है तो सोच सकता रहा कि कितना कितना कितना मजा आवा हुई हमके ये गाना सुन के। सो ये गाना बहुत ही खूबसूरत रहा। और एक बार फिर से स्वागत बा आप सबके रोवा लोगन के, आप सबके अपने शो पर, आपके गोंडा मैसेज मसाला माँ, आपके अपने आरजी सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ माँ। और दोस्तों आप सुना तानी रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर के धड़कन। तब भाई लोग सानिया मिर्जा के नथुनिया ये गाना सुने के बाद माँ तो जेके पारा ना चढ़ल रहा होए, ते के भी भोजपुरी के क्रेज जाग गए होए और ते भी चैट बॉक्स में आ गए होए कि हमके भी अपने मन के गाना सुने के बा, हमके भी अपन भोजपुरी के पसंदीदा नगमा सुने के बा। यू नगमा बा कि जौने के नाम लेते ही पूरा यूपी बिहार में एकदम गर्दा उड़ेला। दोस्तों ये गाना एकदम ऐसे लागत है ना कि इमा खाली शब्द नहीं के हैं, इमा ऐसे लागत पर कूट कूट के पवन सिंह एटीट्यूड बोल रहे हैं। और एटीट्यूड ये ऐसा शब्द भाई, खाली शब्द ना भाई, ये यूपी बिहार के तो रग रग में बसल बा। काहे हम सही कहा था नहीं ना यूपी बिहार वाले कि हमरे सबके पास और कुछ होखेला चाहे ना होखेला, लेकिन हमने सबके पास में एटीट्यूड तो भर भर के होखेला और एकर जरूरत भी बा। काहे भाई भीगी बिल्ली भीगा गीदड़ बन के थोड़ी रहे के बा, जोने के दम बा वो कहे के बा कि हाँ हम ही कह सकनी। ता आपन बगल वाली के हाथ पकड़ा और उसके बाद में चला एटीट्यूड वाला गाना गाते हुए भौकाल से रोड पे एकदम गर्दा उड़ावा। का कहा तानी हो, सही कहा तानी ना। सो का कहा तानी, अगला गाना केकर बजाई बहुत हो गई नी ना पवन सिंह। कमल नयन जी के एक ठू गाना सुने के बा कि ऊपर वाली के चक्कर में लड़का बहुत पिटाइल बा, लड़की के ऊ पहला प्रेमी पुलिस लेके आइल बा, जाके बाजार में लड़की के प्यार में, ऐसा ही कुछ गाना है। ये गाना भी हम बचपन में सुन ले हैं तो चला ये सुपर डुपर हिट नगमा, हम सब एंजॉय करा जाए भोजपुरी के मन गदगद कई दिले वाला, खुश कई दिले वाला नगमा कमल नयन के फरमाइश पर। लेकिन ओके पहले हाँ ये फरमाइश ई गोंडा मैसेज मसाला के थर्सडे स्पेशल प्रोग्राम में इट्स कुमार एमपी रीवा से आवा तानी, तो इनके तहे दिल से वेलकम करा तानी हम। और इनका कहना है कि आज ई कैसन आए गई, जैसन आप आए गए ना गोड़े गोड़े ऐसे हम आए गए पैया पैया ठुमकत ठुमकत मटकत मटकत। तो आपन भोजपुरी के एकदम सुपर डुपर हिट प्लेलिस्ट लेके आप सबके बीच में हम आ गई नहीं है और आप सबके शाम का बनेबे बहुत ही प्यारा, बहुत ही खुश मिजाज और बहुत ही रंगीन। तो का आप सब तैयार हैं? सो चला इंजॉय करा जाए अगली फरमाइश हम सबके पास में है कमल नयन के। और एक भोजपुरी गाना के फरमाइश कमल नयन की ही नहीं मनोज तिवारी की आवाज में, तो मन गदगद करके पटाख से लौटा जाइए। आप सुनता नहीं रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन का गोंडा मैसेज मसाला थर्सडे स्पेशल भोजपुरी स्पेशल सेगमेंट आपकी अपनी आज सिंपल नॉट से सिंपल के साथ में। पुलिस लेके आई
1: पुलिस लेके आयल बा ऊपर वाली के चक्कर में।

भागल लड़का गांव छोड़ के भैया के ससुरारी लौट गई पुलिस जल्दी हाजिर होके कह के राख दिलस पुलिस थाना घर के इज्जत मह के बाबूजी के आंख के तारा घर छोड़ पर आइल बा कैसे अपन सांच बतावे।

Oh my God, हम सब enjoy करनी ये super duper hit भोजपुरी कर मनोज तिवारी कर नगमा और नागेश्वर धाकड़ आपकर स्वागत पा आपकर भोजपुरिया गोना मैसेज मसाला के महफिल मा stay tuned और आप सब भी आपन भोजपुरी के गाना के पेशकश भेज सकतानी आपन पर आपन चैट बॉक्स मा अपने रेडियो के चैट बॉक्स मा और चली दोस्तों का भाई ये गाना सुन के का भइल कुछ बहुत पुरान याद आयल होइल ना भोजपुरी के रॉक स्टार मनोज तिवारी जहिया से इनकर ये गाना आयल बना तहिया से हर आशिक की जुबान पर बस एक ही नाम बा ऊपर वाली के चक्कर में लड़का खूब पिटाइल बा लड़की के ऊ पहला प्रेमी पुलिस लेके आयल बा भैया काहे की ऊपर वाली और काहे के चक्कर ई चक्कर में ता पूरा गोंडा फसल बा और सबके तो हमके नहीं के पता और सब शहर के हमके नहीं के पता लेकिन अगर हम आपन पर्सनल ओपिनियन दी अगर हम गोंडा के यूथ लोगन का देखी तब पूरा के पूरा गोंडा फसल बाई ऊपर वाली के चक्कर मा काहे कि प्यार के चक्कर ही ऐसन हा कि आदमी सीधा स्वर्ग ऊपर के सपना देखे लागेला ई आपन मनोज तिवारी जी के गाना के यही तक खासियत बा दोस्तों कि गाना भी मजेदार और बोलता एकदम दिल पे चोट करे वाला ता आप लोग भी अगर ऊपर वाली के चक्कर में कतहूं फसल बानी या फिर बस मनोज भैया के फैन बानी ता आज के रात के ई गाना बस आप ही सबके नाम रहल हमरे तरफ से और कमल नयन की तरफ से सो चली आपन कुर्सी के पेटी बांध ली काहे की ऐसे ही ओल्ड से लेके ओके बाद वाला नवा ओके बाद वाला नौखा ओके बाद वाला नईखा ओके बाद मा एकदम नीमन नीमन नया नया चोक चोक जतना भी गाना आवल हुई ना भोजपुरी मा उस सब के सब आज बजी तो आप सबसे बस यह एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये भोजपुरी में कुछ दर्द भरा गाना के बिल्कुल भी पेशकश ना की हो फरमाइशी में बैठावा जाए ना दिल पे एक आशिक के महफिल लेकिन अभी फिलहाल के लिए खाली खाली पार्टी शार्टी के

0: जिंदगी से जिए ता कोई गुलाब से सीख ले, जो खुद टूट कर भी दो दिल के जोड़ दिए लिया है। कतना सोचा तारा दिल दो दिल के जोड़े के बारे में, एक काम करा मैट्रिमोनियल साइट खोल लिया। आप सब लोग सावंत जी, ऊपर वाला भी खुश, आपके भी दिल खुश, और आप खुश रहो तो आपके मेहरारू भी खुश, और आपके मेहरारू खुश, आप खुश तो आपके परिवार भी खुश, और आपके परिवार भी खुश तो समझ लो पूरी पूरी दुनिया खुश। सही कहना दोस्तों। सो चलो चला जाए, बहुत हुईगा पक पक शक पक पक पक पक पक पक, चला उछला आ जाए, एंजॉय करा जाए हमारे सबके आज के अगली पेशकश। जी हाँ दोस्तों, सबलू सावंत जी के कहना है कि पंडित जी बताई ना बिया कब हुई। सो एंजॉय करा जाए ओल्ड इज गोल्ड, रवि किशन के सुपर डुपर हिट नगमा। नवा नवा वाला तो आप सब सुना, तो चोखा चोखा वाला, ये पुरान वाला सुनो, ये ज्यादा मजेदार है। आप सुना जाते रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर के धड़कन की गोंडा मैसेज मसाला, आपके अपने आज सिंपल नॉट से सिंपल के साथ।
1: पंडित

0: कनी भादो बीते दो।
1: पंडित जी बताई ना ब्याह कब हुई और सैया जी के प्यार के निगाह कब हुई। कुछ ऐसा गाना रही दोस्तों आई पेशकश रही हमरे सबलू सावंत जी के। और एक बार फिर से स्वागत पा आप सबके रोवा लोगन के आपके अपने गुंडा मैसेज मसाला शुमा आपके अपने आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ मा सा। सो दोस्तों ई पंडित जी वाला गाना सुन के ता हमार गुंडा के कुवारे लड़कन के तो मन में खलबली मच गई हुई का सही कहता नहीं ना हम सबके मन में एक के सवाल उमर उमर के आवत हुई कि आखिर पंडित जी बताई ना ब्याह कब हुई। अभी हम स्टूडियो में बैठ के ये गाना सुन के यही सोचत आनी कि बहुत सारे कुंवारे लड़के हुई हैं जो यही सोचत हुई हैं हमरी तरह कि पंडित जी बताई ना ब्याह कब हुई। और पंडित जी फिर पंडित जी भी दिमाग में आई हुई है फिर उनके दिमाग में ही आवा हुई कि पंडित जी से पूछ के मुहूर्त निकली फिर हमार शादी हुई। फिलहाल ये शादी ब्याह के चक्कर छोड़ा जाए पंडित वंडित के चक्कर छोड़ा जाए भाई हम सब गोंडा मैसेज मसाला प्रोग्राम महन। और अगर गोंडा मैसेज मसाला प्रोग्राम महन और यहाँ फिर शहनाई बजावे लागा जी तो गाना के बजाए बिया यहाँ ढोलक बजावे लागा जी तो गाना कहाँ सुना जाए यहाँ मंडप सजावा जी तो गाना तो ये सपना अपन तनी पर दूर रखा जाए और चलो चला जाए ना अगले गाने की तरफ। सो अब इंजॉय करा जाए हम सभी एक ठू भोजपुरी के सुपर डुपर हिट नगमा। लेकिन ओके पहले स्वागत है आप सबके जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से और दीपक जी हथियागढ़ गोंडा से सभी अपन पसंदीदा नगमा भेज दीनी। सो हम आऊ अपन पसंदीदा भोजपुरी वाला गाना सुना चाहते जो बहुत डिसेंट है भले पार्टी वार्टी वाला हो चाहे ना हो लेकिन पता नहीं कहे पवन सिंह के ये गाना में बहुत अच्छा लागत है हमरे दिल के बहुत करीब बा दोस्तों। सो हम चाहता नहीं कि आप सबके ये गाना सुनाई और अपने भोजपुरी प्लेलिस्ट में के एक दो गाना सुनाए के आप लोग के भी मूड तनी बार चेंज कर दी सो इंजॉय करा जाए ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हमार बहुत पसंदीदा नगमा पता नहीं कहे हमें बहुत पसंद है। वैसे तो पवन सिंह हमें कुछ खास पसंद नहीं है लेकिन इनके गाना हमें बहुत पसंद है।

धनी हो सब धन तोहरे नु बाटे। सो चली बढ़ी और चली हम सभी इंजॉय कर लिया जाए। आशु जी भेजिन रही एक ठो नगमा खेसारी जी के, खेसारी लाल यादव के नगमा बा, जब से नैना लड़ल तो इंजॉय करा जाए नागिन मूवी का नगमा बा। और आशु जी के दिल से सुने के इच्छा भाई गाना, तो काहे ना आशु जी के कहे पर ही भोजपुरी वाला गाना सुन लिया जाए हम सब। हाँ हाँ हमारे एक लिसनर है, उनके कहना है कि अभी तक तो सुना था कि चाय ही मिलती है डिस्पोजल पानी में पन्नी में, अब तो पता ही नहीं कि रुमाल में क्या क्या मिलने लगता है। अब कहाँ क्या मिलने लगेगा ये किसी को नहीं पता चलेगा, बस जिसको जो चाहिए होगा उसी को पता चलेगा कि वो वहाँ कहाँ मिले।

सो ये गाना सुने के रहल हमार सबके आशु मिश्रा जी के, जे की हैं लखनऊ से। चला चली चला जाए अगले भोजपुरी डिमांडेड सॉन्ग के तरफ, और अगला डिमांड बा नागेश्वर धाकड़ के, और इनके सुने के बा पगले बना देलू। तो सुना जाई गाना, ये रोमांटिक भोजपुरी सॉन्ग तो हम पहली बार सुनतानी हो। तो धीरे धीरे जाए के भी वक्त होत बा दोस्तों आप।

पगले बना देलू पूरा पगले बना देलू। आज से ही गाना ऐड हो चुकल बा हमार प्लेलिस्ट में, हमार भोजपुरी के प्लेलिस्ट में। अई पेशकश रहा, ई डिमांड रहा हमार नागेश्वर धाकर के। और नागेश्वर धाकर के कहल बा कि झूठी हंसी चेहरे पर सजा कर बैठा हूँ, सारे इल्जाम खुद पर लगा के बैठा हूँ, और हाथ का कांपना लाजमी है, इसमें हैरत कैसी, मैं खिलौना थोड़ी महबूब गवा कर बैठा हूँ। सो चलो चला जाए, इंजॉय करा जाए हमनी सबके अगला डिमांडेड सॉन्ग। अगला गाना बा हमार वाला डांस, और हमार वाला डांस पवन सिंह के आवाज़ में बा। सो इंजॉय करा जाए भोजपुरी नगमा। पता नहीं के कर बा फरमाइश, लेकिन गाना शायद बढ़िया बा।

व्हाट्सएप पर। देखत देखत सांझ के लाली अब रात के आगोश में समात हुआ और गोंडा के और पूरी दुनिया के फिजा में एक अजीब सा सुकून घुलल बा। हमरे लिसनर्स के मन में तो अजीब सा सुकून घुलल ही बना दोस्तों। आज के यह महफिल में रवा सबके साथ में जुड़कर आपके अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के बहुत सारा सुकून मिलल बा, बहुत सारा प्यार मिलल बा, बहुत सारा आनंद मिलल बा। सो जाते जाते बस यह कहे के बा कि जिंदगी के नाम ही बा दोस्तों आगे बढ़ल। जैसे ही सूरज फिर से उगे के वादा करके जात बा, ओइसे रवा सब भी आपन उम्मीद के दिया हमेशा जलाए रही, आपन लोग से प्यार करी, अपने शहर के मान बढ़ाई और खुद के ख्याल रखल बिल्कुल मत भुलाई। काहे कि रवा सभी ता हमारे रेडियो के असली जान हैं। सा आज के चटपटा मसाला, ये गीत संगीत आई ढेर सारा मीठी मीठी प्यारी प्यारी बात, मीठ मीठ बात, नीमन नीमत बात, सब खत्म हो गई, संपन्न हो गई बा। फिर मिलल जाए कल अपने फरमाइशी के महफिल के ओही समय पर, ओही अंदाज में, ओही जज्बात के साथ में, और वही सिलसिला चला करी काल से, और ढेर सारा नयापन के साथ में मिलल जाए। तब तक के लिए गोंडा के और हमारे सभी लिसनर के इस शांत और सुकून वाला रात मुबारक हो, सुखद नींद ली और यह शुभकामना देव की हमेशा चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए। सो अपन ख्याल रखिए, आपन अपनन के ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए, हमेशा मुस्कुरात रहिए और सुनत रहिए रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजी सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो दोस्तों अभी चलत आनी, अभी अपने फरमाइशी के महफिल में ढेर सारा आनंद लिया, अपने फरमाइशी गीत के सुनिया और अपने जज्बात के भी अपने आरजी बीना के सामने रखिया। फिलहाल अभी इजाजत दी हमके अपन दोस्त आरजे सिंपल के, यहीं दी इजाजत और सुनत रही, गुनगुनात रही, मुस्कुरात रही अपन पसंदीदा नगमा, अपन पसंदीदा बात, अपन पसंदीदा जज्बात अपने रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन के साथ में। शुभ रात्रि दोस्तों, चलिए एंजॉय करी जाए नील कमल के ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। सो कल फिर मिला जाइए, बाय बाय, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार आपके अपन आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सबका खातिर और आप सबनी की तरफ से, तो ढेर सारा, बहुत सारा, बहुत ढेर सारा प्यार आपके आरजे सिंपल खातिर। लव यू ऑल, बाय बाय, सो मच लव टू यू गाइस, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।

तो बिल्कुल हम मिलने आ चुके हैं और कहते हैं ना, मिलने हैं मुझसे आई, फिर जाने क्यों तन्हाई, किस मोड़ पे है लाई आशिकी, और आशिकी किस मोड़ पे लाई ये तो हमें पता नहीं। फिलहाल आपकी फरमाइश मुझे आप तक ले आई है, और सबसे पहली फरमाइश प्ले होने जा रही है प्रबल मिश्रा की। सो लेट्स एंजॉय द फर्स्ट फरमाइश फॉर प्रबल मिश्रा। आपके साथ मैं हूँ आपकी अपनी आरजे बीना लाइव।

अभी हम लोग सुन रहे हैं आशु जी की फरमाइश का गाना, सॉरी जुगल जी की फरमाइश का गाना, इसके बाद हम सुनेंगे आशु जी की फरमाइश का गाना। वैसे बादल को आप लोग याद करें, लेकिन बादल बरस तो बिल्कुल भी नहीं रहा है।

आज सारे गाने बारिश पे ही सुनने को मिल रहे हैं और अगला गाना है सबलू सामत जी की फरमाइश का, ये भी बारिश पे है, तो चलिए बारिश थोड़ी सी करा लेते हैं और गाना सुन लेते हैं सावन बरसे। सावन बरसे के बाद हम लोग सुनेंगे चिंटू की फरमाइश का गाना तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है। रेडियो ज्ञानसली को डेडिकेट करते हैं। ओके, आपसे भी हमारा रिश्ता पुराना है।

सो चिंटू की फरमाइश का गाना सुनने के बाद अब बारी है अगला गाना सुनने की, और किसकी फरमाइश है भाई, किसकी फरमाइश है? मिश्रा ऑप्टिकल्स। ओके चलिए देखते हैं ये कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। वो लड़की बहुत याद आती है, क्या बात है। तो चलिए मिश्रा जी आपके साथ हम लोग भी थोड़ा याद कर लेते हैं उसी लड़की को जिसे आप याद कर रहे थे। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग। इसके बाद हम सुनेंगे आवारा दिल मेरा दबंग 3 से धर्मेंद्र मोहन जी के लिए।

सबलू जी लिखते हैं कि तरसती नजरों ने हर पल आपको ऐसे मांगा जैसे हर अंधेरी रात में चांद मांगा। मेरी आंखें किसी और को क्यों देखें जब मेरे दिल के हर कोने पे सिर्फ

0: समझ मत इसको बकवास क्या।
1: Excuse me,
0: हाँ बोलना।
1: मैं पहले से शादीशुदा रे।
2: क्या ले? पैसा दे, पैसा दे।
3: ये ले। हाँ।

0: सच्ची बात। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी यार।
1: एक्सक्यूज मी
0: क्या रे?
1: मैं

फिलहाल फरारी मिलेगी कि नहीं ये तो मैं डिसाइड नहीं करने वाली, ये लोग आप, ये तो आप ही डिसाइड करेंगे। हम अगला गाना सुनेंगे सुरेंद्र की फरमाइश का। अगर सुरेंद्र के पहले किसी का फरमाइश मिस हो गया हो तो वो अभी फ़िलहाल कर सकते हैं फरमाइश, क्योंकि कुछ फरमाइशें ओवरलैप कर रही हैं। वैसे तो मैंने सारी फरमाइशें जो मुझे दिखती गई सारी ले ली है, अगर कोई मिस हुई है तो आप फटाफट से फिर से फरमाइश कर सकते हैं, आपका गाना ले लिया जाएगा। बाकी जिनकी भी फरमाइश अभी तक आई है वो प्ले हो चुकी है।

कैसे हैं नीना? गुड इवनिंग। और सबकी फरमाइश प्ले होगी। और मुशीफ जी, आपको गाना कौन सा सुनना है फटाफट से आप टाइप कर दीजिए और डेफिनेटली आपकी चॉइस का गाना प्ले होगा, आप परेशान ना हो।

0: दोस्ती करो बीएसएनएल वाली से, प्यार करो आइडिया वाली से, बात करो एयरटेल वाली से, आंख लड़ाओ वोडाफोन वाली से। वोडाफोन और आइडिया एक हो गया है पता है आपको, पर दोस्तों शादी करना बिना मोबाइल वाली से, ये सही है।
1: सहने दे ये दर्द मोहब्बत, सहने दे तेरा दिल।
0: फिलहाल अब अगले गाने की बारी हो चुकी है और अगला गाना सुनना है नवीन को, और नवीन की फरमाइश है ये है, क्या करते थे साजना।

शायरी पढ़ने से। ओके, एक शायरी और पढ़ती हुई थी के साथ। आंखों की चमक पलकों की शान हो तुम, चेहरे की हंसी लबों की मुस्कान हो तुम, धड़कता दिल है मेरा बस तुम्हारी आरजू में, फिर कैसे ना कहूँ मेरी जान हो तुम। क्या बात है,

0: इसी के साथ गीत मालिका का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
2: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
2: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
3: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
4: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
5: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
4: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
4: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर सीसीटीवी निगरानी और आरएफआईडी आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
3: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
5: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को, जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: दिस वन्स फॉर माय डियर फ्रेंड।
7: चलिए अब समय है सुनने का नीना की फरमाइश का सॉन्ग, तो चलिए सुनते हैं।
6: वी लव यू।

कुमार जी जब स्टार्टिंग से सुनेंगे तो अपना गाना भी सुनने को मिलेगा और आपको पता होना चाहिए आपका गाना ऑलरेडी प्ले हो चुका है। अब एक गाने को कई बार फरमाइश करने से कई बार थोड़े ना प्ले होगा आपका गाना।

चलिए कायनात की फरमाइश का गाना सुन लेते हैं। कायनात तो भाई सबके गाने सुनती है, तो इनकी गाने की फरमाइश भी हो जाए शुरू। तो चलिए सुन लीजिए कायनात की फरमाइश का गाना।

था सफ़र हमारा अपना, और इसी सफ़र के साथ अब है हमें जाना। और इसी के साथ आप सुनिए अगला गाना, जो फरमाइश है हमारे एक प्यारे से लिसनर की, जिसका नाम है सूरज। सूरज जो कि मतलब चैट रूम में तो बहुत कम दिखते हैं, लेकिन हाँ अपने गाने की फरमाइश करने के लिए आ जाते हैं। तो जनाब की फरमाइश का चलिए गाना सुन लेते हैं, बड़ा ही प्यारा सा गाना है। तो आप भी ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाने सुनते रहिए, और इस कदर प्यार है तुमसे है दिल भर। तो चलिए सुनते हैं ये गाना, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपने गानों को नॉनस्टॉप।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
5: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
6: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
7: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
8: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
7: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
8: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
7: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
8: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: गोंडा शहर की धड़कन।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में, सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: अरे सुना
3: क्या,
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ,
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM, यह है गुना शहर की धड़कन। और अब कार्यक्रम चल चुका है बहारे गजल जी, और ये वो वक्त होता है जब हमको सबसे ज्यादा सुकून की आवश्यकता होती है। मतलब हल्की हल्की सी हवा चल रही है, आप में से कुछ लोगों ने खाना भी खा लिया होगा, कुछ लोग खाना खाकर टहल रहे होंगे और रेडियो गणेश 89.6 FM गूंज रहा होगा आपकी वादियों में। दिल की बात, एहसासात की बात, जिंदगी की बात, मोहब्बत की बात और जिंदगी के सारे अनछुए पहलुओं को छूती हुई विधा का नाम है शायरी। और यही शायरी जब वाद्य यंत्रों के साथ आपके सामने आती है तो हम उसे गजल कहते हैं। है क्या अगर हम देखें शायरी तो, जो दिख रहा है उसी के अंदर, जो दिख रहा है उसी के अंदर, जो अनदिखा है वो शायरी है। जो दिख रहा है उसी के अंदर, जो अनदिखा है वो शायरी है। जो कह सका था वो कह चुका हूं, जो रह गया है वो शायरी है। ये शहर सारा तो रोशनी में खुला पड़ा है, तो क्या लिखूं मैं। ये शहर सारा तो रोशनी में खुला पड़ा है, तो क्या लिखूं मैं। वो दूर जंगल की झोपड़ी में जो एक दिया है वो शायरी है। तमाम दरिया जो एक समंदर में गिर रहे हैं, तो क्या अजब है। वो एक दरिया जो रास्ते में ही रह गया है वो शायरी है। जी हाँ, हिंदी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मैंने पढ़ा कि लिखा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो मैं बहुत दिन तक सोच नहीं पाता था कि मतलब जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि का तात्पर्य क्या है। बाद में समझ में आया कि कहने का अर्थ ये है कि जहां पर ऐसी चीजें जहां पर सूर्य की किरणें भी नहीं जा सकती, यानी इंसान के एहसासात, उनकी तिश्नगी, उनकी प्यास, उनकी जरूरतें, उन एहसासात को लेकर, उन अनछुए पहलुओं को लेकर हिंदी में कविता आती है और उर्दू में गजल आती है, और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे ही हैं। जी हाँ, हम बात करते हैं किसी गजलकार की, किसी दानिश्वर कलमकार की। किसकी बात करेंगे हम, यह आपको जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गजल, और इसके बाद आपको ये बताएंगे कि आज हम किस शायर या शायरा को आपके बीच लेकर आए हैं। हमारे साथ भाई जुड़ चुके हैं मनीष शर्मा जी, आपको प्रणाम करते हैं जी, शुभ संध्या आपको भी। मुकेश यादव जी हैं, गुड इवनिंग सर, लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और कैसे हैं आप जी? हाँ, और सविता शास्त्री जी हैं, क्षण स्पर्श, और शुभ संध्या आपको भी। चलिए तो शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी गजल के साथ, और इसके बाद आते हैं उस शायर पर या शायरा पर जिनके बारे में हम करने वाले हैं आज बातचीत। जी हाँ, सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, यह है गुना शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास,
फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप

जी हाँ, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, कहाँ है तू कि ये दिल बेकरार आज भी है। वास्तव में अगर हम देखें तो ये होता है। और अब आपसे बताते हैं कि किन को लेकर आए हैं आज आपके बीच। उत्तर प्रदेश का एक शहर है, एक जिला है, इसका नाम है कानपुर, जो चमड़े के उद्योग के लिए बहुत ही लोकप्रिय मान्यता है। वहां से एक शायर निकलता है और अपने गजलों की खुशबू को वो शायर भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि दुबई तक, अमेरिका में, इंग्लैंड तक, जहाँ जहाँ भी उर्दू ज़ुबान, हिंदी ज़ुबान समझी जाती है, बोली जाती है, वहाँ पर उन्होंने अपने नगमों की, अपने गज़लों की खुशबू बिखेरी। ज़मीन से जुड़े हुए उस शायर का एहतराम करते हैं और उनको हम जानते हैं जौहर कानपुरी के नाम से। धरातल पर अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो अगर आपने मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा है तो आप यूं समझिए कि आप उर्दू के साहित्य में, उसकी पोएट्री में आप जौहर कानपुरी को पढ़ रहे हैं। क्या खूबसूरत लिखते हैं जौहर कानपुरी साहब की जबान मीठी है, मेरा बयान अच्छा है। कभी कभी इंसान इसलिए भी लोगों की नजर में खराब हो जाता है क्योंकि उसको जी हुजूरी नहीं आती। कहीं पंक्ति मुझको याद आ गई कि मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कसूर न था। वो बात यहां पर आकर बैठती है कि जबान मीठी है, मेरा बयान अच्छा है, बस इसलिए ही मेरा खानदान अच्छा है। जबान मीठी है, मेरा बयान अच्छा है, बस इसलिए ही मेरा खानदान अच्छा है। छतें टपकती हैं लेकिन खुलूस तो है यहाँ। खुलूस मतलब मोहब्बत, एक दूसरे से अपनापन। छतें टपकती हैं लेकिन खुलूस तो है यहाँ। तेरे महल से ये कच्चा मकान अच्छा है। ये जानवर है जो गीबत कभी नहीं करता। गीबत बोलते हैं चुगलखोरी को, पीठ पीछे बुराई करने वाले। अब देखिए, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मतलब हमने ये माना कि इंसान ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। शायर के देखने का एक तरीका आप देखें कि उसने कहा कि ये जानवर है जो गीबत कभी नहीं करता, मतलब पीठ पीछे बुराई नहीं करता। जबान वालों से ये बेजबान अच्छा है। क्या बात, मतलब एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा चित्र हमारे सामने प्रस्तुत है कि कम से कम जानवर पीठ पीछे किसी की चुगली तो नहीं करते, किसी के कान तो नहीं भरते। तो ऐसे इंसानों से तो जानवर बेहतर है। मतलब एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, ये जानवर है जो गीबत कभी नहीं करता, जबान वालों से ये बेजबान अच्छा है, मोहब्बतों से भरे एक दिन में रहते हैं, मोहब्बतों से भरे एक दिल में रहते हैं, जमाने भर से हमारा मकान अच्छा है। अभी है बाकी बुजुर्गों का एहतराम यहां। एहतराम मतलब सम्मान।
इज्जत। अभी भी हमारे यहां अगर बड़ा कोई खड़ा है तो छोटा बैठा नहीं रह सकता, वो चाहे पद में बड़ा हो या कद में बड़ा हो, उम्र में बड़ा हो या पद में बड़ा हो। तो लोग इज्जत करते हैं बुजुर्गों की। इसके विपरीत एक कहावत भी कही जाती है कि घर का कूड़ा और घर का बूढ़ा एक कोने में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि जो घर का बूढ़ा होता है वो उस घर की बहुत बड़ी इज्जत होता है। मेरे पिताजी अगर बुजुर्ग हैं लेकिन वो अपने मेरे घर के सामने अगर कुर्सी लगाकर बैठे हैं तो मैं बहुत निश्चिंतता से अपना काम कर सकता हूँ, वो मेरे घर की शान है। तो हम कूड़े को बूढ़े से नहीं मिला सकते। बात शायद वही कहते हैं कि अभी है बाकी बुजुर्गों का एहतराम यहाँ, अभी यहाँ पर हमारे बुजुर्गों की इज्जत है। मेरे लिए मेरा हिंदुस्तान अच्छा है। अब देखिए एक ही गजल में जौहर कानपुरी ने किन किन चीज़ों को छुआ है, किन किन मौजूआत को छूती हुई उनकी गजल निकली है, एक बार फिर से आप देखें। हम अच्छे क्यों हैं? क्योंकि जबान मीठी है, बयान अच्छा है, इसलिए खानदान अच्छा है। जिस दिन सच बोल देंगे वहां पर बुरे हो जाएंगे। दूसरी बात, अमीरों के यहां बहुत है लेकिन अगर खुलूस नहीं है, मोहब्बत नहीं है, अपनापन नहीं है तो वो घर घर घर नहीं मकान है। वो कहते हैं कि छत टपके लेकिन अगर घर में मोहब्बत है तो वो घर स्वर्ग है। और सोने का बिस्तर बिछा दिया जाए आपको, गोल्ड पर लिटा दिया जाए लेकिन अगर खुलूस ना हो, एहतराम ना हो, सम्मान ना हो, अपनापन ना हो तो नहीं अच्छा है। तीसरा पहलू उन्होंने बताया कि ऐसे लोग जो बैक बाइटिंग करते हैं, चुगलखोरी करते हैं, वो लोग पशुओं से बदतर हैं। और यही बात संस्कृत का साहित्य भी कहता है। वो कहता है कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम वर्जिते तादृश्यम विषकुंभम पयोमुखम। अर्थात जो पीठ पीछे आपकी बुराई करता हो और आपके सामने मीठा बोलता हो, उस मित्र का वैसे ही परित्याग कर दो जिस प्रकार लोग उस घड़े का परित्याग कर देते हैं जिसके ऊपर ऊपर दूध होता है और अंदर अंदर जहर होता है। और ऐसे लोगों की संख्या इसमें थोड़ी सी बढ़ रही है। ऊपर एकदम लगता है क्या बात है शहद, अंदर कुछ और चल रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि इस महल से मेरा मकान अच्छा है। और अंतिम दो पंक्तियों में उन्होंने हिंदुस्तान को पेश किया कि हमारे देश में बुजुर्गों का सम्मान है। तो कहते हैं अभी है बाकी बुजुर्गों का एहतराम यहाँ, मेरे लिए मेरा हिंदुस्तान अच्छा है। यही एक शायर जिसने गजल को शुरू किसी दूसरे मकसद से किया। और जब वो गजल के आखिरी पंक्ति पर पहुंची तो वो गजल बीच में बहुत कुछ कह चुकी थी। यही कमाल है पोएट्री का, यही कमाल है गजल का। जी हाँ, आइए आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गजल और मिलते हैं संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो गणेशलीट 9.6 एफएम, क्योंकि ये है आपके अपने शहर गोंडा शहर की धड़कन। जी हाँ, हमारे साथ मोहम्मद मुशीफ जी हैं। भाई आदाब करते हैं आपको। और बिल्कुल मैं बहुत अच्छा हूँ। नीना जी हैं। जी हाँ, आपको भी आदाब। कैसी हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छी होंगी। और आइए अब आपको सुनाते हैं लता जी की आवाज़ में एक प्यारी सी

गजल, शायरी, शेर, जिसको लोग अमूमन मानते थे कि ये महबूबा की जुल्फों से बात करती है, मोहब्बत की जुबान है, प्यार ही इसमें है। ऐसे शायर आए, ऐसे कलमकार आए जिन्होंने कहा नहीं, हम जिंदगी के उन अछूते मौजूआत को छुएंगे जिनसे शायरी वंचित रह गई। और किसी ने कह भी दिया कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, मेरे महबूब मुझसे वो पहली सी मोहब्बत न मांग। मतलब मोहब्बत के अलावा भी गम होते हैं। अच्छा, कैसा गम होता होगा, जरा सोचिए कि एक गम तो ये भी हो सकता है कि भाई वो हम प्रेम करते थे, उनकी शादी हो गई। ज्यादातर प्रेम में धोखा खा गए, गम अक्सर हम यही पर मानते हैं। लेकिन अगर आप सोचकर देखिए तो दर्द आपके जीवन की धरोहर है। मुझको गीत नहीं याद आ रहा है, लेकिन किसी गीत की पंक्ति है कि दर्द सहकर जन्म लेता हर कोई इंसान। हाँ, चल मुसाफिर तेरी मंजिल दूर है तो क्या हुआ, आज तेरा पांव थक कर चूर है तो क्या हुआ। उसमें एक पंक्ति आती है कि दर्द सहकर जन्म लेता हर कोई इंसान। इंसान के जीवन की शुरुआत, उसके जीवन का आधार दर्द है। और ये साहब जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता। आइए जौहर कंपनी साहब के आपके दूसरे पहलू की ओर ले चलते हैं। कौन सा पहलू? उन्होंने कहा कि हमें है याद अब तक वो लड़कपन का जमाना था, हमें है याद अब तक वो लड़कपन का जमाना था, हमारे भाई और बहनों के बचपन का जमाना था। देखिए, बहुत छोटा सा एक कमरा था जिसकी छत टपकती थी। रहते थे वो 25-30 साल पहले, तो बहुत छोटा सा एक कमरा था जिसकी छत टपकती थी, बड़ी मुश्किल से बरसातों की हर एक रात कटती थी। सुलाती थी कभी बहनों को माँ आंचल की चिलमन में, कभी पानी बरसा तो माँ ने अपने आंचल में, बच्चों सो जाओ। सुलाती थी कभी बहनों को माँ आंचल की चिलमन में, कभी अब्बू छुपा लेते थे हमको अपने दामन में। कोई बात नहीं, बारिश हो रही है, अभी कुछ देर के बाद निकल जाएगी। कभी अब्बू छुपा लेते थे हमको अपने दामन में, अरे कभी यू भी हुआ बांधे सभी ने पेट पर पत्थर। ऐसा भी एक दौर आया कि खाने को रोटी नहीं मिली, इसी को कहते हैं पेट पर पत्थर बांधना, ये मुहावरा है। कभी यूं भी हुआ बांधे सभी ने पेट पर पत्थर, कभी सबने गुजारा कर लिया दो चार रोटी पर, कभी सिर्फ रोटी ही नसीब में आई। और इंसान की जिंदगी के तो तीन हकीकत है। कहा जाता है कि समय धरावे तीन नाम, परसुआ परसु परसुराम। वक्त अगर अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा खराब चल रहा है तो लोग कहते हैं परसुआ, यहां थोड़ा सा अच्छा है तो कहते हैं परसों इधर सुनो, और जब शानदार वक्त आता है, दौर आता है, तो लोग कहते हैं परशुराम जी एक्सक्यूज मी प्लीज। तीन चीजें होती हैं इंसान की जिंदगी में और ये वक्त कराता है। तो कभी यूं भी हुआ बांधे सभी ने पेट पर पत्थर, कभी सबने गुजारा कर लिया दो चार रोटी पर, मगर सबको मोहब्बत के असर ने बांध रखा था, हमें उस मिट्टी के छोटे से घर ने बांध रखा था। मिट्टी का घर, कच्चा मकान,
सभी एक दूसरों की चाहतों में घुल के रहते थे, सभी एक दूसरों की चाहतों में घुल के रहते थे, गरीबी थी मगर हम लोग सब मिलजुल के रहते थे। सिक्के का एक पहलू हो गया, अमीरी पर आएंगे गरीबी से उठे। अब देखिए, अब अमीरी आ रही है। अमीरी आई, खुशहाली ने सब चेहरे बदल डाले। पैसा आया, खुशहाली का चेहरा बदल गया। फकत चेहरे नहीं, दिल, जहन और जज्बे बदल डाले। चेहरा ही नहीं बदला, दिल भी बदला, जहन यानी दिमाग बदला, जज्बे मतलब एहसास बदले। अमीरी आई, खुशहाली ने सब चेहरे बदल डाले। फकत चेहरे नहीं, दिल, जहन और जज्बे बदल डाले। मका सबने बनाए और सब यूं घर में जा बैठे। मका सबने बनाए, कच्चे मकान से पक्के मकान में गए। मका सबने बनाए और सब यूं घर में जा बैठे। अरे मकानों की चमक में खून के रिश्ते भुला बैठे। हमारा घर बड़ा है, हमारा घर बड़ा है और घर में है कई माले, मतलब कई मंजिल का घर है। हमारा घर बड़ा है और घर में है कई माले, मगर पुख्ता घरों ने दिल हमारे सख्त कर डाले। लेकिन इधर मकान पक्का हुआ और इधर इंसान का दिल सख्त हो गया, मतलब उसमें नरमी नहीं रह गई। कि झूठी शान के शोलों में सब रिश्ते जलाते हैं, अब रिश्ते जलते हुए दिखाई पड़ते हैं। कि झूठी शान के शोलों में सब रिश्ते जलाते हैं, अगर है भाई मुफलिस, मुफलिस मतलब गरीब, अगर है भाई मुफलिस तो उसे नौकर बताते हैं। अगर भाई गरीब है और कोई आया तो कहा कि कौन है, नौकर है, घर में काम करता है बेचारा। मैं मुंशी प्रेमचंद को पढ़ रहा था तो मंत्र उनकी एक कहानी आपने सबने पढ़ी होगी, आप सबको याद होगा। उसमें भगत जो कैरेक्टर होता है, उसका बेटा बहुत बीमार रहता है, डॉक्टर चड्ढा के पास पहुंचता है, आखिरी बेटा था, तीन बेटे हुए, सब की डेथ हो गई थी, ये आखिरी था। बेचारा बूढ़ा, तो एक नजर देख लेते डॉक्टर साहब तो क्या बिगड़ जाता। भगत ने देखा, डॉक्टर साहब के गोल्फ खेलने का वक्त हो चुका था, उन्होंने भगत को देखा, फटी धोती गरीब आदमी, कहा कल सवेरे आना, कल सवेरे, यह हमारे गोल्फ खेलने का समय है, हम इसमें मरीजों को नहीं देखते। भगत ने कहा एक नज़र देख लीजिए हुजूर, बड़ी दूर से आपके बारे में सुनकर आया हूँ, एक ही बच्चा है, बुखार से तड़प रहा है। कोई असर नहीं पड़ा डॉक्टर साहब पर। और वहाँ पर एक पंक्त लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने कि धूल उड़ाती हुई मोटर दूर चली गई, और आगे लिखा कि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपने मनोरंजन के आगे किसी के जान की भी परवाह नहीं करते, ऐसा उसे अब तक विश्वास ना आता था, क्योंकि वो उन गांव के लोगों में था जो गरीबों की मकान में लगी हुई आग को बुझाने और छप्परों को उठाने कंधा देने में आते थे। गांव की बारात अगर कहीं शादी है तो अगर बारात आ गई तो लोग कहते थे ये उनकी शादी नहीं, गांव की इज्जत का सवाल है। कुछ ऐसे ही एहसास आज है। जब मैं उस कहानी को पढ़ता हूँ और आज का दौर देखता हूँ तो लगता है कुछ कुछ मिल रहा है। अगर आप साहित्य के प्रेमी हैं तो आपको जो साहित्यकार लिखता है वो समाज में
दिखाई पड़ता है। शायद इसीलिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। जो बात जौहर कर्णपुरी ने कही अपनी इस गजल में, कुछ वैसी ही बात आइए आपको सुनाते हैं पंकज उदास की आवाज में। जी हाँ, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने आप को इस गजल के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। जी हाँ, हमारे साथ भाई बहुत से लोग हैं और नेहा जी आ चुकी हैं। भाई नमस्कार सर। जी हाँ, बुधवार को आपकी आवाज़ नहीं सुनी, मतलब क्या कुछ नाराज़गी हो तो बताइए भाई। हाँ, अपनी जुल्फ़ें मेरे शानों पे। जी हाँ बिल्कुल, वाह वाह क्या खूब लाइन है मनु भाई, बहुत बहुत तो शुक्रिया मुशरफ भाई। जी हाँ, बहुत अच्छी पंक्तियाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दौलत ही इंसान को इज्जत दिलाती है आजकल। हाँ, कुछ जगह होता है, लेकिन अभी रात इंदौरी वो जौहर कर्णपुरी ने कहा था कि बुज़ुर्गों की तरबियत है मेरे लिए, मेरा हिंदुस्तान अच्छा है। हमारे साथ आज ये सोनी जी हैं गोपालगंज से। भाई शुभ संध्या आपको भी, कैसी हैं। कायनात जी जुड़ चुकी है हमारे साथ और नेहा जी कहती हैं जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जी क्या बात है, शबीना अदीब आ गई, तुम्हारा लहजा बता रहा है भाई। हमारे साथ आज जी हैं अमन जी हैं रेडियो हॉट स्टार से। कल आपने भाई बहुत ही प्यारी गज़ल सुनाई, तबीयत खुश हो गई और उम्मीद करेंगे कि इस बुधवार को आपको फिर सुने। जी हम जी आज सुनी जी, वेलकम है आपका। नेहा जी आपका भी भाई स्वागत है। और प्रमुख जी बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ गए भाई, कैसे हैं आप जी। चलिए अब जो हमने अभी तक गज़ल की बात की जौहर कर्णपुरी की, अब देखिए वो गज़ल हमने आपको सुनाई और अब आपको पंकज उदास की आवाज़ में एक गज़ल सुनाते हैं। अब जरा सुनकर बताइएगा कि मेरे द्वारा कही गई गज़ल, मतलब जौहर कर्णपुरी ने जो गज़ल लिखी और जो पंकज उदास साहब गा रहे हैं, क्या वास्तव में कुछ आपको मैच करते हुए मिला। मुझको तो बहुत मैच करते हुए मिला। मैं सोच रहा था कि जौहर कर्णपुरी की इस गज़ल के बाद मुझे कौन सी गज़ल आपको सुनानी चाहिए, और जो मेरे समझ में आया वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आप सुनकर बताइएगा कि आपको ये गज़ल कैसी लगी। उम्मीद करते हैं कि आपका उत्तर हमें चैट बॉक्स में जरूर प्राप्त होगा। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल।

0: जी हाँ, और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठ उपरा सके। प्यारी सी मुस्कान आसमान वाले ने चाहा तो आपसे पुनः मुलाकात होगी, जी हाँ, शनिवार को ठीक इसी समय यानी ठीक 9:30 बजे एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। फिलहाल घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि भाई अब वक्त हो चला है। जी हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप सभी का, आप सभी ने इतना समय दिया। ईश्वर आप सभी को, परवरदिगार आप सभी को सलामत रखे और इंशाल्लाह हम शनिवार को फिर मिलेंगे बहार गज़ल की इसी शानदार महफिल में, अगर ऊपर वाले ने चाहा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु, आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहाँ से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियाँ जो टटोल देंगी आपका अंतर मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी, रब ने बना दी जोड़ी। हेलो माँ, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ संभव, लेकिन तुम कल जरूर आना, प्रॉमिस किया है तुमने। पिछली बार जो किया था वैसा मत करना। हाँ माँ, अब बता दिया है ना। अच्छा, मेरी एक जरूरी मीटिंग है, बाद में फोन करता हूँ। फोन रखते ही संभव के दिमाग में ख्यालों का तूफान उठा। हालांकि वो इतनी जल्दी शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन घर का एक भी सदस्य उसकी बात समझने को तैयार नहीं था। माँ की बढ़ती बीमारी के कारण वो उनकी इच्छा नकार नहीं सकता था, इसीलिए अपनी इच्छा के विपरीत जाकर वो लड़कियां देखने के लिए तैयार हो गया था। जैसे ही घड़ी की ओर उसका ध्यान गया, जल्दी जल्दी सब काम निपटा कर ऑफिस के लिए चल पड़ा। शाम वापस आते ही संभव ने पुणे के ट्रैवल का समय देखा और स्टॉप पर जाकर खड़ा रहा। ट्रैवल वैसे ही लेट थी और तो और उसका स्टॉप भी आखिरी था, इसलिए गाड़ी पूरी पैक्ड थी। केवल एक लड़की के बाजू वाली जगह खाली थी। उसने उसका बैग धीरे से उठाकर नीचे रख दिया और वहां बैठ गया। संभव ने देखा कि वो लड़की सोई हुई थी और उसका पूरा चेहरा रूमाल से ढका था। संभव की नजर ट्रैवल की खिड़की से बाहर गई। पूनम का चांद दिख रहा था। उस धीमी रोशनी में उस लड़की के घने लंबे बाल चमक रहे थे। बाहर की ठंडी हवा से उसके बाल रुमाल का बंधन तोड़ संभव के चेहरे को छू रहे थे। पल भर संभव उस स्पर्श से रोमांचित हुआ, लेकिन तुरंत ही उसने खुद को संभाला और थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गया। दिन भर की थकान के कारण वो भी जल्दी ही सो गया, लेकिन ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया। तब सब मुसाफिर घबरा कर उठ गए। पूछने पर पता चला कि आगे कोई बड़ी दुर्घटना हुई है, इसलिए गाड़ी रुक गई और 5-6 घंटे यातायात शुरू नहीं हो पाएगा। अरे यार, कि सब आज ही होना था, कल सुबह पुणे नहीं पहुंची तो मौत जरूर मुझे डांटेगी। अब क्या करूं, फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा। संभव बगल में बैठी लड़की की बकबक सुन रहा था। उसके चेहरे से अब रुमाल हट चुका था। उसके हल्के से हिल रहे गुलाबी होंठ, लंबे बालों की एक तरफ से डाली हुई चोटी, माथे पर छोटी सी बिंदी, नैनों का काजल, चांद की रोशनी में उसकी गोरी काया काफी निखरी दिख रही थी। कितनी सरल और सुंदर नजर आ रही थी वो।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है रब ने बना दी जोड़ी। अब तक आपने सुना संभव अपनी माँ के बुलाने पर शादी के लिए लड़की देखने पुणे जा रहा था। सफर के दौरान उसके बगल में एक लड़की बैठी हुई थी। थोड़ी ही दूर चलने के बाद उनके सफर में रुकावट आ गई क्योंकि कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और पूरी तरह ट्रैफिक जैम हो चुका था। अब आगे उस लड़की का ध्यान संभव की ओर गया। वो लगातार उसे देखे जा रहा था। ये जानने के बाद वो थोड़ा संभल गई। संभव भी थोड़ा ऑकवर्ड महसूस कर रहा था। उसने अपनी नजर दूसरी तरफ फेर दी लेकिन उसकी चुलबुलाहट कम नहीं हो रही थी। ये देखकर संभव ने उससे कहा, मैडम आप चिंता ना करें, जल्दी ही ये प्रॉब्लम ठीक कर लेंगे और सफर शुरू हो जाएगा। आपको फोन करना है तो आप मेरे फोन का यूज कर सकती हैं, मेरे फोन में नेटवर्क है। उस लड़की ने संभव की ओर देखा। उसके व्यक्तित्व से वो एक सभ्य आदमी लग रहा था और उसे इस वक्त उसके फोन की जरूरत भी थी। संभव से फोन मांगकर उसने घर पर फोन घुमाया। हेलो माँ, मैं सुरभि बोल रही हूँ, उधर से आवाज आई। ये किसका नंबर है, इतनी रात गए फोन क्यों किया, तुम आ रही हो ना कल? सुरभि बोली, हाँ हाँ मेरा कहा सुन तो लो, मैं पुणे के लिए निकल चुकी हूँ लेकिन यहाँ आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है, ट्रैफिक में फंस गए हैं हम लोग। मैं किसी दूसरे के फोन से आपसे बात कर रही हूँ, आप चिंता नहीं करना, मैं आ जाऊंगी सुबह तक। ठीक है, अपना ख्याल रखना और हाँ सुबह वो लोग तुम्हें देखने आएंगे, जल्दी पहुंचने की कोशिश करना बेटा, माँ ने बोला। सुरभि ने गुस्से में फोन काट दिया। मैं यहाँ उलझन में हूँ और इन्हें उन मेहमानों की पड़ी है। संभव उसकी ओर देख रहा था। गुस्से में वो निहायत खूबसूरत लग रही थी। नाम भी कितना खूबसूरत था, सुरभि। सॉरी मैंने अपना गुस्सा आपके फोन पर निकाल दिया, सुरभि की आवाज से संभव ने अपना होश संभाला। इट्स ओके, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सुबह तक आप पुणे पहुंच जाएंगी। सॉरी मैंने आपकी बातें सुन ली, बाय द वे मैं संभव, मैं भी पुणे ही जा रहा हूँ। मैं सुरभि, थैंक यू सो मच, आपके फोन के वजह से मैं घर पर फोन कर पाई। तभी बस में से लड़कों का एक ग्रुप सामान लेकर नीचे उतर रहा था। संभव ने उनसे पूछा, ये क्या, कहाँ जा रहे हैं आप सब? देखो भैया, हम हरदम इसी रास्ते में सफर करते हैं, यहाँ हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है। यहाँ 2-3 किलोमीटर पर एक पगडंडी का रास्ता है, आगे छोटी छोटी गाड़ियां मिल जाती हैं पुणे जाने के लिए, हम तो उधर ही जा रहे हैं, उनमें से एक लड़का बोला। लेकिन इतने अंधेरे में रास्ता सेफ है क्या? संभव बोला, हाँ हम कई बार जाते हैं इस रास्ते से और हमारे पास टॉर्च भी है, वो लोग बोले।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है रब ने बना दी जोड़ी। अब तक आपने सुना संभव और सुरभि पुणे जा रहे थे। रास्ते में एक एक्सीडेंट की वजह से गाड़ी रुक गई। उन दोनों को ही अपने अपने घर पहुंचना बहुत अर्जेंट था। कुछ लड़के लड़कियों ने बताया कि यहाँ से कुछ दूर पैदल जंगल के रास्ते से अगर जाएं तो आगे वाले रास्ते से पुणे जाने के लिए गाड़ियां मिल जाती हैं। अब आगे संभव ने सुरभि की ओर देखा। सुरभि सोच में पड़ी थी। उस ग्रुप में दो तीन लड़कियां भी थी। माना कि वो किसी को पहचानती नहीं थी, फिर भी कराटे चैंपियन होने के कारण कुछ हुआ तो वो खुद को संभाल सकती थी। वहीं संभव का बर्ताव उसे काफी विश्वास भरा लग रहा था, इसलिए संभव और सुरभि के बीच में सहमति हो गई। वो दोनों उस ग्रुप के साथ नीचे उतरकर पगडंडी के रास्ते पर चलने लगे। वो लड़के लड़कियां एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले थे। उनसे दोस्ती करके वो दोनों भी साथ साथ चल रहे थे। मोबाइल पर सुरीले गीत चल रहे थे। रास्ता घने जंगल का था, मगर पूनम का चांद उसकी शीतल छाया का अस्तित्व महसूस करा रहा था, इसीलिए रात इतनी कठिन नहीं लग रही थी। चलते चलते अचानक सुरभि का पैर एक पत्थर से फिसल गया। वो लुढ़क रही थी कि संभव ने उसे सहारा देकर बचा लिया। पल भर उन दोनों को संभलने में लगा, तब तक उन लड़कों की हंसी फूट पड़ी। सुरभि शर्मा कर संभव से दूर हो गई। संभव भी अपनी नजरें चुराने लगा। इट्स ओके यार, कभी कभी होता है ऐसा, लेकिन संभल कर चलो अब, संभव बोला। सुरभि को चलने में दिक्कत हो रही थी। पत्थर से फिसलने से शायद उसके पाँव में मोच आ गई थी। वो लंगड़ा कर चल रही थी। संभव ने पूछा, सुरभि तुम्हारे पैर में ज्यादा लगी है क्या? तुम ऐसे लंगड़ा कर क्यों चल रही हो? अभी अभी घटी घटना से सुरभि संभव की नजर से नजर मिलाना टाल रही थी। वो संभव के व्यक्तित्व से तो प्रभावित हुई थी, लेकिन उसका स्पर्श और आंखों की चिंता देखकर वो उसमें उलझती जा रही थी। वो घर क्यों जा रही थी ये उसे याद आया। वो आज तक पढ़ाई का कारण बताकर शादी की बात टालती आ रही थी, मगर अब पढ़ाई पूरी होने के बाद वो ये बात टाल नहीं सकती थी। कल उसे इसी कारण घर जाना था। सुरभि, क्या कह रहा हूं मैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? थोड़ा रुकना चाहती हो क्या? संभव बोला, नहीं नहीं मैं ठीक हूं, पाँव में थोड़ी मोच है लेकिन मैं चल सकती हूँ, सुरभि बोली। फिर भी संभव ने उसे सहारा दिया। देखो सुरभि, हमारी पहचान बस कुछ घंटों पहले ही हुई है, लेकिन तुम्हें पुणे तक महफूज ले जाना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। तुम कुछ ऐसा वैसा मत सोचो, चलो। संभव का हाथ उसके हाथ में था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरचे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है रब ने बना दी जोड़ी। अब तक आपने सुना सुरभि और संभव, एक ही ट्रैवल में साथ सफर करके पुणे जा रहे थे। रास्ते में एक एक्सीडेंट की वजह से रोड ब्लॉक हो गई तो उन्हीं के साथ ट्रैवल कर रहे एक कॉलेज ग्रुप के लड़के लड़कियों के साथ कुछ दूर पैदल चल के दूसरी गाड़ी करने के इरादे से वो लोग साथ चल पड़े। रास्ते में सुरभि का पैर फिसला तो संभव ने उसे सहारा दिया। इस छोटे से सफर में ही उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग बढ़ती जा रही थी। अब आगे क्या था उस स्पर्श में? विश्वास, दोस्ती, चिंता? सुरभि उसे ना नहीं कह सकी। हालांकि संभव पहली बार किसी लड़की के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा था, लेकिन सुरभि के बारे में उसे क्या महसूस हो रहा था ये वो नहीं जानता था। उसकी हर अदा, बोलने का स्टाइल, उसके हाथ का कोमल स्पर्श और सबसे अहम उसका संभव के प्रति विश्वास, इन सब के बारे में वो सोच रहा था। संभव, मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशान होना पड़ रहा है ना, सुरभि बोली। सुरभि, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा सोचो कि एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद कर रहा है। संभव मुस्कुराया। तुम्हारी ये मुस्कुराहट किलर है, सुरभि बोली। क्या? वो क्या बोल गई ये उसके ध्यान में आते ही उसने अपनी जबान दांतों तले दबाई। फिर संभव ने हंसकर उसकी ओर देखा। कॉलेज के ग्रुप के साथ बातें करते करते सफर कब पूरा हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। वो जंगल से बाहर आकर एक छोटे से रास्ते पर पहुंच गए। वहां एक छोटा सा रोड साइड होटल था। संभव और सुरभि ने अपना अपना ऑर्डर दिया। सुरभि हाथ मुंह धोकर आ गई। पानी की हल्की बूंदें अभी भी उसके बालों से लिपटी थीं। कितनी खूबसूरत दिखती है यार, इसका हर रूप मुझे दीवाना बना रहा है, लेकिन क्या फायदा, इस मुलाकात के बाद हमारी राहें हमेशा के लिए अलग हो जाएंगी, सोचते हुए संभव के चेहरे पर मायूसी छा गई। संभव, क्या हुआ? इस चांदनी रात में गर्लफ्रेंड की याद आ रही है क्या? सुरभि ने उसे छेड़ते हुए कहा। सुरभि के चेहरे के शरारती भाव देखकर संभव के मन से तन्हाई के ख्याल कहीं गुम हो गए। नहीं, अरे मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, आओ खाना खाते हैं। हालांकि ये जान सुरभि मन ही मन खुश हुई थी। उसने उसी खुशी में खाना खत्म किया। तब तक लड़कों ने गाड़ी बुक कर ली थी। गाड़ी में भी सुरभि संभव के पास ही बैठी थी। ये इस सफर का आखिरी दौर था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है रब ने बना दी जोड़ी। अब तक आपने सुना सुरभि और संभव ने एक साथ पुणे तक का सफर पूरा किया। रास्ते में कुछ दिक्कतें भी आईं, लेकिन उसने उन दोनों को और करीब लाया। अब आगे गाड़ी शुरू होते ही थकान से सुरभि की गर्दन हल्के से संभव के कंधे पर झुक गई। संभव भी थका हुआ था। वो ये खूबसूरत पल अपने मन के किसी कोने में स्टोर कर लेना चाहता था। ड्राइवर ने जैसे ही गाड़ी का ब्रेक लगाया वैसे ही सुरभि जाग गई। उसका स्टॉप आ गया था। सुरभि ने जाते जाते फिर एक बार संभव का हाथ थामा। संभव, ये सफर मैं कभी नहीं भूलूंगी, ये हमेशा मेरी खूबसूरत यादों में रहेगा। वो काफी कुछ कहना चाहती थी लेकिन शब्द उसकी जबान पर नहीं आ रहे थे। शब्द कब आंसू बनकर आंखों से छलके वो नहीं जान पाई। संभव भी इसी कश्मकश से गुजर रहा था। उसने उसे धीरे से सहलाया और भविष्य के सफर के लिए शुभकामनाएं देकर गाड़ी में बैठ गया। संभव घर पहुंचा। वो माँ से कुछ नहीं बोलते हुए जाने की तैयारी करने लगा। माँ ने सोचा थका होगा। तय वक्त पर वो लड़की के घर पहुंचे। संभव का किसी चीज में मन नहीं लग रहा था। उसकी नजर से सुरभि का चेहरा हट ही नहीं रहा था। वो सोचने लगा, माँ को तो मेरी शादी होने से मतलब है, फिर मैं कहीं से भी सुरभि को ढूंढ लाऊंगा। उसने अपने मन में ठान लिया और गर्दन ऊपर करके कहा, बंद करो ये सब, मुझे शादीवादी नहीं करनी। लेकिन आगे के शब्द वैसे ही होठों पर रुक गए क्योंकि सामने चाय की ट्रे लेकर सुरभि खड़ी थी। वो जान गया कि इस घर की शुरू उसकी सुरभि ही थी। क्या हुआ संभव, कुछ कहना है तुम्हें? माँ की आवाज से उसने अपने होश संभाले। वो नीचे बैठ गया और बोला, मुझे शादी करनी है, लड़की मुझे पसंद है। उसकी इस बात से सब हैरान रह गए, लेकिन उन्हें उससे भी ज्यादा खुशी हुई। सुरभि की रात भर की थकी आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन केवल संभव ही ये देख रहा था। सबकी नजर से छिपकर इन दो प्रेमी दिलों का मिलन शुरू हो चुका था। वो कहते हैं ना,

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी रब ने बना दी जोड़ी। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट्स कर सकते हैं तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

कभी कोई बात दिल में रह जाती है और कभी एक चिट्ठी हर बात कह जाती है। आज के इस संगीतमय शाम में आइए चले उन गलियों में जहां इश्क के हर लफ्ज को कागज पे नहीं अपने दिल पे जगह दी जाती थी और डाकिया बनकर गीत किसी दिल तक पहुंचा करते थे। स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा शो भूले बिसरे गीत में, जो लेके आ गई है आपकी अपनी आरजे अनोखी। बिल्कुल सही सुना आपने, कभी एक खत पूरे इश्क की दास्तां कह जाता था, एक चुप्पी 100 सवालों का जवाब बन जाती थी। आज की ये शाम उन्हीं पन्नों को उलटने की कोशिश है जहां प्यार, वादा, इंतजार और यादें चिट्ठियों में बसी होती थी। आज के एपिसोड का नाम मैंने रखा है एक चिट्ठी मोहब्बत के नाम, जहां भूले बिसरे गीत दिल से दिल तक का सफर तय करेंगे। तो आइए आज के शो का आगाज करते हैं इस प्यारे से गीत से, जिसके बोल हैं, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर हाँ कि तुम नाराज ना होना, क्योंकि तुम ही मेरी जिंदगी हो और तुम ही मेरी बंदगी हो। जब दिल में कुछ ऐसा हो जो लफ्जों में ना उतर सके, तब लिखा जाता था ये प्रेम पत्र, और इसको हम जानेंगे इस सॉन्ग के माध्यम से।

तो आज के शो का पहला गीत हमने सुना उस चिट्ठी के माध्यम से जो एक इजहार बन गई थी। जी हाँ, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, आराधना मूवी से किशोरदा की आवाज में। और अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे नजराने की ओर, जिसके बोल हैं वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले उस गीत के नाम एक शायरी। कभी कभी कोई हमें इतना अपना लगने लगता है कि हर अल्फाज उसी के नाम हो जाते हैं। खत लिख दे सवरिया के नाम बाबू, याद तो आया ना वो वाला गाना, एक पुकार, एक निवेदन और एक प्रेम की बात। चलिए सवरिया के नाम सुनते हैं ये पैगाम।

और अब मैं जिस सॉन्ग की बात करने जा रही हूँ वो है कन्यादान मूवीज, जो फिल्म आई थी 1968 में और जिसको आवाज से सजाया था मोहम्मद रफी साहब ने। कहा गया है कि मोहब्बत को बयां करने के लिए जब लफ्ज कम पड़ जाएं, तब एक चिट्ठी सब कुछ कह जाती है। वो खत जिसमें इत्र की खुशबू होती थी और हर हर्फ में इंतजार की धड़कन। सॉन्ग के बोल हैं, लिखे जो खत तुम्हें और खत लिखते वक्त बस तुम्हें ही याद करें। तो चलिए हम भी अपने अपनों को याद करते हैं इस सॉन्ग के माध्यम से और मिलते हैं उस पार एक नए सॉन्ग के साथ। बने रहिए अपने वाले शो में जिसका नाम है भूले बिसरे गीत, ओनली ऑन रेडियो यानेस्ली 89.6 FM पर, जो है आपके अपने शहर गोंडा की धड़कन।

अभी हमने एंजॉय किया वो नगमा, वो खत जिसमें हर लफ्ज इश्क से भीगा हुआ था और हर बार पढ़ने पर नया सा लगा। इस गीत को सुनते ही वो जमाना आंखों के सामने आ जाता है जब लिफाफे में जज्बात भेजे जाते थे। हाँ जी, हमने बात की उस गीत की जिसके बोल थे लिखे जो खत तुझे, और अब जो नेक्स्ट वाला सॉन्ग है ना, वो फूल के साथ सजाया गया खत के माध्यम से, और उसके अल्फाज भी कुछ ऐसे ही थे। और उसकी लिरिक्स मैं आपको बता देती हूँ। लिरिक्स है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। सोचिए, फूल को दिल बताया जा रहा है, अल्फाजों से ऐसे पिरोया जा रहा है इतनी खूबसूरती के साथ जिसका कोई जवाब ही नहीं है। और इसके नाम एक शायरी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए सुनते हैं इस सॉन्ग के नाम एक शायरी। तेरे शहर में क्या भेजूं तुझे याद दिलाने को, तेरे शहर में तुझे क्या भेजूं तुझे याद दिलाने को, फूल भेजा है इत्र से भीगे कुछ एहसास लाने को। ये गीत उस वक्त की बात करता है जब फूल भी चिट्ठियों का हिस्सा होते थे। मुकेश की आवाज में ये प्यारा सा सॉन्ग आपके लिए।

कुछ फूल लिफाफे में रखकर भेज दिए थे, पर वो नादान समझ ना सका कि वो मेरे ख्यालों की ताजगी है। महकते जज्बात जब कागज पर उतरते हैं तो लफ्जों से भी ज्यादा इश्क की खुशबू फैलती है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले सॉन्ग की ओर, जिसके बोल हैं, हमने सनम को खत लिखा। जी हाँ, दो बंधन मूवी से 1966 की मूवी। कहा जा रहा है कि भाई हमने सनम को अपने खत लिखा, और खत में क्या क्या लिखा, कभी सुबह लिखा तो कभी शाम लिखा तो कभी दर्द और कभी कोई प्यार भरा पैगाम लिखा। और इसके लिए भी एक शायरी लिख दी है आपकी अनोखी ने। कहती हैं, जब अल्फाज जुबा से नहीं निकलते तब दिल चुपचाप कागज पर उतर आता है। ध्यान से सुनिएगा, जब अल्फाज जुबा से नहीं निकलते तब दिल चुपचाप कागज पर उतर आता है। और यही हुआ था उस बेनाम मोहब्बत में, जहां हर खत एक इकरार था। तो चलिए इस इकरार पैगाम को सुनते हैं इस गाने के माध्यम से।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
4: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
3: और जेंट्स के लिए?
4: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
4: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
1: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840335484। अब सपने होंगे साकार।